नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से

0: दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पामला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आप किसी संकट का ध्यान से विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि वो या तो आगे बढ़ने का अवसर है या वो वहीं रुक जाने की चेतावनी है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 333। 6:45 पर संगीत सरिता में आप सुन रही हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए श्रृंखला का भाग 6। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका है ममता सिंह और संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भोले बिसरे गीत। सात बजकर 30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। अभिनेता है विनोद खन्ना। आलेख और स्वर राजेंद्र त्रिपाठी का। प्रस्तुति रमेश गोखले की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 आप सुनेंगे सेहतनामा में पीसीओडी आईवीएफ इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए सखी सहेली। शाम 4 पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे में अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। संपादन सहयोग है रीमा जोशी का। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका वजन घटाओ। लेखन है वीएम आनंद का। निर्देशन है कमल दत्त का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक और 9 आपके लिए।

दस बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है ममता सिंह का। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अपनी चतुरंगिणी सेना की अगणित टुकड़ियों के साथ रावण युद्ध भूमि में उतरा है। तरह तरह के रथ तथा वाहनों पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही हैं। ऐसी विशाल सेना के पदचाप से इतनी धूल उड़ी है कि सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया है। पवन जैसे ठहर गया है। पृथ्वी आतंकित है। दिशाओं के प्रहरी हाथी डगमगाने लगे हैं। ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से दिशाएं प्रकंपित हो रही हैं। रावण रथ पर सवार है, जबकि सामने अपने भीमकाय वानर और रीछ योद्धाओं के साथ श्रीराम पैदल। दोनों पक्षों के सेनानी एक दूसरे को ललकार रहे हैं। विभीषण के मन में शंका घिर आती है कि रथ पर आरूढ़ रावण को श्रीराम किस प्रकार पराजित कर सकेंगे। श्री राम मुस्कुराते हुए उनकी शंका का समाधान करते हैं। युद्ध में विजय सदा धर्मरथ की होती है। शौर्य और धैर्य उसके पहिए होते हैं। सत्य और शील उसकी पताकाएं, बल विवेक इंद्रिय शमन और परोपकार उस रथ के अश्व होते हैं जो क्षमा दया और समता की रस्सी से जुते होते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं छठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा हमारे साथ

0: मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि उनके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला है संगीत सरिता की इन कड़ियों में, और जो उन वो ज्ञान के मोती हमें दे रहे हैं, हम भी अपने को समृद्ध कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी समृद्ध हो रहे हैं। आज केएल सहगल के बारे में वो जानकारी देंगे उनके बारे में।
1: कुंदन लाल सहगल जी की कुछ रचनाओं को मैं सुनवाना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं, चूंकि बात हो रही है भक्ति रस की,
0: जी
1: तो एक रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत अद्भुत आदान प्रदान हुआ है। इसका मतलब कि जो कबीर साहब ने लिखा था
0: जी
1: वो आपको कहीं महाराष्ट्र में, कहीं कर्नाटक में, कहीं बंगाल में
0: जी
1: वही भाव आपको मिल जाएगा। या मीराबाई ने अगर कुछ लिखा था, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं उसमें से एक भी भजन मीराबाई का नहीं है,
0: जी
1: यानी कि उनकी भाषा में नहीं है। अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये साधु खड़ी भाषा है। तो हमारे यहाँ साधुओं की एक भाषा होती थी, जो साधु बन जाते थे उनकी आपस में बातचीत करने की जो भाषा होती थी उसको हम साधु खड़ी बोलते थे।
0: जी जी
1: जो हम बहुत ही अच्छी भाषा हिंदी में बोलते हैं उसको हम खड़ी बोली बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ी, मेवाड़ की भाषा में थे।
0: जी
1: अब मेवाड़ी भाषा को समझना आसान नहीं था, तो उस समय गीता प्रेस गोरखपुर के आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने वियोगी हरि नाम के, जो बाद में एक बहुत बड़े कवि बने, वियोगी हरि जी को, जो बिल्कुल तरुण थे उस समय, उनको दायित्व दिया कि भाई तुम इस इन सारे मीराबाई के भजनों का सरलीकरण करके मुझे दो ताकि मैं ये प्रकाशित करूं तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा।
0: जी जी
1: क्यों, गीता प्रेस से उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने वो भाव तो सब समझ लिया है पर इसकी भाषा क्या हो। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्या। बोले मेरे हिसाब से इसको कबीर की भाषा में करते हैं। बोले अच्छा ये कौन सी भाषा है। तो बोले कबीर की जो अधिकांश भजन है वो साधु खड़ी भाषा में है।
0: जी जी
1: तो अब आपको मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं कि कबीर का जैसे है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अब ये भोजपुरी नहीं है, ये साधु खड़ी भाषा है। तो वियोगी हरि जी ने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई,
0: जी
1: जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: जी
1: तो ये इस तरह का हमारे यहाँ बहुत सारा प्रयोग हुआ कि भाव की यात्रा हुई,
0: जी जी
1: शब्द कहीं पीछे छूट गए। और वैसे भी हमारे यहाँ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर
0: जी
1: उससे भी
0: बिल्कुल
1: महत्वपूर्ण है भाव, कि आपके भाव कैसे हैं। तो ऐसे ही एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, यद्यपि मैं स्वयं भी गाता हूँ, हम सब गाते हैं, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत
0: जी
1: पैजनिया।
0: जी
1: जिन कवियों की का पूरा आपको संग्रह मिलता है उसमें से एक कवि का नाम है तुलसीदास, जिनका लिखा हुआ आपको रामचरितमानस मिलता है, फिर बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं।
0: रामायण है, और
1: हाँ
0: मतलब रामायण अलग सरलीकरण करके।
1: हाँ तो वो सब है, लेकिन कहीं भी आपको ठुमकी चलत रामचंद्र नहीं मिलता है। ऐसे ही कबीर के भी बहुत सारे भजन हैं जो आपको कबीर के बीजक में या कबीर की पुस्तकों में या गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिलते हैं,
0: जी
1: पर वो जनमानस में लोकप्रिय हैं। तो इसका एक कारण ये था कि उस समय जो भी लोग थे उनका कहना था कि ये भाव तो पहुंच जाए,
0: जी हाँ
1: ये भाव चला जाए, अच्छी बात है, लोगों को मालूम होना चाहिए।
0: जी
1: तो
0: जी
1: उस तरह से, इसलिए जब फिल्में बननी शुरू हुई तो उस समय इस तरह के भी प्रयोग हुए कि कुछ तो उन्होंने ओरिजिनल जो भजन थे वो ले लिए। अभी जो आप आदरणीय कुंदन लाल सहगल जी की हम रचना आपको सुनाने जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम था भक्त सूरदास।
0: जी जी
1: श्री डीएन मधोक एक बहुत अच्छे कवि थे, उनके शब्द हैं।
0: शेखर दादा, हमारे जहन में एक सवाल आ रहा है कि उस दौर में जब कुंदनलाल सहगल गा रहे थे तो उस समय बहुत सारे दिग्गज कालजयी कलाकार थे, कानन देवी थी, खुर्शीद और पंकज
1: बिल्कुल
0: मलिक, तो ये एक दौर था, एक पाठशाला थी इन गायकों की, तो उस दौर की जो गायन परंपरा थी उसकी कुछ विशेषता अलग से थी, ये कुछ बताएंगे इस बारे में?
1: सबसे पहले तो एक बांग्ला का प्रभाव था, मैंने 1930 से लेकर के 1945 46 तक के गानों में
0: जी
1: आपको बंगाल का एक
0: जी
1: प्रभाव
0: जी
1: दिखाई देता है, क्योंकि आरसी बोराल
0: जी जी
1: और पंकज मलिक, स्पेशली पंकज मलिक जी। और बाद में वो कंटिन्यू हुआ यहाँ पर, जब बंगाल में आए तो सचिन देव बर्मन,
0: जी जी
1: फिर आपके सलील चौधरी और इस तरह के सारे, और सिंगर्स भी आए, हेमंत कुमार जी।
0: जी
1: तो एक बंगाल का वो एक प्रभाव रहा, पर उसमें अच्छी बात ये थी कि उसमें पंजाब का भी अंश मिलने लगा। पंजाब के भी बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार थे। महाराष्ट्र तो भक्ति की धरती थी।
0: जी जी
1: जिस शहर में मैं इस समय रहता हूँ पुणे, उसको पुण्य नगरी कहा जाता था,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: सारे संतों की भूमि थी वो। तो ऐसी बहुत विशेषताएं यहाँ पर जुड़ती गईं। और कभी भी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ किसी भी चीज में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, संतों को लेके लड़ाई नहीं है,
0: जी
1: आप समझ रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: अगर विवेकानंद आते हैं तो कोई ये नहीं कहता, अरे ये तो बंगाली हैं भाई, हम
0: हाँ
1: इनका काहे को सुने हम कोई।
0: जी
1: आप
0: जी
1: देखेंगे उनके ऊपर कोई कार्यक्रम होगा तो तमिलनाडु के भी लोग आ रहे हैं
0: बिल्कुल
1: और पंजाब का भी व्यक्ति आ रहा है, कबीर सुनने के लिए उड़ीसा का भी व्यक्ति देख रहा है। तो हमारे यहाँ ये बहुत उदारता रही
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: संत वाणी की, कि उन्होंने पूरे समाज को जोड़ कर रखा। कुंदन लाल सहगल जी एक विशेष गायक थे। आज के श्रोताओं को शायद अनुमान नहीं होगा, लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी, यानी मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरी बुआ और
0: जी
1: हमारे दादाजी के कालखंड में जो सुपरस्टार हुआ करते थे, उनका नाम था K.L. सहगल,
0: बिल्कुल
1: और लोग पागल थे उनके। और ऐसी उनकी अद्भुत आवाज थी कि वो उनकी जैसी आवाज केवल उनकी ही थी। और मैं चाहता हूं कि हम लोग अब मधुकर श्याम हमारे चोर, सूरदास जी के शब्द हैं, आप लोग इसका आनंद लें।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये रचना।

0: आपने अभी ये रचना सुनी आदरणीय कुंदन लाल सहगल जी के स्वरों में, मधुकर श्याम हमारे चोर। सहगल जी उन गायकों में से हैं जिन्होंने कलकत्ते में भी भरपूर काम किया और फिर मुंबई आकर के यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मुंबई में वो रहते थे माटुंगा में, हमारे सेवन गार्डन्स के पास उनका बंगला था। और मैं जब पहली बार मुंबई आया तो मुझे पता नहीं था कि वो कभी कहाँ रहते हैं, तो मैंने ढूंढते ढूंढते मैं उस गली में गया, मैंने कहा सहगल साहब कहाँ रहते थे, बोले यहाँ रहते थे। तो मैं बाहर जाकर उस मकान को प्रणाम करके आया,
1: क्या बात,
0: वहाँ की धूल। क्योंकि ये सब वो गायक हैं जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को सींचा है
1: जी।
0: तो मैं चाहता हूँ कि एक और रचना हम सहगल साहब के स्वरों में सुने और आज के इस शताब्दी की भक्ति रस में ये एक रस का एक बूंद, रस की एक बूंद हम लोग जरूर उसको ग्रहण करें। कहूं क्या आस निराश भई।

0: आज की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में अगली कड़ी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इस श्रृंखला की आज आपने छठवीं कड़ी सुनी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगत आशीष बिश्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमर फिल्म के इस गाने के साथ, लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आजाद फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अफसाना फिल्म से असद भोपाली के बोल और संगीत है हुस्नलाल भगतराम का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हेमंत कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे हाउस नंबर 44 इस फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं देवदास फिल्म से ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत।

आइए सुनते हैं बारादरी, इस फिल्म से ये गाना मुबारक बेगम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, इनके साथ साथियों ने भी इनका साथ दिया, खुमार बाराबंकवी के बोल और नाशाद का संगीत।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनते हैं फंटूश फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं द बर्निंग ट्रेन फिल्म से आशा भोसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

द बर्निंग ट्रेन इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाज में ये गाना। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत, हाथ की सफाई। इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलशन बाबरा के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

परवरिश फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की आवाज में ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना इंकार फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा

0: चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
4: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
5: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर Trivandrum or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
4: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार

0: प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है पत्थर पर। सड़क किनारे पड़ा एक साधारण सा पत्थर शायद हमें बहुत सामान्य सा दिखाई देता है। हम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब किसी शिल्पकार के हाथों में पहुंचता है तो लगातार चोट और तराश के बाद एक सुंदर मूर्ति या बेशकीमती कलाकृति का रूप ले सकता है। यही पत्थर हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है कि मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वो हमें तराशने आती हैं। पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दृढ़ता। वो धूप, बारिश और मौसम की मार सहता है। कभी वो रास्ते का हिस्सा बनता है और कभी किसी इमारत की नींव, तो कभी किसी कलाकार की कल्पना का एक सुंदर रूप।

एक पत्थर का महत्व उसकी मजबूती में छिपा होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। रास्ते में आने वाली असफलताएं, आलोचनाएं, परेशानियां और संघर्ष हमें भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों से हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए छेनी की चोट जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य, आत्मविश्वास और दुनियादारी की समझ सिखाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, लेकिन शायद हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई किसी नई क्षमता को सामने लाने का अवसर होती हो।

जिस पत्थर ने चोट सहना सीखा वही मूर्ति बनकर सम्मान पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कठिन परिस्थिति को चुपचाप सहते रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर सही लोगों से मदद लें, अपने गलतियों को स्वीकार करना सीखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। सड़क पर पड़ा पत्थर किसी के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन किसी कलाकार के लिए वही पत्थर अनमोल हो सकता है। इंसान की क्षमता भी ऐसी ही होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। चोटों से घबराना मत, हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ चोटें तुम्हें तराशती हैं और वही तुम्हें एक दिन खास बना देती हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हनुमान अंश के साथ। श्रेयस धर्म अधिकारी, इन्होंने ये गाना गाया है, लिखा है और इसका म्यूजिक भी कंपोज किया है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
0: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ, जानिए इस फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ बातें 7 अक्टूबर को। लेकिन उसके पहले आइए उनकी इस फिल्म हनुमान अंश का सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के पहले हम आपको बता रहे थे विशाल चतुर्वेदी के बारे में, जो आ रहे हैं विविध भारती पर 7 अक्टूबर शाम 4 बजे। आइए सुनते हैं इसी से संबंधित ये संदेश।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना टशन फिल्म से उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर। इनकी आवाजें हैं पीयूष मिश्रा के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नीलन्नी की इस फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरेओ और डोमिनिक सेरेओ की आवाजों में, अन्विता गुप्तन के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं बार बार देखो इस फिल्म से, अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में कुमार के बोल अमाल मलिक का संगीत।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं सिंघम रिटर्न्स। इस फिल्म से गाना अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाजों में, संदीप नाथ के बोल और म्यूजिक है अंकित तिवारी का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार, तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: तो याद आ गया होगा दोस्तों आपको, ये गाना फिल्माया गया था विनोद खन्ना पर।
1: बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो।

0: बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों, सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है।
3: तो भी हमें क्या करना चाहिए?
2: जो पंचों की राय,
3: तुमने लड़की को देखा?
2: देखा,
3: लड़की पसंद है।
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
4: दुश्मन

उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: हाथ आयु ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो

अभिनेता विनोद खन्ना के कैरियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। ओ बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
3: जरूर देखा होगा साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम भी तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगेला है, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: जाने।
1: फिल्म हेरा फेरी।
0: पर चिंता की कोई बात नहीं,
2: नहीं
0: हम हैं तेरे साथ,
2: बिल्कुल,
0: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात,
2: क्योंकि

0: की हेरा फेरी है।
1: और यह है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

0: 1974 हाथ की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विनोद खन्ना को।
1: मैं हूं लहर और सा

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई। मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह

0: जाता है।
1: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
4: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी, हाँ।
4: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
4: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: कुछ लिखा,
4: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह आपने सुना पीसीओडी और आईवीएफ, इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। आइए अब सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग।
1: डॉक्टर साहिबा, आज हम महिलाओं को लेकर उनकी बीमारियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को इन बीमारियों से दोचार होना पड़ता है। डॉक्टर ज्योति, तो अब जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जिससे हर महिला कभी न कभी गुजरती है
2: जी।
1: और वो समय है मेनोपॉज का। क्या है ये मेनोपॉज और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में ये शुरू हो सकता है? एक आम महिला भी ये जानना चाहती है कि मेनोपॉज आखिर है क्या।
2: जी, जैसे ये वर्ड बताता है मेनो पॉज, मेनो यानी पीरियड्स, पॉज यानी बंद होना, स्टॉप होना। एक लेडी के ये जर्नी में जब पीरियड बंद हो जाता है इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये बंद कितना टाइम तक होना चाहिए, जब हम उसको लेबल करें एज मेनोपॉज की, एक साल जब पीरियड नहीं होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, एक साल के बाद ही उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके पहले अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं उसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। तो बेसिकली पीरियड क्यों बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडा फूटता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो जब फूटना बंद हो जाता है यानी ओवरीज में जो एग्स हैं वो टोटली खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरली नहीं है तो फूटेंगे नहीं तो पीरियड नहीं आएगा, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है उसके पहले का पीरियड जिसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, एक वो टाइम है जब काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ये समझना जरूरी है कि मेनोपॉज में क्या एग्जैक्टली होता है, कि एक जो मैंने बताया अंडे खत्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ओवरीज में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं। तो ओवरीज वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जब मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है धीरे धीरे, एक्चुअली जो पेरी मेनोपॉज है यानी ईस्ट्रोजन लेवल की प्रमाण मात्रा कम होने लगती है और एक टाइम आता है जब वो टोटली बंद हो जाता है सिक्रीट होना ओवरीज में से, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो इसकी उम्र क्या होती है, किस उम्र में शुरू हो सकता है?
2: सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया 40

0: 45 टू 50 इयर्स हैं, उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है।
1: कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से जब बातचीत होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें अभी भी जो है मासिक धर्म होता है।
0: जी जी।
1: तो कई बार सवाल होता है कि अरे आपको अभी मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ?
0: जी।
1: तो नहीं होता
0: जी,
1: तो इसकी उम्र बड़ी भी हो सकती है।
0: यस, बड़ी भी हो सकती है। सो कभी कभी 55-56 तक भी लेडीज को पीरियड आ सकता है।
1: अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
0: नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब उनके अंडे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अभी भी मेंस्ट्रुएट हो रही हैं।
1: तो अच्छी बात क्या है, सही समय पर मेनोपॉज हो जाना चाहिए या लंबे समय तक आपको मासिक धर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं?
0: कोई भी चीज कम या ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर पीरियड जल्दी बंद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत लेट तक भी चलता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो इट हैज टू बी जो रेगुलर टाइम में होना चाहिए वो टाइम पे हो तो बेटर ही है। तो अगर वो जल्दी बंद होता है, यानी 40 के पहले अगर पीरियड बंद हो जाता है, उसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। और अगर लेट बंद होता है 58-60 तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। जी, प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी वो जल्दी वो सिम्टम्स आना, वो भी लेडी के लिए अच्छा नहीं है। और जब लेट होता है पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है, दैट मींस बॉडी में ईस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक, तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
1: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत जरूरी है।
0: यस।
1: आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा, एक गीत सुन ले आपकी पसंद का।
0: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है. तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं. तो मेनोपॉज, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है. पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज. ईस्ट्रोजन जो ई हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनाइक रिलेटेड नहीं है. ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है. आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पाँव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है. तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस. तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं तो लेडीज काफी टाइम ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्सचर उनका कोर्स हो गया है, ये एक है. फिर चिड़चिड़ापन, जैसे जब आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है.
0: अच्छा जी.
1: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमेटर सिम्टम्स हैं. फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आंखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है. तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है. जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडीज काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है. हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है.
0: अरे जी. अच्छा
1: जी. तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो ये हार्ट में हो सकता है. बोन्स को स्ट्रांग रखता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम डेपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है. तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है. आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ये ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है. तो ये भी एक बड़ी समस्या है. यानी जो अपने सीनियर्स हैं, जो अगर ये चीज को नजरअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफी टाइम हम देखते हैं व्हीलचेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इस चीज को जान के उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली, मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफी हद तक, काफी एज तक, 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल लॉस, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज. तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद. और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद.
0: अच्छा जी. ध्यान रखना होगा.
1: जी डेफिनेटली, डेफिनेटली
0: ध्यान रखना होगा. जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने महावारी

0: आना महिला को बहुत परेशान कर देता है, और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है। तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रहे हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही है, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है। आपने कहा कि शरीर में आने वाले जो बदलाव हैं आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे।
1: तो अगर ये सिम्टम्स मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम एस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना ले क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए। बट ज्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं। और दूसरा है कि योग मेडिटेशन प्राणायाम ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट मतलब इस चीज़ का इम्पोर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं कि अगर ये आप रेगुलरली जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज योग मेडिटेशन डाइट इस पर अगर ध्यान दें तो काफ़ी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं। और अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन।
0: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम ये थेरेपी होती भी है कि नहीं।
1: जी, जी, जी,
0: तो डॉक्टर साहिबा जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद महीनों बाद तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई है।
1: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल दो साल तीन साल हो गए और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है, तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सोल्यूशन सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो या बायोप्सी करना चाहे तो डेफिनेटली करना चाहिए।
0: जी तो चलिए गीत
1: आप मेरी जान लीजिए,
0: क्या बात है। लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई हैं, गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, उमराव जैन फिल्म से ये गाना
1: आशा भोसले
0: जी आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ़ शी इज़ डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ़ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मीन्स आर्टिफिशियली हम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है, तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है, तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, पैचेस, या विथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करें।
0: हाँ, डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
1: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेती हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
0: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
1: यस, देखे, मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
0: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें, जो बहुत मेहनत करती हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
1: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती
0: है।
1: जी,
0: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा।
1: यस, और अब

0: मेहनत है उनकी जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमोस्फियर, जो फैमिली, देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट,
1: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना देते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
0: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी,
0: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके, और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है, मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुली ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज़ में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे की देखभाल 24/7 बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
1: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर बात को वही खत्म कर देते हैं कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें सोचना होगा।
0: यस, एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
1: अच्छी बात। और महिलाओं को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
0: वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज में भी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं, बट अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं
1: है। अच्छा,
0: एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है, जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती
1: है, महानगरीय व्यवस्था में तो और भी ज्यादा
0: जी, तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है, तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं, थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड, अगर मम्मी को थायराइड है या आप PCO हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी ही थायराइड के, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना
1: चाहिए जी। यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में
0: इज फाइन
1: रूटीन चेकअप होना चाहिए जी। तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो, ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
0: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवावस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
1: दूर रहना
0: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें. होम मेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं. काफी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है. तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिन की डेफिशिएंसी, काफी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है. तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ है.
1: हाँ, वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे. और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे.
0: यस.
1: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे.
0: यस. और फिर सो जाते थे थक के. यस.
1: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना बोझ
0: नहीं था. जी जी.
1: और घर का बना हुआ खाना, ना उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं.
0: जी जी, बिल्कुल.
1: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है.
0: जी.
1: माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए. सभी कारण भी मिलजुल कर इन चीजों को.
0: यस. तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है.
1: जी.
0: तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही जरूरी है.
1: बहुत अच्छी बात आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है.
0: बहुत. काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को. इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और खुद भी वो फॉलो करना है. एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहां एक घंटा निकल गया पता भी नहीं चलता है. तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा.
1: बिल्कुल आपने कहा. और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी.
0: जी.
1: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं. कौन से गीत सुनेंगी आप?
0: देयर आर सो मेनी. कि तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम,
1: ये गाना सुनना चाहती है. फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में. चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत.

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके। तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब, और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस, और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी,
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली, वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इशू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है।
0: जी।
1: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है। IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम चार पांच या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन देके ज्यादा अंडा, जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफ कोर्स, हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब
0: बिल्कुल,
1: तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं।
0: जी, तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति

0: लगती है?
1: नहीं, सबको तो नहीं होती है. कई बार जैसे पीसीओ पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया. इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
0: अच्छा,
1: तो भी काफी हद तक पीसीओ के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है. इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
0: अच्छा
1: जी, अगर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफी हद तक ये
0: दूर कर दी
1: नेचुरली, यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट. और दूसरी एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ, मतलब नेचुरली है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने, नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है, बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है, हस्बैंड के स्पर्म्स, हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपोजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपोजिट करते हैं. बस खाली उतना
0: फैसिलिटी.
1: हाँ, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है.
0: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है, ये डॉक्टर
1: पहले तो
0: करता है?
1: यस, ये पहले सब टेस्ट होती हैं. ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं, ये नहीं है. ये जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है. काफी हद तक आई वुड से 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम,
0: ये समस्या होती है. और ये तो
1: कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती है.
0: लेकिन
1: ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में, तो बहुत ही डिफिकल्ट.
0: गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि महिला बांझ है और उसे बड़ा, मतलब बुरा सुनना पड़ता है, जिसका दुख होता है. आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते हैं.
1: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा, बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो, बट एक्चुअली हस्बैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल, लड़की या बॉय.
0: जी बिल्कुल सही कहा. इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो है भ्रम उतरा है. तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
1: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म.
0: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं.

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना जरूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब आईवीएफ ऐसा नहीं है कि आईवीएफ करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: ध्यान है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है?
1: Yes.
0: इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइदर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट्स कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है। बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करे जो भी इश्यूज हैं, उसको
0: डॉक्टर के सामने
1: रखें और फिर उससे डील करें, क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि, और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
0: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए,
1: नहीं आना चाहिए।
0: जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
1: ये जो फर्टिलिटी जो है, ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े। वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एग फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टेन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है, जहां पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टेन टेस्ट करते हैं, तो काफी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए।

0: उस चीज के बारे में। सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन्स लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब, तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का ही गीत।

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, छह महीने में, किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। उसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर।
0: जी,
1: सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर वन कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निपल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत जरूरी है। दिस इज माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं अली सरदार जाफरी के इस गुलाम के साथ, आवाज जगजीत सिंह की।

पामेला जैन की आवाज में अभी आपने मदन मोहन महेश्वरी की ये रचना सुनी। संगीत दिया था कुमार मंचुल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में आप सुनिए प्रतिभा सिंह बघेल का गाया कमलेश सोनावाला का ये गीत।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए एक पारंपरिक रचना, स्वर अली गनी का और संगीत भी अली गनी का ही है।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल का गाया ये गीत।

0: यह आवाज़ थी जुबिन नौटियाल की।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गालिब का ये कलाम।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और आप सुन रहे थे गालिब का कलाम। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मधुशिखा गाया ये पारंपरिक गीत।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उड़ुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
0: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
0: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
2: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
2: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखण्ड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
2: पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
2: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
2: बिल्कुल सही भी है, जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओं, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
2: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
0: श्रोताओं, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
2: जी।
0: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
2: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
0: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी।

0: और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
1: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
0: और इसी क्रम में श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
1: क्या हुआ था अजीत जी?
0: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी, जबकि वे जीवित थे।
1: जी।
0: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
1: जी, क्या छपा था?
0: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
1: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी।
0: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
1: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
0: और श्रोताओं, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
1: जी
0: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
1: वो कौन सी अजीत जी?
0: वो ये है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
1: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओं, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
1: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके, और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
1: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
0: तो श्रोताओं, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, और हमारा सवाल है,
1: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
0: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है,
1: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
0: जी
1: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से

0: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। नित्य कछुए,
1: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
0: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
1: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
0: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
1: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
0: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
1: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
0: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
1: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
3: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
1: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
3: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
1: क्या कहा?
3: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
1: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
3: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
0: नहीं, ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
4: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
3: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
4: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
2: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
3: अपने मित्र को देखो।
1: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
6: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
7: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
5: और अब सुनते हैं अष्टावक्र
2: बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
8: बालक नाम के महर्षि थे, वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
9: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी, ऋषि उद्दाम थे। अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाती।
10: कहो, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
11: जो आज्ञा आचार्य।
10: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रखो।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से करवाऊंगी। माता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थी, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है।

0: जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
1: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
2: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
3: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
2: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
3: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
2: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।

0: वो पिता है तेरी, बेटा पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
2: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
3: ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
2: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
4: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या
5: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ, परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
3: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
5: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
6: श्वेत केतु,
3: अष्टावक्र, मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए हैं।
6: हाँ,
3: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
6: कब चलना है?
3: बस अभी तुरंत।
5: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
7: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
2: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
1: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
3: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
8: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
2: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूँ।

0: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
1: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मता जब तक मैं दम भी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
2: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
0: मैं तुम्हारे मता कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे उत्तर दे आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है, जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता, और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज
1: सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
0: अत्यंत सुंदर।
3: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
0: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
1: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
4: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो। जय हो।
2: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
1: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
3: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे।
0: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
1: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है, परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
0: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
1: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है, आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
0: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राज पंडित बंदी।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: मुकुल सिंह,
1: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
1: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए। स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीदा।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास।

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

0: साथ
1: बिल्कुल
0: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये देश।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दोस्तों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए आज फिर आपसे हमारी मुलाकात हो रही है ना। और दोस्तों, कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं होती, वो एक एहसास बनकर दिल में उतर जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में चलिए उन्हीं खास मुलाकात की गलियों में, जहां पहली नजर, पहली बात और पहली मुलाकात एक खूबसूरत याद बन गई हमारी जिंदगी में, उसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। तो हमारी इबारत आज क्या है आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत या यूं कहें टेक्स्ट पढ़े देते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में भी वो पहली मुलाकात किसी से भी हो सकती है, उसका जिक्र आप भी अगर करेंगे तो कार्यक्रम और भी अच्छा लगेगा और ये मुलाकात और रोचक हो जाएगी। हमारी आज की इबारत है, आपको अपनी पहली मुलाकात याद है? कभी वो पहले पहले प्यार की मुलाकात जैसी खूबसूरत रही होगी, कभी कुछ और, और कभी लगता है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, बस इसी ख्याल से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वैसे सच कहें तो कई बार ये मुलाकात एक बहाना है, असली बात तो दिल की होती है। और किसी खास से मिलकर लगे तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, फिर दो बेचैन दिल मिल जाएं तो दो चैन चाहने वाले, दो चैन ना चाहने वालों की मुलाकात हो सकती है, और पता ही नहीं चलता कि कब छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई है। फिर लगता है जैसे मुलाकातों का मौसम आ गया, मगर कुछ मुलाकातें इतनी हसीन होती हैं कि कल की हसीन मुलाकात के लिए आज की रात की यादों में कट जाती है। और कभी कभी दिल डरता है कि कहीं जाने वाले से मुलाकात न होने पाए। तो बस आज के इस सफर में मुलाकात के इन्हीं रंगों से हम रूबरू होने वाले हैं। चलिए तो सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ खास गीत, ऐसे गीत जहां मुलाकातों का जिक्र है और जिंदगी की कुछ खास मुलाकातें हमारे साथ उम्र भर चलती हैं इन गीतों की तरह। किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताजा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी बातें इस मुलाकात में शामिल है। कुछ मुलाकातें पल भर की होती है लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब होती है ना कोई वादा ना कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं लेकिन जाने न जाने क्यों एक शख्स दिल को अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला नहीं बल्कि दो दिलों के बीच बुना हुआ एक नाजुक रेशमी पुल है। एक उत्सुक मन दूसरे समृद्ध मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करता है, तब शब्द और अर्थों के पर्दे एक एक करके आसानी से खुल जाते हैं और कोई नहीं कह पाता कि आज की मुलाकात बस इतनी। वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है। और आगे आपने कल के कार्यक्रम का जिक्र भी किया है। आप एक

बाबा ने कहा कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसी व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, नहीं उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे साधे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को, और याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नजारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है, मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए। वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहां, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, ऊपर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती है, ये वो मंजर है जहां मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे की मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी भेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या, विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आई थी, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती है कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वहीं एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो तारीख याद है न ही दिन, बस इतना याद है पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहां से आवाज आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही हाल हर बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहां बैठते हैं लोग, ये हर बच्चे के साथ हुआ।

हमारे साथ भी हुआ। वही एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव, अच्छा आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। जी हाँ देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूँ और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज भी अच्छी लगती है। चलिए आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो ये अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है। इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त परिवार रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारी श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है। आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया ये अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा, बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है, उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा की तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया। दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्म पत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नजरें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी, बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी की डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली, कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान बनी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइड। अरे तू लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है, सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी अन्य की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बात है क्या बात है, बस मजा आ जाता है, तो बस आपका ही सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं, तो वो निकल जाता है मुंह से कि वह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी ख्यालों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिसे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही आगे निकल जाए पर दिल के किसी कोने में वो एक पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उन्हीं पलों की खामोशी में एक ऐसी आवाज होती

है जो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देती और जिंदगी के लंबे सफर को एक मीठी महक से भर देती है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात आप लोगों ने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी मुलाकात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, बहुत पुरानी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत जिंदगी है। सुना है इस फिल्म का नाम आपने, बताइएगा अगर सुना है तो। और इस फिल्म में कौन कौन थे ये भी बताइएगा। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर की धुन।

तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचार लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ लिखा है कि नमस्कार, मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है। कुछ मुलाकातें

तो सीने में याद बन जाती है, किसी से मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला। पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम। एक रिश्ता रूहानी था जहां देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दी आपने। और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूंगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े। मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूं। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह। इन दिनों नहीं मिल रही है और मैं वो असम में थी और मैं भागलपुर में। दूसरों में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आप भी अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा, इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इला अरुण जी से आपकी मुलाकात हुई। इससे पहले इला अरुण जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवा दिया जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसी ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिनों मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे जो अब भी है। चमड़े से बनी सफेद चप्पल पहने, सफेद पतली कटारीदार मूछें, सिर पर सारे सफेद बाल, सफेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनके पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए वो सफेद कुर्ता पजामा पहने शख्स थे, गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा ये वाक्य याद आ गया। देखिए आपने अपने दिल को खंगाला ना। गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे, इन मुलाकातों के बीच एक गीत बोल के जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे गीत हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही है जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूं मैं आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुंचे हैं आपके कार्यक्रम में लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है। विविध भारती से इतना प्यार जो है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामन या खुर्द से कन्हैया लाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों का आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था, इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई, पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार है ना। आई सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी की बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

कोई जरूरी है, क्या बात है। आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना। क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस जी, अच्छा यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूँ, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुंचा भी देंगे उन तक। वही एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई, बन गई और शादी हो गई, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए, बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कंफ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है, क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे, क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं, अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ, और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे जैसे मुझे बरसों से जानते हो, ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों बरसों से फोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगे पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे, अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती है कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी, आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी है और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही है। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो भय वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत जिंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ही फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा, आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद है, कौन कौन से गीत है। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्म पत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रखती है, रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मुझे पुराने महाभारत के यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबादत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती की पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट। गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड डे चल रहा है।

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है पत्थर पर। सड़क किनारे पड़ा एक साधारण सा पत्थर शायद हमें बहुत सामान्य सा दिखाई देता है। हम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब किसी शिल्पकार के हाथों में पहुंचता है तो लगातार चोट और तराश के बाद एक सुंदर मूर्ति या बेशकीमती कलाकृति का रूप ले सकता है। यही पत्थर हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है कि मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वो हमें तराशने आती हैं। पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दृढ़ता। वो धूप, बारिश और मौसम की मार सहता है। कभी वो रास्ते का हिस्सा बनता है और कभी किसी इमारत की नींव, तो कभी किसी कलाकार की कल्पना का एक सुंदर रूप।

एक पत्थर का महत्व उसकी मजबूती में छिपा होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। रास्ते में आने वाली असफलताएं, आलोचनाएं, परेशानियां और संघर्ष हमें भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों से हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए छेनी की चोट जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य, आत्मविश्वास और दुनियादारी की समझ सिखाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, लेकिन शायद हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई किसी नई क्षमता को सामने लाने का अवसर होती हो।

0: पत्थर के सनम।
1: जिस पत्थर ने चोट सहना सीखा वही मूर्ति बनकर सम्मान पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कठिन परिस्थिति को चुपचाप सहते रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर सही लोगों से मदद लें, अपने गलतियों को स्वीकार करना सीखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। सड़क पर पड़ा पत्थर किसी के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन किसी कलाकार के लिए वही पत्थर अनमोल हो सकता है। इंसान की क्षमता भी ऐसी ही होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। चोटों से घबराना मत, हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ चोटें तुम्हें तराशती हैं और वही तुम्हें एक दिन खास बना देती हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दो गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैच्यू यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं। चलते फिरते

0: खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
3: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
4: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
4: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6

0: में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली चार पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: यह अवस्थी आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था चौदवी का चांद। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत दिया था रवि ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार का गीत, शब्दकार शैलेंद्र और संगीत ओ एस डी बर्मन का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सदाबहार नगमे का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल। फिल्म का नाम है सरहद और आवाजी आशा भोंसले और सी रामचंद्र यानी चितलकर।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे, आवाज गीता दत्त की। इस गीत को शकील नुमानी ने लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

संभाल।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं

0: श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास की बोल, एसएन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

को हर अदा मस्ताना सर से,

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में

0: सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सखियों सखियों को और आरती आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमारे जो फेसबुक से जुड़े श्रोता हैं उनके हाँ। कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं।
2: बिल्कुल,
1: फिर भी हम विषय बताते हैं कि
2: हाँ, जिससे कि हाँ, जिससे कि हम हमारे जो श्रोता उनको एक बार हम अपने मुंह से बता सके।
1: अभी हर श्रोता नहीं जो फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, कई लोग सिर्फ रेडियो सुनने के लिए अपने आनंद के लिए भी सुनते हैं।
2: हाँ, ये तो है।
1: तो भले वो हमें संदेश ना करें लेकिन उनके लिए भी क्या विषय है ये जानना जरूरी है। तो आज है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, इसके बारे में बात होगी।
2: और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं संगीता देवी जी जो कि हैं संस्थापक दिया माटी की, और साथ ही हम लेकर आए हैं मुहावरों की दुनिया।
1: तो कौन सा मुहावरा है भाई, आज किस मुहावरे पर हम बातचीत करें?
2: आज हम मुहावरे पर बात करने वाले हैं कि अक्सर जो हम लोग करते हैं ना काम, कि अब भाई हम करेंगे करेंगे करके ओखली में सर दे ही देते हैं कि चलो कर ही देते हैं, अब क्या है। तो अच्छा, ओखली में सिर देना,
1: ओखली में सिर देना हुआ एक मुहावरा, इसी को दूसरे मुहावरे के साथ भी जोड़ते हैं ना।
2: हाँ,
1: ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डर।
2: बिल्कुल, अब आपने उसमें दाल ही दिया है ना तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा अब।
1: जी, और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी, और ये हल्की फुल्की बातें भले है लेकिन बड़े काम की है, क्योंकि अब जो समय है त्योहारों का समय आ गया भाई, आ चला। और त्योहार आने का मतलब क्या,
2: त्योहार के नाम से ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि त्योहार मतलब बढ़िया खुशियां, एकदम चकाचौंध हर तरफ।
1: वो जो खुशियां और चकाचौंध ये आती है थोड़ी सी साफ सफाई सजावट घर की होती है,
2: काम करना पड़ता है।
1: त्योहार मतलब सजावट भी है, थोड़ी साफ सफाई भी है, थोड़ा सा घर में काम भी हाथ बटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगे ना सबके लिए, खाने के लिए, मेहमानों के लिए भी और घर के सदस्यों के लिए भी, तो वो भी एक काम होता है। और इन चीजों के लिए भाई खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना सजावट का सामान कैसे आएगा, घर में पकवान बनाने का सामान कैसे आएगा। तो खरीदारी भी
2: एक समझिए एक हमें आनंद का विषय है। खरीदारी करने जाना होता है, खरीदारी करने जाना है, मतलब सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि अब जाएंगे जो मन करेगा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो देखेंगे वो हम अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे।
1: जो त्योहारों का समय होता है ना, इसी उत्सुकता और उत्साह की वजह से जो विक्रेता है वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं लोगों को और लुभाने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ खरीदारी के लिए और आकर्षित।
2: बहुत सारी चीजें होती हैं और तरह तरह के ऑफर तो होते हैं, साथ में कई सारे और जो इस तरीके के विक्रेता होते हैं ना, तो कुछ जो लुभावने होते हैं इसमें वो ठगी का भी वो कर लेते चीजें, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
1: ठगना भी नहीं है, अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना है।
2: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम को संभालना है तो भाई गाने
2: गीत तो सुनना पड़ेगा
1: जी।

0: आरती बहुत खूबसूरत गीत था और इसके जो शब्द थे ना कि तन मन की शुद्ध बुद्ध गवा बैठी, कोई चीज जब दिल में समाती है, हमारे मन में बस जाती है ना, तो वो इतनी भाती है कि हमें शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। और इसी तरह से जब हम किसी काम को बहुत डूब कर करते हैं तो उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती और ऐसा काम हमें सफलता भी देता है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हम एक महिला को लेकर आए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है संगीता देवी, जो कि संस्थापक हैं दिया माटी की। तो संगीता देवी की कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार से जुड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं की खेती और पशुपालन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं ने उन्हें ऐसा सामूहिक मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें महिलाएं केवल किसान या लाभार्थी बनकर न रहकर कंपनी की शेयर धारक और निर्णय लेने वाली सदस्य बने।
0: तो उन्होंने जो निर्णय लिया ना आरती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो ज्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो खेती से जुड़ी है, पशुपालन से जुड़ी है, तो उन्हीं के काम को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना। और संगीता देवी की कहानी जो आज हम बता रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये केवल एक कंपनी की स्थापना की बात नहीं है, ये उस सोच की कहानी है या उस सोच की बात है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को मदद पाने वाली महिलाओं से निर्णय लेने वाली उद्यमी महिलाओं को बदलने का प्रयास किया गया। यानी कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गांव की महिलाओं ने, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है, तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती, और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, इनकी सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है, तो माटी जो है वो गांव की है और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही है। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनसे हुई थी।
0: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज के लिए बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे, ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गांव गांव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना जहां

0: उन्होंने ये जब ये सब नए नए शब्द थे उनके
1: जी
0: लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था। वहां उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
1: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है, और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था, बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
0: बिल्कुल। और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यानी कि आप समझ लीजिए, जो भी कुछ गांव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
1: बिल्कुल। अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई, जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं, तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था, उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
0: बिल्कुल। क्योंकि ना देखिए, हर चीज आज एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी।
1: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है। और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है। हम ये कभी ना सोचे कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अभी
0: समय हो गया एक छोटे से
1: अंतराल का।
0: हाँ।

0: यार।
1: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है।
2: है भी अच्छा।
1: अब बात करते हैं एक मुहावरे की जो है ओखली में सिर देना। नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं।

0: तो करूंगा तो, और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं कहीं पर, आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सहराबंदी भी आपके जिम्मे, तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
1: बिल्कुल, यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने, और जब धनादन धनादन मुसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में थी क्यों दिया था हमने इसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
0: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं, और हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
1: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना, और ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं, लिखते हैं कि

0: हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी, नुकसान या संकट आने वाला है, स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है, तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
1: और भी संदेश है इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना, ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं, बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना, बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने, आपको सुनना है। ऐसा भी नहीं है।
1: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम, घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो पत्नियां हैं, बहनें, उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया, और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई, तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता, यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो खराब हो गए हैं, तो इन्हें नया लगवा लीजिए, उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया, पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया ही है तो डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
1: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और हम तुम के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई इससे डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भैया, आरती मिठाई रिश्तेदार सबसे पहले शुरू होता है भाई, चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार तो होता है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज, भाई नहीं रख दो काम की चीज है।
1: बिल्कुल, और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारतीय फैमिलीज होती है उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज हम उसको खराब नहीं करते। अगर कोई डिब्बा है तो उसको खाली चलो उसको धोके रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला,
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पर डाल दिए जाते हैं। और घर से जब हम निकलते ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने, सजावट की चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, भाई जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो। और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मन
1: थोड़ा तो बैंक बैलेंस दे दो
0: ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, इतना सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से हटे, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते हैं, ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें। इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।

0: बिल्कुल। और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का साथ तो ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, है ना।
1: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी है बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम कर रहा है, कुशन को उठाया यहाँ से वहां रख दिया, ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से
0: बिल्कुल छोटी छोटी चीजें रखी, अच्छा ये चीज वहां है वहां रख दी, काम कर रहे दिख रहा है कि आज हम काम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
1: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन ले।
0: बिल्कुल।

0: सच में जो बहारों की जो ऋतु आ रही है यानी कि त्योहारों की ऋतु आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहां सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हो और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं तो जो साज सज्जा होती

0: उसमें कपड़ों के गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है, बाजारों में बहुत धूम मची हुई है।
1: बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वही विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से ही सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहां एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि त्योहार बनाओ खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, देते थे लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियां लेती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती हैं, मतलब चीजें हैं कि देखिए साफ सफाई घर में होनी चाहिए, बहुत सारी जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
0: और
1: है।
0: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में, और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में। फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ी को, उसकी साफ सफाई हो जाती है, और पूरा घर कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसी के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और सबके साथ मिलकर ही खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है, मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीजें मुझे मिलती नहीं है और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीजों में मेरी जो चीजें वो मैं ही रखता हूं, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है, मतलब त्योहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्योहार में सफाई होती है ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
0: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की, अपनी चीजों की सफाई कैसे रखें, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं, और घर को साफ करने के लिए भी नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए, और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुलाकर त्योहारों में उनसे भी गले मिलिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुशी, संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियां, जो खुशियां उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
0: बिल्कुल। घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्योहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है, जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस. और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है. कुछ भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको खास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत जरूरत होती है.
1: बिल्कुल. और वैसे भी सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है. ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है.
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है. एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज है उनके लिए.
1: बिल्कुल. और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है.
0: बिल्कुल. किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोजमर्रा के जो काम है उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है. और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, किसी को थोड़ी कम होती है.
1: बिल्कुल. और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं. यहीं से सोच बदलने की जरूरत है. कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए.
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में. तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें, और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है.
1: बिल्कुल. और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाजों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है.
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत.

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से शो, तो हम बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सब सजावट करते हैं त्योहार की।
1: संदेश आने बंद ही नहीं हो रहे हैं।
0: हाँ तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताजा करी जाती है, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्योहार को सच में त्योहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया, तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी की धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े बर्तन मिठाइयां और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़ लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है, फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि
1: हम भी
0: सयोनारा कहने का
1: हम भी सयोनारा कहते हैं।
0: और कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर, ये वादा करते हैं,
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आदेश श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है, और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है, और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से, बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं, जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था, मेरे सारे अभी, मतलब मैं थोड़ा सा खोया हूँ, क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं, और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूं, कैसे बात करूं।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए है, ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज्यादा जरूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम आए, विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ,
2: बिल्कुल।
1: तो विविध भारती किस तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताएं, वहां से शुरुआत करते हैं।
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ, और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे हैं, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं पहले। तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, तो 12 रुपए या 15 रुपए में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए, तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी।

0: फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से, और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
1: हाँ, 4 या 5 बजे
0: हाँ जी
1: शायद।
0: हाँ जी हाँ
1: हाँ
0: जी।
1: जी
0: तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, बच्चे ही थे, और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया, और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: क्या बात है।
0: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसी की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के
1: जी
0: फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे,
1: जी
0: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया। और
1: जी
0: पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
1: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरी जिंदगी में आया, और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ
1: जी
0: कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है, या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है, तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए, और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए,
1: जी
0: है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना। क्योंकि एक बाल मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना
1: क्या
0: चाहता
1: बात
0: हूं,
1: है।
0: है
1: ये
0: ना।
1: हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद इसके
0: यार,
1: लिए।
0: शुक्रिया।
1: बचपन की जैसे बात की आपने,
0: हाँ जी,
1: तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए,
0: हाँ जी
1: क्या
0: हाँ
1: वो इस
0: जी
1: चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जैसे सही मायनों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन में।
0: बिल्कुल। अरे वाह, एक तो जहां पे मतलब, क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हों 2:30 3 बजे, तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था, और गाने चल रहे होते थे, मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी। तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूं कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा, करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था, तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे, नहीं
1: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
0: कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा,
1: अच्छा।
0: है ना, बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है, तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा,
1: अच्छा।
0: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा, तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊं मैं, बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विविध भारती ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर, तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और
0: कोई
1: सपनों
0: और,
1: की नगरी में आना ही है।
0: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे,
1: जी,
0: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट
0: अरे
1: थे,
0: बहुत
1: किस तरह
0: ज्यादा,
1: के, आपने बचपन को जिया है जैसे,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: किस
0: जी
1: तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे, भाई बहनों के बीच,
0: बिल्कुल
1: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
0: हाँ, मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह कि जहां मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है,
1: अच्छा।
0: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहां पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहाँ पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन।
1: अच्छा।
0: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
1: जी।
0: और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
1: बिल्कुल।
0: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी 5 भाई थे और उनमें से 3 भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई BSF में है। वहां एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं।
1: अच्छा।
0: बट मैं सोचा कि नहीं, मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था।
1: हाँ।
0: कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलोसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास।
1: बिल्कुल।
0: मैं बेवजह खुश हो जाता हूँ कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है।
0: हाँ।
1: जिसे हम बाहर तलाशते हैं
0: जी। और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा मुझे काम मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: यही एटीट्यूड था मुझे, कभी भी शक नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे,
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ।
1: चलिए आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: एक बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है। बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
0: यस।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो
1: अच्छा
0: बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस ले आओ।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ, और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया।
0: अच्छा
1: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
0: ये
1: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: आपने पटना से किया
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी?
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है ये
0: बिल्कुल
1: सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा हो उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी
0: था,
1: हाँ जी हाँ
0: इसीलिए
1: जी हाँ
0: वो
1: जी
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं,
1: देखो,
0: सुनिए
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं
0: जरा।
1: वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लाला दत्ता की फिल्म थी।
0: जी।
1: और अब

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी,
0: है ना? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहां से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूं, मैं भूल ना जाऊं। मेरे यहाँ ना वही, जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय, और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
0: बहुत कमाल।
1: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। बोले तो नहीं, फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ
0: जी
1: रही है कि भाई 1 2 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चूंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं मिले
0: अच्छा
1: तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई, और तब तक 12:30 हो चुके थे, और मेरे जैसा

0: मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने
1: जी
0: मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आया। मुझे लगा यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई, बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1-2 महीने के बाद फिर से चिकित्सक के बिना मैं रह नहीं सकता था।
1: जी,
0: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
1: रच बस गया था सिनेमा।
0: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियां आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
1: जी
0: आज,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
0: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे यह था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, तो मैंने ना 1 से 12-15 सवाल तैयार करके रखा था। यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
1: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
0: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है। मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
1: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक
1: बिल्कुल
0: पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
1: ये
0: चादर।
1: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
0: बिल्कुल,
1: नहीं सपने देखने से,
0: हाँ
1: और जो चाहेंगे वो होगा,
0: हो जाएगा।
1: बस वो मेहनत की जरूरत है
0: एक ही
1: और
0: जिंदगी मिली है
1: शिद्दत।
0: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका, मरीचिका जो होता है ना वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां,
1: बिल्कुल।
0: लोग को लगता है अरे ये सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूं माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूं, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूं, एक कमाल की एनर्जी में होता हूं। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही ये बात, एक्शन और कट के
0: बिल्कुल
1: बीच का
0: बिल्कुल,
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस। जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूं और समझता हूं कि उस लम्हे को जी लूं, उस पल को जी लूं। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश होती है। उसके आसपास भी चला जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहां पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है,

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूं तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज नहीं है, इसको खेलना है। नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे, और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक,
0: जी
1: कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो।
0: जी
1: मैं उसमें बाल्य कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मजा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे। और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे,
0: अच्छा,
1: गांधी गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लगता था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली करेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें,
0: जी
1: है ना, करेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूंकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
0: बिल्कुल
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप उस समय नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊंगा। और
0: अच्छा
1: मैं उस 1 महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीजें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय।
0: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और उसके
1: जी
0: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
1: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप चार भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
0: बिल्कुल
1: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब

0: भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में, IMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहाँ जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मैं पूरे पैसे नहीं आते
1: अच्छा
0: थे है ना।
1: जी
0: और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी याद, वो जो पहला दिन था, उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूं, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता, क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता है ना,
1: जी
0: 50 चीजें सोचता। उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीजों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन वहां उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूं तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूं, प्रणाम कर लूं।
1: अच्छा
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया
1: अच्छा
0: ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा।
1: अच्छा
0: फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो 1-2 दिन 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपके लिए
0: मजेदार तो
1: एक ही
0: बिल्कुल
1: वक्त,
0: था, बिल्कुल था।
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी
1: लेते।
0: भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, या मुंबई में हूं, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूं,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो
1: बिल्कुल
0: अनुभव बहुत जरूरी था। तभी तो आज जब चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूं, उछलता नहीं हूं, क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
1: अच्छा
0: क्योंकि वहां भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए
1: जी
0: है ना। और जाता क्या था, 1-2 दिन रुक ही जाता था मैं वहां
1: ओके
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूं ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊं तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
1: जी
0: वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहां से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था, और
1: अच्छा
0: सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे हो मेरे लिए हो जाते थे,
1: बिल्कुल
0: तो मैं पैदल ही निकलता। कहीं पसीने से तर बतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा।

0: की जो मैडम है रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के दो तीन जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो,
1: अच्छा
0: तो उन्होंने मुझे दो जूते दिए थे, तो वही दो जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर एक 1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आज यहां बैठा हूं ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है
0: आशीर्वाद है। अगर वो
1: बिल्कुल।
0: लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए आप सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना मैं
1: सही
0: सारे बचपन के सारे गाने लेकर
1: बिल्कुल
0: के
1: बिल्कुल
0: ही,
1: सुनवाते हैं
0: हाँ
1: गीत।
0: जी।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे, साथ ही हमारा कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे और अपना ध्यान रखते हुए अपने खान पान में भी संतुलन बना रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसे आप सुनते हैं प्रतिदिन शाम 5 बजे आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से 102.7 FM पर। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन और क्या सुनेंगे आज आप इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज है मेघनाथ साहा की जयंती, जिसके विषय में आज इस कार्यक्रम में आप एक वार्ता सुनेंगे, साथ ही कुछ बातचीत और मनोरंजन के लिए कुछ हिंदी फिल्मों के प्यारे प्यारे गीत। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम और चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के समय में केवल शिक्षित होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना भी जरूरी है। एक जागरूक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है और देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। दोस्तों, जागरूक नागरिक अपने आसपास की समस्याओं के प्रति सजग रहता है, वो कानून और नियमों का पालन करता है, स्वच्छता बनाए रखता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देता है। साथ ही वो अफवाहों और झूठी खबरों पर विश्वास करने के बजाय सही जानकारी की पुष्टि करता है। दोस्तों, मतदान भी एक जागरूक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमें अपने मताधिकार का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। दोस्तों, आज डिजिटल युग में साइबर जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। OTP, पिन और पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी भी संदेश या खबर को सत्यापित किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। युवाओं की भूमिका इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। युवा स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, सड़क सुरक्षा, रक्तदान, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यों में भाग लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, एक देश तभी मजबूत बनता है जब उसके नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। इसीलिए हमें स्वयं जागरूक बनना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, और आज का ये अंक आप सुन रहे हैं अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा के साथ। दोस्तों आज है मेघनाथ साहा की जयंती, तो लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है मेघनाथ साहा, आधुनिक भारतीय खगोल भौतिकी के जनक, और वार्ताकार हैं पुनीत।
8: आज रात जब आप आसमान देखेंगे तो सितारे दिखेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सितारों के अंदर क्या है, वो कैसे जलते हैं, किस टेम्परेचर पे हैं, कौन से एलिमेंट्स से बने हैं? आज हर एस्ट्रोनॉमी की टेक्स्ट बुक में जो इक्वेशंस हैं वो हमें बताते हैं कि स्टार कैसे काम करते हैं, और उन इक्वेशंस की बुनियाद रखने वालों में एक नाम है, एक भारतीय साइंटिस्ट का नाम, मेघनाथ साहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है। आज आकाशवाणी की इस विशेष वार्ता में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मेघनाथ साहा की, जिसे आधुनिक खगोल भौतिकी का जनक माना जाता है। साहा कोई अमीर खानदान का लड़का नहीं था, यह एक ऐसा बच्चा था जो कभी जूते नहीं पहन सकता था क्योंकि पैसे नहीं थे, जो कई बार रात को भूखा सोता था, जिसके पिता गाँव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। साहा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी थर्मल आयोनाइजेशन इक्वेशन। सरल शब्दों में कहें, इस समीकरण ने पहली बार दुनिया को बताया कि किसी तारे के स्पेक्ट्रम को देखकर उसका तापमान और उसकी रासायनिक संरचना कैसे जानी जा सकती है। वैज्ञानिक आइंस्टीन और एंडी गटन ने भी उनकी खोज को दुनिया की शीर्ष 10 खगोल वैज्ञानिक खोजों में से एक माना था। आज भी जब कोई खगोल शास्त्री किसी दूर स्थित तारे का अध्ययन करता है तो वह साहा के समीकरण का ही उपयोग करता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 1893 में ढाका के एक छोटे से गांव में जन्मे साहा ने घोर गरीबी देखी थी, लेकिन उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि उन्होंने गणित और भौतिकी में अपनी अलग पहचान बनाई। साहा केवल लैब तक सीमित नहीं रहे, वे एक सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने भारत में नदी योजना रिवर प्लानिंग की नींव रखी। आज जो हम दामोदर घाटी निगम देखते हैं वह साहा की ही सोच का परिणाम था, ताकि देश को बाढ़ से बचाया जा सके और बिजली पैदा की जा सके। उन्होंने भारत के पहले कैलेंडर सुधार में भी मुख्य भूमिका निभाई। साहा ने कोलकाता में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की। वे चाहते थे कि विज्ञान आम आदमी के काम आए, इसी उद्देश्य से वे संसद भी पहुंचे, ताकि देश की विज्ञान नीतियों को सही दिशा दे सके। वे अक्सर कहते थे कि विज्ञान का उपयोग गरीबी मिटाने के लिए होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेघनाथ साहा की असाधारण जिंदगी। साहा का बचपन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उनके पिता एक साधारण किराना दुकानदार थे और चाहते थे कि मेघनाथ भी दुकान पर हाथ बटाए, लेकिन मेघनाथ के भीतर ज्ञान की एक ऐसी आग थी जो गरीबी से बुझने वाली नहीं थी। उनके पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तब एक स्थानीय डॉक्टर अनंत कुमार दास ने उनकी मदद की। शर्त बस इतनी थी कि मेघनाथ को उनके घर के बर्तन धोने होंगे और गायों की सेवा करनी होगी। कल्पना कीजिए, एक बालक जो दिन में दूसरों के घर काम करता था और रात को दिए की मध्यम रोशनी में सितारों को देखकर बड़े सपने बुनता था। जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे तो लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उनकी छात्रवृत्ति भी छीन ली गई। लेकिन साहा कभी झुके नहीं, उन्होंने अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। साहा ने दुनिया भर की नदियों के व्यवहार का अध्ययन किया, विशेषकर अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी का। उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया कि नदियों पर बांध केवल पानी रोकने के लिए नहीं बल्कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत पैदा करने के लिए बनाए जाने चाहिए। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण दामोदर घाटी निगम का जन्म हुआ। आज हम जो भाखड़ा नागल जैसे बांध देखते हैं उनके पीछे साहा की वैज्ञानिक योजना और डॉक्टर अम्बेडकर का समर्थन शामिल था। वे सही मायने में भारत के नदी योजना के वास्तुकार थे। एक और दिलचस्प बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं वह यह कि साहा का कैलेंडर से जुड़ा काम भारत में आजादी के समय लगभग अलग अलग क्षेत्रों में 30 अलग अलग प्रकार के कैलेंडर इस्तेमाल होते थे जिससे तारीखों को लेकर बड़ी उलझन होती थी। फिर पंडित नेहरू के आग्रह पे साहा ने कैलेंडर सुधार समिति की अध्यक्षता की। उन्होंने खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए एक सटीक और वैज्ञानिक कैलेंडर तैयार किया जिसे आज हम भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जानते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमारे त्योहार और ऋतुएं खगोलीय घटनाओं के साथ सटीक तालमेल बिठाएं। उन्होंने विज्ञान को हमारे रोजमर्रा के जीवन और संस्कृति से जोड़ दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खोज की जिसने दुनिया बदल दी। 1920 के दशक से पहले वैज्ञानिक यह तो जानते थे कि तारों में कौन से तत्व हैं, लेकिन वे यह नहीं बता सकते थे कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में है और तारा कितना गर्म है। साहा ने थर्मल आयोनाइजेशन का सिद्धांत दिया। उन्होंने गणित के जरिए यह समझाया कि जब अत्यधिक गर्मी होती है तो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। साहा के बिना आधुनिक खगोल विज्ञान शायद आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। बिल्कुल, मेघनाथ साहा केवल सितारों के वैज्ञानिक नहीं थे, वे धरती की समस्याओं के प्रति भी उतने ही गंभीर थे। उनके नदी प्रबंधन और कैलेंडर सुधार के कार्यों ने भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। मेघनाथ साहा एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका दिल आम आदमी के लिए धड़कता था। साल 1923 में बंगाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने साहा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि हजारों लोग बेघर हो गए और फसलें बर्बाद हो गई। उन्होंने तय किया कि वे केवल प्रयोगशाला में ही नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, मेघनाथ साहा का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे फौलादी हों तो अभाव के बीच से निकलकर भी आप सितारों की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। अपने जीवन के 40 वर्षों तक डॉक्टर साहा विज्ञान के अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान कार्य में संलग्न रहे। अपनी देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने का उन्हें बहुत कम अवसर मिला था। यद्यपि बंग भंग के अवसर पर उन्होंने स्कूलों की हड़ताल में भाग लिया था और देश के राष्ट्रीय और राजनीतिक नेताओं से उनका घनिष्ठ संबंध था, परंतु राजनीति में उन्होंने सक्रिय भाग नहीं लिया था। तथापि उन्होंने समझ लिया था कि विदेशी शासन के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा शिक्षा का विस्तार कर सकना कठिन था। अनुसंधान अथवा शिक्षा बाढ़ अथवा विस्थापितों की समस्या, उद्योग अथवा राष्ट्रीय योजना, सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है। सन 1930 से डॉक्टर साहा का संबंध सरकार की बहुत सी समितियों से अवैतनिक तथा परामर्शदाता के रूप में था। अधिकांशतः उनका संबंध विज्ञान, शिक्षा तथा योजना से था। जब सन 1947 में भारत विदेशी शासन से मुक्त हुआ तब हमारी सरकार ने विकास और योजना का कार्य बड़े उत्साह से हाथ में लिया, परंतु स्थापित करने, वैज्ञानिकों को उत्प्रेरणा देने और राष्ट्रीय योजना का पथ प्रदर्शित करने में उन्होंने अथक प्रयत्न किया। उनकी सेवाएं शिक्षा एवं अनुसंधान तक ही सीमित नहीं रही, साधारण जनता से उनका व्यक्तिगत प्रेम था। जवानी में उन्होंने बाढ़ के सहाय कार्य में स्वयंसेवक का कार्य किया। पौढ़ अवस्था में इतना प्रसिद्ध हो जाने के बावजूद भी वे दुखी लोगों को नहीं भूले। डॉक्टर साहा ने सन 1950 में पूर्वी बंगाल से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए एक बड़ी संस्था का संगठन किया। उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उन्हें उच्च रक्तचाप हो गया था जिसके कारण उनके

0: चेहरे के बाएं भाग में पक्षाघात हो गया था। अपनी अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने परिश्रम करना नहीं छोड़ा। विस्थापित लोगों के विभिन्न कैंपों में वे जाते रहते थे। विस्थापित लोगों के कष्ट और सर्वदा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे। 13 फरवरी 1956 को डॉक्टर साहा बजट के अधिवेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए। विस्थापितों की समस्या, बेरोजगारी और नदी नियंत्रण आदि विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करना था। 16 फरवरी को वह राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे। उनके पास कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे। एकाएक उन्हें बेहोशी सी आई और वे गिर पड़े। कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई और उसी में से एक सज्जन ने डॉक्टर साहा को पहचाना और सहायता के लिए वे आगे बढ़े। डॉक्टर साहा को अस्पताल ले जाया गया, परंतु तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह दुखद समाचार सारी दुनिया में फैल गया। भारत और संसार से एक बड़ा वैज्ञानिक तथा मानवता प्रेमी चल बसा। क्या यह कहना ठीक है कि बड़े नगरों में रहने वाले बड़े लोगों के लड़के ही बड़े बन सकते हैं? मेघनाथ बहुत गरीब माता पिता के लड़के थे और शहरों तथा नगरों की अपेक्षा एक छोटे गांव में पैदा हुए थे। इतना होने पर भी वे इतने बड़े और प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सके, देश और विदेश में भी उनका बड़ा आदर था। अपनी गरीबी और अन्य कठिनाइयों के बावजूद वे महान बन सके। कोई भी अपने उद्यम से ही बड़ा बन सकता है। आज जब भारत अंतरिक्ष विज्ञान में नए आयाम छू रहा है, तो हमें प्रोफेसर साहा के उस योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए, जिसने हमें आकाश को देखने का नया नजरिया दिया। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। विषय था मेघनाथ साहा, आधुनिक भारतीय खगोल भौतिकी के जनक। वार्ताकार थे पुनीत। प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY। Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
3: दोस्तों, आकाशवाणी उमरा से इस समय आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव समाज को कमजोर करता है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने मन से भेदभाव की सोच को दूर करें और समानता का दीप जलाएं। दोस्तों, समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, किसी के साथ उसके जन्म, पहचान या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सम्मान जैसे अवसरों तक सभी की समान पहुंच होनी चाहिए। दोस्तों, इसकी शुरुआत घर से ही होती है। समानता की भावना की शुरुआत हमारे अपने घर और परिवार से होनी चाहिए। बेटा और बेटी दोनों को शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने के समान अवसर मिलने चाहिए। घर के कामों में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। दोस्तों, युवा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की महत्वपूर्ण शक्ति हैं। उन्हें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग भी नफरत फैलाने के बजाय एकता, भाईचारे और समानता का संदेश देने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, जहां समानता होती है वहां लोगों में विश्वास और सहयोग बढ़ता है। हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग कर पाता है। इससे समाज में न्याय, शांति और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, इसी सुविचार के साथ हमारा ये आज का युववाणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के जीरा बहन का राम राम। और बहन देखा, आप लोगों से भेंट मुलाकात करे खातिर हम एकदम सही समय से आ गई लीला। और कल गल की जब बैठकी में बैठी ला तो देखा आप लोगन का सबसे पहले हाल चाल पूछी ला। और हाल चाल में जब सब कुछ ठीक ठाक सुने के मिला ला, कुशल मंगल से रहे के बारे में सुने के मिला ला, तो बहुत बढ़िया लगा ला। और कहीं कहीं अगर माने कल गल की कबो घर में दिक्कत परेशानी भैल तो ओकरे बारे में भी सुन के मन दुखी होला, लेकिन कहल गल ना कि कोशिश यही रहला कि हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे। और जब सब कुछ ठीक रहला बहन तो देखा काम धंधा में भी मन लगेला और संगे संगे जो ना कि लोगन के बातचीत भी बढ़िया लगेला। तो बहन देखा आज हम लोग आप लोगन से तो बात बत कही करबे करब, लेकिन आप लोगन के बता दें कि आज अपने घरनी कार्यक्रम में जौन जानकारी बा सुनवाई जौन वो देखा बहुत बढ़िया है। और जानकारी के संगे संगे देखा मन फेर भी होला, जैसे जो ना कि मन फरहर भी हो जाला। और यही बात नहीं कि अगर हम बात करत ही आप लोगों से तो बात के साथे साथे कल गला कि रोज जो ना कि कुछ न कुछ हमू लोग जोन बतियाई लो कहीं ना कहीं जो है फायदा और नुकसान के खातिर होला। तो बहन लोगन देखा आज के समय में प्लास्टिक का जोन प्रयोग है वो कितना बड़ा घातक है, एकरे बारे में हम लोग भी जानत थी आप लोग भी जानत थी, लेकिन कोई एके जो है ख़त्म करे नहीं चाहत हला। और जबकि एक ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और बता दें कि प्लास्टिक के प्रयोग से हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के और जीव जंतु के खातिर ये अत्यंत ही एकदम कहल गया कि घातक बन चुकल पूरी तरह से। तो प्लास्टिक देखा एक ऐसा पदार्थ भी है जो आसानी से नष्ट नहीं होला और कहल गया ना कि सैकड़ों साल तक पर्यावरण में बनल रहेला और पर्यावरण के कहल गया ना कि बिल्कुल जहरीला बना देला, जैसे कि माटी जो अपन उपजाऊ होला उस क्षमता के भी देखा खत्म कर देला। और संगे संगे प्लास्टिक मिट्टी में दबे से पानी हवा और जमीन के अंदर जो कुछ भी जाए कि ओके रोक देला, जिससे माटी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाला और पेड़ पौधा के भी विकास नहीं होला। प्लास्टिक के कहल गया ना कि अगर कचरा के हम लोग जैसे थैला हो गल बोतल हो गल एके अगर हम लोग देखा कहीं ना कहीं फेंक दिला, जैसे नाली हो गल सीवर हो गल तो जाम हो जाला। और बारिश के दिन में देखा बाढ़ जैसन स्थिति भी हो जाला। और एक बात देखा आप लोगों के बता दी, पर्यावरण के साथे साथे देखा एकर मानव शरीर पे भी बहुत असर पड़ेला, बुरा असर पड़ेला। जैसे कि हमन के कहल गल कि कई तरह के बीमारी कहला जौन माने घातक होला, कैंसर हो गल बाजपन हो गल शुगर हो गल, ये सब भी देखा होए का चांस ज़्यादा रहेला। और यही तरह हो अपन जौन बेजुबान जानवर सड़क पे घूमल ना घूमे वाली गाय कहला चाहे माने भैंस कहला या जानवर अक्सर जो है कि कहल गल कि कूड़ा में फेंकल कचरा में फेंकल जौन प्लास्टिक थैली होला ओके कहीं ना कहीं चबा के खा लेन लोगन। और कहल गल कि थैली जब खा लेन जानवर तो अक्सर देखा कहल गल ना कि उनके पेट में जाके ये जमा हो जाला और जेकरे वजह से बहुत तड़प तड़प के उन लोगों के मौत होला। और इतने भर नहीं अल्लाह देखा हम आप लोगों के बता दें कि अगर समुद्री पानी की बात करें तो उनमें भी अगर कहीं से बह के कल गल कि लाखों टन प्लास्टिक चल जाला और उसके बाद जो ना कि समुद्री जैसे आपका कछुआ हो गल मछली हो गल भेल हो गल अगर एक खाना समझ के निगल ले लें तो उन लोगों का भी देखा समुद्री जीव जंतु का भी मौत होला। और भाई देखा हम लोगों के जो ना कि प्लास्टिक के घातक के जोन बा ये प्रभाव एके रोके बदे आदत में बदलाव करे कोई। अगर एक प्लास्टिक जैसे माने कहल गया कि स्ट्रा कप प्लेट और थैली का उपयोग बिल्कुल बंद कर देवल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। एकरे जगह अगर हम लोग बाजार जाती तो कपड़ा का या जूट का थैला या कागज का थलिया थैला में सामान लें तो ज़्यादा बढ़िया रही। और इतने भर नहीं प्लास्टिक के जगह अगर अपने घर में स्टील या कांच के बर्तन का प्रयोग करें और प्लास्टिक के बोतल की जगह तांबा और स्टील पीतल माने कोई भी ऐसा है जिसमें हम लोग पानी पी और ओके माने प्लास्टिक से बचे का कोशिश करी और कचरा के प्लास्टिक के इधर उधर न फेंक के रिसाइकलिंग के लिए जैसे सही जगह जो कूड़ेदान होला उनमें डाली। और प्लास्टिक आज के समय में एक धीमा जहर बन चुकल है, ए लिए हमन के अब इससे सचेत होए की पड़ी और आयो वाली पीढ़ी के लिए धरती पे माने कि मुश्किल ना हो एकरे खातिर हम लोगों के प्लास्टिक के प्रयोग के एकदम समाप्त करे का कोशिश करी और एकरे प्रति जागरूक भी हो कि एक कैसे समाप्त कर जा और कैसे अपने कल गल कि प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ के नारा के पूरा करल जाए और अपने साथ साथ देखा दूसरे के भी जागरूक करल जाए।
और बातचीत तो बहन अभी देखा आगे और होबे करी, लेकिन हम चाहत इला कि पहले एक ठो मन मनसायन हो जाए और अपन जो न कि मन भी फरार हो जाए आप लोग का भी, ओकरे बाद बात बत कही हुई।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बहन लोग दिखाई रहा संदेश, संदेश से पहले जो दादरा सुन लिए नीलमा श्रीवास्तव वो गीत बहुत अच्छा रहला। और आप लोगन के बता दें कि कल गला कि जब तन मन अच्छा होला तो फिर उसके बाद जो है कि सब कुछ अच्छा लगेला। तो कहेगा मतलब है कि जब आपन स्वास्थ्य ठीक रही तभी मन तन दोनों अच्छा रहला। और एकरे खातिर सबसे जरूरी है आज के समय में पौष्टिक आहार जरूर लें, जैसे शरीर और मन दोनों अच्छा रही। और बहन लोगन हम लोग जैसन खाना खाब वैसा शरीर काम करी, और संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन के खाए से शरीर के सभी जोन माने कल गल के विटामिन के बात कर ला जाए, मिनरल्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का जो भी मिला ला माने कल गल कि अगर साग तरकारी के बात कर ली, दाल के बात कर ली, मतलब कहल गल कि कुल मिला के अगर हम लोग अच्छा भोजन करल जाई तबे जाके जो न कि निरोग रहल जाई और अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ल ले। और बहन देखा बातचीत तो अभी आगे करल जाई, लेकिन जोन आज जानकारी के बात हम बोल ली कि बहुत अच्छा है, तो आज देखा जोन जानकारी अपने कार्यक्रम में हम लोग सुने जाती ला वो बात देखा अल्जाइमर रोग कारण लक्षण और इसके उपचार एकरे बारे में डॉक्टर सुनील कुमार गौड़ माने जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके मेडिकल कॉलेज सोनभद्र से, इनसे सचिन कुमार वर्मा जी भैया बात के लिए हुआ, तो चला सब लोग मिलके सुनल जाए।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इस रोग का नाम है अल्जाइमर। अक्सर बढ़ती उम्र के साथ भूलने की समस्या को सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन लगातार याददाश्त कमजोर होना अल्जाइमर जैसे गंभीर रोग का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में इस रोग के शुरुआती लक्षणों को पहचानना, इनके कारणों को समझना और समय रहते चिकित्सकीय परामर्श लेना बेहद आवश्यक है। तो आइए आज अल्जाइमर रोग के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील गौड़। आप मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। आकाशवाणी ओबरा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है डॉक्टर साहब।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें आप बताएं कि अल्जाइमर रोग क्या है और इसके प्रमुख कारण एवं जोखिम कारक कौन कौन से हैं?
3: अल्जाइमर एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है
2: जी,
3: जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता, व्यवहार और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होने लगती है। यह डिमेंशिया का आम कारण है। अल्जाइमर उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं है, इसका कोई कारण नहीं होता है। इसमें आनुवंशिक कारण होते हैं, मस्तिष्क में होने वाले कुछ जैविक परिवर्तन के कारण होता है ये। इसके प्रमुख जोखिम या कारण हैं, जैसे बढ़ती उम्र हो गई, परिवार में किसी के अल्जाइमर हो या आनुवंशिक बीमारी हो, या बहुत ज्यादा बीपी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंसिव हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारी हो, या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो और शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो समाज से है अलगाव, जिसे आदमी अकेले रहता है, दूसरे लोगों से बात नहीं करता है, या फिर कोई चोट वोट लगी हो पुरानी, ये सब इसके मेन कारण है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण क्या हैं जिन्हें परिवार के सदस्यों को गंभीरता से लेना चाहिए?
3: बहुत अच्छा सवाल आपका है। सबसे शुरुआती लक्षण हाल की घटनाओं को बार बार भूलना होता है। उदाहरण के लिए अभी आपसे बातचीत को भूल जाना, एक ही सवाल बार बार पूछना, हाल में रखी हुई चीजों को बार बार ढूंढना, ये शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा जैसे जो हमारे रोजमर्रा काम है उसे भूल जाना, या पैसों का बिल का हिसाब न रख पाना, और जिस रास्ते हम आते जाते रोज पर डे हैं उस रास्ते को भूल जाना, और तारीख दिन इसको भूल जाना, जैसे आज बुधवार से आज बुधवार है, बृहस्पतिवार है, तो वो हम कहेंगे कि नहीं, जो मरीज आता है वो बोलता है कि नहीं आज बुधवार ही तो है, अभी तो बुधवार आज ही आया है, लेकिन एक्चुअली में बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार होता है। और कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख पाना कि हाँ हमें ये काम करना है नहीं करना है, और उसके जो व्यवहार है इसमें भी अंतर आ जाता है काफी ज्यादा है। और जो पहले जैसे जिस काम में रुचि है, जैसे बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, किसी में रुचि होती है वो भी रुचि खत्म होने लगती है।
2: अच्छा,
3: ये सब इसके महत्वपूर्ण संकेत हैं। खास बात यह है कि यह बीमारी बढ़ने पर व्यक्ति की रोजमर्रा के काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। अगर परिवार में ऐसा कोई बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है, आपको ऐसा कोई लगता है कि आपके घर में ऐसा हो रहा है धीमे धीमे, मतलब ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए तुरंत। ये पहचान है, शुरुआती लक्षण है। जब ये लक्षण बढ़ने लगते हैं बहुत ज्यादा है, तो जिसे रोजमर्रा के कोई काम अपना नहीं कर पा रहा, जिसे आप घर में हैं या आपके बाथरूम किनारे है तो वहां नहीं जा पा रहे, पूछते हैं हमारे बाथरूम कहाँ है, या फिर हमने कहीं चश्मा रख दिया, या फिर कुछ पढ़ना है तो चश्मा खोज रहे हैं कि कहाँ चश्मा है, या रिमोट कहीं रख दिया तो हम आप आमतौर पर रिमोट कहीं रख देते हैं, चाबी कहीं रख देते हैं, घड़ी रख देते हैं, मोबाइल फोन रख देते हैं, हमें 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद याद आ जाता है। आपका नाम भी जैसे है कि हम आपसे मिले हैं, आपका नाम 2 सेकंड में याद आ जाएगा, याद नहीं तुरंत आता है। लेकिन ये लोग उनको जो अल्जाइमर वाले होते हैं उनको याद नहीं आता है, तो जैसा वो परेशान होने लगते हैं,
2: मतलब उन्हें याद ही नहीं आता है कि ये घटना हुई भी थी कि नहीं,
3: नहीं।
2: और ऐसी चीज भूलते हैं जिन्हें लगता है कि ये तो कैसे भूल सकता है आदमी, तो फिर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए उसमें,
3: जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि भूल जाते हैं हम चीजों को, तो हर व्यक्ति में फिर आता है ये सोचने लगता है कि सामान्य भूलने की आदत और अल्जाइमर से जुड़ी स्मृति समस्या में कोई अंतर है या नहीं।
3: ये बहुत जरूरी सवाल है कि आदमी नॉर्मल भूलने को अल्जाइमर ना समझ ले, क्योंकि ये नॉर्मल चीज घर में सबके साथ होती है। तो बहुत अच्छा सवाल आपका है ये। उम्र बढ़ने पर कभी कभी चाबी, मोबाइल, चश्मा कहाँ रखा है याद नहीं रहता, लेकिन कुछ देर बाद याद हो जाता है। लेकिन अगर अल्जाइमर होता है तो ये चीज एक बार हो गई, रोज होती है, बार बार होती है, दिन में कई बार होगी, तो ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये अल्जाइमर वाले पूरे लक्षण हैं। जैसे सामान भूलना किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम कुछ समय के लिए याद नहीं आता, जैसे हम आपसे मिले हैं कुछ दिन बाद तो आपका नाम नहीं आता, चांस याद, कुछ देर बाद याद आ जाता है। लेकिन अल्जाइमर वाले में ऐसा नहीं होता, उसमें याद आता ही नहीं है कि हमसे इनसे मुलाकात हुई है। अल्जाइमर वाले में क्या होता है कि व्यक्ति बार बार नाम पूछता है कि आप कौन है, या फिर बातचीत करने में परेशानी होती है, जैसे कि हम आपसे मुलाकात ही नहीं कभी हुई है, ये समस्या बहुत बढ़ने लगती है। तो ये अल्जाइमर है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये परेशानी वाली बात है। और नॉर्मल जो होता है उसमें कोई नहीं, एक दिन भूल गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड याद आ जाता है, तो नॉर्मल चीज है।
2: बिल्कुल, ये तो हर व्यक्ति के साथ होता है, कभी कभी वो चीजें हम रखते हैं फिर हम खुद ही पूछते हैं घर वालों से कि अरे ये कहाँ रख दिया है, तो इसको अल्जाइमर से न जोड़े, कभी कभी ऐसा भी होता है।
3: जैसे कभी कदार बिल भरना भूल जाना, ये पैसे का लेन देन आगे पीछे हो जाना, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन ये समस्या बार बार हो रही है कि आप नॉर्मल, जैसे कल आपने पैसे निकाले, आपको याद ही नहीं, आपने आज चेकबुक देखा, अरे कल तो मैंने पैसे निकाले नहीं, अब ऐसा ही आपके बार बार हो रहा है आपके साथ है। जैसे पढ़ने जा रहे हैं पेपर, न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ने जा, चश्मा एक जगह रखते हैं तो मिल जाता है, इसमें क्या होता है चश्मा हमारा कहाँ गया, हम बार बार चश्मा ही खोजते रहते हैं, याद ही नहीं आता कि हमने कहाँ रखा है, ये अल्जाइमर में आ जाता है।
2: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्जाइमर का पता लगाने के लिए

0: बताएं तो इसमें जैसा यह है कि क्लिनिकली ज्यादा ही इसमें हो है, और सिटी स्कैन एमआरआई होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा उससे रिलायबल, मतलब रिलायबल क्या कह सकते हैं कि उससे काफी एडवांस स्टेज है, जाते ही पहले सिटी स्कैन एमआरआई नहीं करा सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब डॉक्टर साहब हम जब भी ऐसे मरीज के साथ जाएं जो अल्जाइमर से ग्रसित हो तो उसके साथ परिवार का ऐसा सदस्य जाए जो पारिवारिक हिस्ट्री भी जानता हो, जिससे वो आपको सारी चीजें बता सके और उस पेशेंट के बारे में तो जानता ही हो। क्या अल्जाइमर से बचाव संभव है? इसके जोखिम को कम करने के लिए खान पान, व्यायाम और जीवन शैली में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: अल्जाइमर को पूरी तरह रोकने की गारंटी देने वाला कोई उपाय नहीं है। हाँ, इसका कोई पूरा उपाय नहीं है कि कुपरा सही हो जाए, लेकिन इसके ऐसे कुछ चीजें हैं जो इसका जोखिम है, जो खतरा है, उसे हम कम कर सकते हैं और मस्तिष्क को स्वस्थ करने में मदद कर सकते हैं। जैसे पहले नियमित व्यायाम करें, तेज चले, साइकिल चलाएं, अपने शरीर जो क्षमता है उसके अनुसार काम करें। दूसरा है ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, डायबिटीज, इन सबको कंट्रोल करें। तीसरा है संतुलित भोजन करें, हरी साग सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। चौथा है धूम्रपान अल्कोहल से बचें। और पांचवा है दिमाग को सक्रिय करें, किताब पढ़ें, नॉवल पढ़ें, या फिर क्या करते हैं कि पहेलियां, संगीत गाएं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो घर के लोग हैं उनके साथ रहें, उनके साथ बात करें, उनके साथ जो चीजें हैं अपने डिस्कस करें।
1: बिल्कुल, जो उनसे ग्रसित व्यक्ति है, परिवार के अन्य सदस्य, चीजों पे बात करें और उनका मन हल्का रखें।
0: और परिवार का सहयोग होना इसमें बहुत जरूरी है। अगर परिवार का सहयोग रहेगा तो जो चीजें आने वाली भी होंगी बहुत लेट आएंगी। इसमें यही है कि जितने परिवार वाले लोग जितना साथ में रहेंगे, अकेलापन कम रहेगा, तो काफी सही रहेगा इसमें।
1: बिल्कुल, तो चलते चलते डॉक्टर साहब आपका संदेश श्रोताओं के लिए।
0: जरूर, मेरा संदेश बहुत सरल है कि उम्र बढ़ना सामान्य है, लेकिन याददाश्त और व्यवहार में लगातार गिरावट को केवल उम्र का असर मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर परिवार में किसी बुजुर्ग को बार बार एक ही बात पूछना, हाल की घटनाओं को भूल जाना और रास्ता भूलना, पैसे के लेन देन में परेशानी होना, रोजमर्रा के काम करने की क्षमता में बदलाव दिखाई दे, तो उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय आप डॉक्टर को दिखाएं। समय पर पहचान होने से मरीज और परिवार को बीमारी को समझने, उपलब्ध उपचार और देखभाल योजना बनाने में मदद मिलेगी। और याद रखिए, भूलने को हमेशा उम्र का असर नहीं समझें।
1: हो सकता है कि ये अल्जाइमर हो।
0: जी जी
1: डॉक्टर साहब, अल्जाइमर रोग से जुड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
2: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
5: बहन दिखाई रहा संदेश, संदेश से पहले जो है कि अल्जाइमर रोग कारण, लक्षण और एक इसके उपचार, इसके बारे में डॉक्टर सुनील कुमार गौड़ जो असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज सोनभद्र से रहन, अपन सचिन कुमार वर्मा जी कितना बढ़िया बातचीत कैल न, और इनके देखा धन्यवाद देवल जाए, लेकिन झूरे झूरे नहीं, हम तो कहला कि एक नीलमा श्रीवास्तव का गावल और गीत है पूर्वी, चला सुन लेवल जाए।

फैन तो वो था और अच्छा भी लगा था, लेकिन इसके साथ ही साथ ही आप लोगों के हम बता दें कि आज के समय में अगर कोई बहन लोगन के अगर माने तबीयत खराब हो जाता, जैसे कि गर्भवती बहन है या नवजात शिशु है, तो ओकरे खातिर जोन माने 102 नंबर का एम्बुलेंस सेवा है, ओके जोन की फोन लगाएं और वो तुरंत आई और सीधे अस्पताल ले जाए जहाँ पे आपका जो है कि उचित इलाज हुई। और कल गला कि उचित इलाज होना ही बढ़िया वाला। और एक साथ ही आपके बता दें कि ऐसे जो है कि हमन की ये फायदा है कि माने कहीं भी गांव में कितना भी दूर हो और पता चल कि अपने पास कोई साधन नहीं है, तो ओके हम लोगन के इस्तेमाल जरूर करें। 102 नंबर एम्बुलेंस का नंबर याद रखें स्वास्थ्य के खातिर। तो अब देखा अपन बैठकी समिति का समय हो गया लला, तो अब चलिए अगले बैठकी में फिर आप लोगों से भेंट मुलाकात हुई, तो सब बहन लोगन के राम राम।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर ने 102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल लघु और मध्यम उद्यमन में सोझे इक्विटी निवेश बदे 10,000 करोड़ रुपया के एसएमई ग्रोथ फंड के स्थापनों के मंजूरी दे दिले। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में ये जानकारी दिले।
1: सबसे बड़े जो सुधार हुए उसमें एमएसएमईज का कैश फ्लो ठीक हो, जो उनको पेमेंट आने में देरी होती थी उस पेमेंट को ठीक टाइम पे लाना, एमएसएमई की डेफिनेशन में परिवर्तन किया गया, एमएसएमईज को लोन आराम से मिल सके वो किया गया, और आज जो निर्णय लिया गया वो निर्णय एमएसएमई की ग्रोथ से रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं उसमें उसके लिए लिया।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकार के मुखिया के तौर पर 25 बरिस पूरा कैला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई देत एगो प्रस्ताव पारित कैलस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा का 25 बरिस पूरा कह रहा हमें इजतरा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र आ लगता रहे प्रतिबद्धता से प्रेरित हो, सेवा और सुशासन के नजरिया से प्रेरित होके सरकार बरिस 2047 ले विकसित भारत का लक्ष्य पौले की दिशा में लगता रहे काम कह रही हो। समावेशी विकास आ सामाजिक मजबूती से ही समर्पण लोगिन के जिंदगी में बदलाव ला रहा बा। आज हमने के खास श्रृंखला में हम आप लोगिन के बताई कि वंदे भारत रेलगाड़ियन की शुरुआत के जरिया से एक परिकल्पना के कोने तरियन साकार कल गई हो।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवंबर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में राज्यसभा चुनाव बदे भाजपा की ओर से मैदान में उतारल गए सज्जो 8 गो उम्मीदवार लखनऊ के विधानसभा भवन में आज अपन पर्चा दाखिल कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ ब्रजेश पाठक के लेके पार्टी का कई गो सीनियर नेता लोग भी यह मौका पर मौजूद रहने। एगो रिपोर्ट।
5: भाजपा ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने स्वीकृति दी है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए बीते माह 29 सितंबर को द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी शामिल हैं। इन द्विवार्षिक चुनाव के लिए प्रदेश में आज आखिरी दिन नामांकन दाखिल किए गए। राज्य की इन सभी सीटों के लिए मतदान इसी महीने की 16 तारीख को होगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।

क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों के T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में अब से थोड़ी के देर बाद संझा 7 खेलल जाए। यह मैच का आयोजन भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कैल जा रहा बा। मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर ले कोनो कोनो जगह पर गरज चमक बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेरियो चलने का येलो अलर्ट जारी कैले बा। विभाग ए अंचल में आज भारी बरखा का धीरवनियो देले हो। ए बीचे गोरखपुर के लेके कई गो पूर्वी जिलन में आज दिन में भइल बरखा से जनजीवन आंशिक तौर पर प्रभावित रहल। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

0: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
1: आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर में यानी शाम 6:10 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 6:50 पर हमारे लखनऊ केंद्र से आज आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा सबरस का और रात्रि 8 बजे और 8:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आपके लिए और रात्रि 10:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है।

0: सब पंचन के राम
1: राम
0: राम।
1: राम। और बताओ भोला भैया का हाल चाल।
0: सब ठीक ठाक चलो गुलाब बहन। और इसमें मौसम में थोड़ा परिवर्तन तो था, और साथ साथ जौन फसल मकई वगैरह रहे, सामा वगैरह देखिए भी जौन बाकी धीरे धीरे कटाई हो चुकल है, भंडारण के जुगत लोग अपना रहल बा।
1: बिल्कुल।
0: वहीं तो जौन बाकी उर्द भी, उर्द के दाल भी बनल शुरू हो गई है। तो ये तरीके से जौन बाकी खान पान में पौष्टिक आहार बहुत इसमें उपलब्ध हो रहा है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन इनमें
1: बिल्कुल।
0: सबसे महत्वपूर्ण की जो के तरीके के उत्पादन होल है, ओमे खाद डाल गिल है कि गोबर खाद डाल गिल है, तो ये पर भी बड़ा विशेष जौना में गोबर के खाद या ऐसी प्राकृतिक खेती हुई है ओकर मकई समझ जाए कि बहुत मिठास लगल।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: वही जौन खाद डाल के कैसे उपजावल गिल है तो ओकर में कोई स्वाद नहीं है, देखे में सुंदर दिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और
0: तो
1: देखा
0: बिल्कुल
1: एकदम आप जो मोटा अनाज का बात कर रहे थे, अपन देखा इस समय पौष्टिकता का बात अगर करल जाए तो पोषण माह भी चलत बा, 9 सितंबर से देखा 8 अक्टूबर तक का बा। और देखा ये समय हम लोगन के ये ज्यादा ध्यान देवे की जरूरत बा कि पौष्टिक चीजें कौन तरीका से हम लोगन बच्चों के खियावल जाए, जो गर्भवती माता लोगन है उनके खियावल जाए
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: उनका स्वास्थ्य बनल रहे। अगर माता स्वस्थ रही है तो बच्चों अपने आप स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो हम लोगन के ध्यान देवे की जरूरत बा कि बचवा अगर छोट बा तो वो का खात बा, के तरीका के भोजन करत बा। बहुत महतारी लोगन होलिन अपन बचवा के खुद मतलब फुसलाए बदे या चुप करावे बदे कुरकुरे चिप्स पैकेट जो न है आ वाला बंद पैकेट वो सब चीज दे के उनके फुसता देवलिन, चॉकलेट पकड़ा देवलिन। तो
0: बिल्कुल
1: ये समझ
0: बिल्कुल
1: लें कि
0: बिल्कुल
1: बहुत ही कहीं ना कहीं आवे वाले समय में उनके खातिर जहर साबित हुई,
0: बिल्कुल
1: कहीं के कहीं ना कहीं देखा ओकर प्रभाव हम लोगों के शरीर बचपन के शरीर में या बड़ कहीं केहू भी उनके शरीर में कहीं ना कहीं देखा लीवर पे जो असर बहुत तगड़ा ओकर होला
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आगे चल के बड़ी समस्या के सामना करे के पड़ला। तो इस समय बचपन के यही से कहल जाला कि पोषण पे ध्यान देवल जाए। अपन जो इस समय देखा बच्चों के देवे खातिर जो आंगनबाड़ी सेंटर पे पुष्टाहार देवल जात बा वो तरी उसे देखा तरीका तरीका के सामान सामग्री बनत बा भैया।
0: बिल्कुल
1: वो कई तरीका के वो टॉफी चॉकलेट हर तरीका के
0: हाँ
1: कोनो
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: चीज
0: हाँ
1: नहीं बा भैया कि जो उसे न बन पावे और बस जानकारी के अभाव में लोग बना नहीं पावत हो के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और देखा अगर हम बनावत हैं बढ़िया तरीका से हम लोगों का बचवा अगर खावत हम खात हम तो उनके समझ लो कि बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर हुई वो और कहीं न कहीं बचवा भी हमारे स्वस्थ रही।
0: बिल्कुल आप अच्छा शुरुआत कैलन कि जैसन छिया वैसन बिया, और जैसन माई वैसन धिया,
1: बिल्कुल
0: जैसन
1: बिल्कुल।
0: महतारी रही वैसन बच्चा जन बाकी रही हैं। और अगर पौष्टिकता की बात आप कहते हैं तो एक ठे और कहावत याद हुई
1: हाँ
0: कि
1: हाँ कहे।
0: पौष्टिक भोजन जो खिलाए बच्चे तंदुरुस्त बन जाए, और संतुलित आहार के महिमा जीवन खुशहाल बनाए।
1: भैया यही
0: तो
1: बात पे ना एक ही बात हमहू अगर हमरो मन कहत बा कि
0: अरे बिल्कुल मन
1: अपने
0: मारे के
1: पांच छह
0: जरूरत नहीं
1: लोगन
0: है।
1: के
0: हाँ
1: आपके सुनाई कि दाल रोटी फल सब्जी
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: दूध दही के संग
0: क्या
1: अब
0: बात
1: बच्चे खाएंगे रोज रोज तो चेहरे पर रहेंगे उमंग,
0: क्या बात, जंक
1: जंक
0: फूड के
1: फूड
0: बारे में आप
1: से
0: बताते हैं। हाँ
1: हाँ जंक फूड से दूर रखो पोषण का दो ज्ञान और संतुलित आहार ही देगा बच्चों को बलवान।
0: क्या बात। लेकिन हमें अगर हम लोग बात कर जाए कि पौष्टिक आहार मिली कहाँ से, तो कौन कौन से पोषक तत्व तो की आवश्यकता पड़ा लड़किया बच्चा लोन के, तो जरूरी पोषक तत्व में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए
1: ऊर्जा
0: जौन ऊर्जा
1: प्रदान
0: प्रदान कराला।
1: बिल्कुल
0: और वहीं
1: बिल्कुल।
0: प्रोटीन की बात कर जाए तो मांसपेशियन के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है, जौन दाल में, अंडा में, दूध वगैरह अन्य साग सब्जी में भी उपलब्ध होला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में
0: तो
1: विटामिन और खनिज भी होला जवन की रोग
0: बिल्कुल
1: प्रतिरोधक क्षमता जेके इम्यूनिटी भी कहल जाला। और देखा स्वास्थ्य के नजर के खातिर भी ताजा फल और हरी सब्जी का सेवन भी बहुत जरूरी
0: और
1: होला।
0: फाइबर जवन अभी हम लोग मोटा अनाज करते रहे हैं,
1: हाँ
0: ये में फाइबर बहुत मात्रा में पावल जाला,
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: मकई हो गेल, सामा, कोदो, मेड़ो, मिझरी हो गेल, ज्वार,
1: बिल्कुल।
0: बाजरा
1: और
0: हो
1: जो
0: गेल।
1: फाइबर का बात करत हुआ भोला भैया वो देखा पाचन क्रिया के दुरुस्त रखे खातिर साबुत अनाज बहुत आवश्यक
0: और
1: होला।
0: निश्चित रूप से जहाँ बीमारी की बात हो तो पेट से ही उत्पन्न होला, अगर पाचन ठीक नहीं हो तो तरह तरह की
1: भैया
0: बीमारी।
1: आज के समय में कोनो भी बीमारी के बात अगर कह ले आप तो वो पेट से ही शुरुआत होला। अगर हमारे पेट खाना नहीं पचा पावत बा, खाना अगर हजम नहीं होत बा, मतलब ओकर सिस्टम अगर गड़बड़ बा ना तो देखा कई बीमारी जैसे आप चिनिया रोग जो होला शुगर जिके कहल जाला,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: ब्लड प्रेशर जेके बीपी का जो मरीज होला ये सब बीमारी देखा कहीं ना कहीं पेट से ही होकर शुरुआत
0: अच्छा
1: होला।
0: कुछ लोग कहला कि इतना सुबेरे खाए और इतना शाम के कई बार खाए तो हमें जो कि सबके महत्व बा। अगर नाश्ता आप नहीं ली है तो आपके खुल करके भूख नहीं लगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो नाश्ता में भी देखा अपन दूध दलिया पोहा अंडा जे खाला ओकरे खातिर अंडा और या ताजा फल आप खा सकलन।
0: बिल्कुल,
1: वो नाश्ता
0: बिल्कुल।
1: के रूप में आपका शरीर हल्का पोच जो सुपाच्य शरीर में जाए तो कहीं ना कहीं शरीर के बहुत ही पौष्टिकता प्रदान करे।
0: तो सुबह में नाश्ता आपके ले रहे हैं तो निश्चित रूप में दोपहर के भोजन करे के इच्छा जागृत हो।
1: बिल्कुल,
0: तो रोटी चावल दाल हरी सब्जी दही और सलाद के साथ अगर हम लोग आहार ले दोपहर के तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया जोन बाकी अपन स्वास्थ्य बढ़ी बने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही तरीका से अगर दोपहर का भोजन आप करिए तो शाम के भी थोड़ बहुत कुछ खाए के मन करे भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: देखा जैसे मेवा हो गई, अंकुरित अनाज हो गई, सूप हो गई, चाहे अपन
0: सैंडविच वगैरह जो आदमी
1: सैंडविच से बढ़िया देखा जो भैया जो रोटी होला वो में देखा तेल नमक लगा के
0: का बात
1: नमक, अपन देखा सांझी के बेला में खा ले के ना तो वो एक नाश्ता के स्वरूप में हो जाला।
0: अब रात के भी भोजन होला लेकिन एक हल्का ले लग जरूरत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हल्का भोजन जैसे कि दाल और उबला हुआ जो सब्जी होला भैया एक ही अगर हम लोग करल जाए रात के समय में तो बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक होला।
0: अब आप बीच में ही बतौल की चीनी वगैरह अधिक खाए से जो भी नुकसान है
1: बिल्कुल,
0: वही पैकेट बंद जो जूस के बात आप करते रहने चाहे कोल्ड ड्रिंक जोन इस समय ठंड के मौसम हो बरसात में हम देखल जाला कि भुरहरिये कुछ लोग पिया ला लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ऐसा भी जोन बाकी शौकीन नहीं हो चाहे स्वास्थ्य के लिए
1: हाँ। चीज से भी भैया कोसों दूर रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो है कि कहीं ना कहीं तला भुना चीज ऐसा होला ना कि हम लोगन के स्वास्थ्य के खातिर बहुत ही हानिकारक और कहीं ना कहीं हम लोगन के स्वाद में तो बढ़िया लगला। आदमी पकौड़ी हो गई चाहे कोनो ऐसा चीज हो गई कि मन लालाहित होला खाए बदे लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत ही हानिकारक हो जाला।
0: हाँ,
1: खा
0: बिल्कुल,
1: के
0: बिल्कुल।
1: हम लोगन के देखा कभी कभी होला ना कि गटई जरे लगाला बीमारी निकले तो हम लोगन के उसे बचे के चाहे जितना उबला हुआ चीज अगर खाएं तो हम लोगन के सेहत के खातिर बहुत फायदेमंद।
0: तो हम लोग के तो जो जानकारी है हल्ले है लेकिन हमें अगर विशेषज्ञ लोगों की बात शामिल कर दल जाए तो उनकर जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण हो जाला।
1: एकदम भैया आपका जो मनसा बा हम जरूर ओके पूरा करब और देखा बदलत मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल के खातिर चिकित्सकीय सलाह डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जो उनके बाल रोग विशेषज्ञ हो उनसे आपकर मुलाकात भेल बा तो हम तो कहत है ना कि हम तनी अपने बातचीत के विराम दें और अपन पंच भैया लोगन भी अपन इनकर जानकारी सुने कि का के तरीका से जानकारी देते हुआ कि हम लोग बदलत मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल के तरीका से करल जाए तो चले सुनल जाए।
2: श्रोताओं अक्सर बदलते हुए मौसम में बच्चों को अकस्मात कोई न कोई बीमारियां होती रहती है जिसे हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं। कैसे हम लोग बच्चों को देख रेख करें जिससे कि उनको कोई रोग लगे ही ना, अगर लग भी जाए तो फिर उसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं। इस सब जानकारी के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी से मुलाकात हो रही है। आपके माध्यम से जानेंगे कैसे बच्चों का हम लोग देख रेख करें और कौन कौन से संभावित रोग लग सकते हैं, उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं और उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बच्चों को अक्सर करके या तो हम लोगों के जानकारी के अभाव में या कहीं न कहीं से माता के भी जो है कि व्यस्तता के वजह से जैसे भी हो बच्चों का भली भांति देख रेख नहीं हो पाता है, अकस्मात कोई बड़े से बड़े रोग के भी सामना करना पड़ जाता है लोगों को, तो क्या सुझाव है कैसे उनका देख रेख करें, कौन से संभावित रोग की संभावना है।
3: जी नमस्कार, देखिए इस समय मौसम बदल रहा है, सर्दी बरसात का मौसम है और बीच बीच में जाड़ा गर्मी इस तरह का मौसम का मिजाज जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं है, तो इस समय हमें काफ़ी बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही

0: बच्चों के लिए बहुत ही घातक हो सकती है। इस समय जो हम देख रहे हैं कि जो मरीज आ रहे हैं, जो इस समय हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और अन्य अस्पतालों में जो पहुंच रहे हैं,
1: जी
0: जो बच्चों में कॉमनली बीमारियां देखी जा रही, उसमें है कि सर्दी खांसी के मरीज काफ़ी देखे जा रहे हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो कि दस्त की समस्याओं से ग्रसित हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुपोषित हैं, या और भी अन्य बीमारियाँ हम
1: जी
0: इसी क्रम में आजकल देख रहे हैं। तो जो सबसे पहले जो बीमारी है वो है डायरिया की बीमारी,
1: जी
0: जिसमें कि कई माताएं आती हैं और कंप्लेन करती हैं कि जो है बच्चा जो है कई बार लेटरिन कर रहा है और बार बार मतलब लेटरिन कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है, ये सारी कंप्लेन लेकर के आती हैं
1: जी जी
0: हमारे पास।
1: जी
0: तो यह जानना जरूरी है कि उसको हमें किस तरह से देखना है कि कब हमें बच्चों को एकदम ट्रीटमेंट ले जाना है, कब हमें इसको स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने की ज़रूरत है, और कहाँ पर ही हम घर पर इस चीज़ को मैनेज करके कर सकते हैं अपने
1: जी
0: स्तर से।
1: जी
0: तो यह जानना जरूरी है कि अपने बच्चे को आपको देखना है कि वो लेटरिन कर रहा है तो कितनी बार कर रहा है,
1: जी
0: कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी आंखों में जैसे आंखें धंस रही हैं। कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि आंखें अगर बच्चे की धंस रही हैं, या
1: जी
0: फिर पेशाब कम कर रहा है और खाना पीना बिल्कुल बंद कर दे रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देते हुए तुरंत उसको स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और अदरवाइज़ तो हम उसको घर पर भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसा कि नमक चीनी का घोल बना के पिलाएं और कोशिश करें कि बाहर बाहर का जैसे जो है खाना वो बिल्कुल भी ना दें इस समय, अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे जानते ही हैं कि मिजाज से चटोरे होते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: बाहर का खाना अक्सर खाते पीते रहते हैं।
1: जी
0: तो ये कोशिश करें कि इस समय बच्चे जो है बाहर का सामान बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि तो इससे भी डायरिया की समस्या होती है।
1: बिल्कुल
0: और अगर कोई ऐसा बच्चा लगता है जिसकी आंखें धंस रही हैं या फिर पेशाब कम कर रहा है और लग रहा है कि वो दूध वगैरह नहीं पी रहा है, खाना पीना नहीं खा रहा है, तो उसको तुरंत जो है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जल्द
1: ले
0: से
1: जाए।
0: जल्द हाँ जल्द से जल्द ले जाएँ वहाँ पर, ताकि उसका सही ढंग से इलाज हो सके।
1: जी सर, ये तो मान लें सर ये लक्षण वो बता रहा है कि मतलब डायरिया की है, लेकिन ये सब होना इसके लिए कैसे रख रखाव करें बच्चों का या अपने खान पान का, बिस्तर इत्यादि का सर?
0: जैसे कि ये सारी बीमारियां से बचने के लिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि बच्चे को जो भी बाहर का खाना है वो इस समय ना दिया जाए।
1: जी
0: सबसे पहली चीज़ यही है कि जैसे हम जानते हैं कि बच्चे चटोरे होते हैं, तो माँ बाप कई बार चाट फुल्की या ये सारी चीज़ें चाउमीन जो बाजारू सामान है
1: जी
0: वो अधिक से अधिक खिलाने बच्चे खाने की जिद करते हैं और माँ बाप जो है ले जा करके खिला देते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि हर जगह स्वच्छ सफाई के साथ ये सारी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, तो इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बीमार होते हैं, फिर वो उनको कहीं बुखार आने लगता है तो दस्त होने लगती है और उसके बाद ये समस्या और बढ़ने लगती है।
1: जी जी जी
0: तो इसी क्रम में हमें ध्यान देना होगा कि जब ये सीज़न बदल रहा है तो हम कोशिश यह करें कि कम से कम जो है बच्चे को बाहर का खाना दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाना घर का ही खिलाएं। और यह भी ध्यान रखें कि जैसे गर्मी में जैसे क्योंकि इसमें नमी वाला सीजन है, ह्यूमिडिटी है, तो जैसे पसीना होता है,
1: जी
0: तो पानी वगैरह भी बच्चे अधिक से अधिक पिए, ऐसा ना हो कि वो पानी कम पी रहे हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत
1: अधिकाधिक देखा जाता है
0: है।
1: कि बरसात के मौसम में मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है सर, घरेलू मक्खियां हों चाहे मच्छर इत्यादि हों, तो इससे भी कोई रोग होने की संभावना है क्या?
0: हाँ, इससे भी वही सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मक्खियां जो हैं खाने पर बैठती हैं, फिर वो
1: गंदगी पर भी बैठ
0: हाँ
1: जाती है।
0: गंदगी पर बैठती हैं, फिर खाने पर जाकर के बैठती हैं, तो वो गंदगी को खाने में ट्रांसफ़र करती रहती हैं, फिर
1: जी
0: वो बच्चा लेकर के खाएगा और वो जो है आपके पेट में पहुंच जाएगा,
1: जी
0: और उसके बाद फिर वही है कि उसके बाद लेटरिन स्टार्ट हो जाएगी, दस्त इत्यादि शुरुआत हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि इस सीज़न में इसको बचा के रखना है कि कम से कम जो है हम बाहर का खाना बच्चे को खिलाएं और ज़्यादा से
1: बिल्कुल
0: ज़्यादा कोशिश करें कि घर का ही दें खाना।
1: जी, बिल्कुल नवोदित बच्चे हैं, छोटे छोटे जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न हाथ पांव भी बहुत कम हिला पा रहे हैं। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द भी बहुत मक्खियाँ लगभग देखने को मिलते हैं। बहुत माताएं करती क्या हैं कि उसको कपड़े से उसको ढक देना, लेकिन गर्मी भी है, ऐसे समय में कैसे देख रेख करें वो बच्चों का?
0: ऐसे समय में कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे घर में अगर मक्खी या मच्छर ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़रूरी यही है, या तो कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ हद तक, ताकि वो मक्खी और मच्छर जो है मर जाएं।
1: जी
0: और क्योंकि अगर मक्खी मच्छर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि यह बीमारी कंट्रोल तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बार बार वो खाने में बैठेंगे तो वो इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र ही करेंगे
1: जी।
0: और कोशिश ये भी करनी है, जैसे मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग किया जा सकता है
1: जी,
0: क्योंकि मच्छर से भी मलेरिया, इस सीज़न में मलेरिया और डेंगू ये दो बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा फैलती हैं
1: जी, जी।
0: और मच्छर उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये एक कदम उठाया जा सकता है कि बचने के लिए घर में कुछ भी इंसेक्टिसाइड जैसे जो आते हैं स्प्रे वगैरह उनको यूज़ करके मक्खी और मच्छर को भगाया जाए।
1: कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, रोगाणु कीटाणु जो हम लोग को दिख नहीं पाते
0: दिख
1: हैं,
0: नहीं पा रहे हैं,
1: उससे हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है।
0: हाँ।
1: बाई चांस जैसे लोगों को हो जाए, कुछ बीमारी हो गया है, जैसे मान लीजिए मलेरिया हो गया है, बच्चे बोल नहीं रहे हैं, कैसे जाना जाए कि इसको मलेरिया की संभावना है?
0: हाँ,
1: और उसका लक्षण क्या होगा और कितना जल्दी पहुंचना चाहिए हम लोगों को उससे?
0: देखिए, मलेरिया का जो लक्षण होता है ये वयस्कों में तो बहुत ही आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि वो बताते हैं कि ठंड लग करके हमें बुखार आ रहा है, उसकी स्टेज होती है कि पहले बुखार चढ़ेगा ठंड लग करके, उसके बाद तेज और बुखार जो है बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे वो पसीने के साथ उनका बुखार उतर जाता है। लेकिन बच्चों में ये सारी चीज़ें आती नहीं, ये सारी लक्षण एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं
1: जी, जी।
0: तो काफ़ी हद तक यही संभव है कि उनको स्वास्थ्य केंद्र पर जब लाएंगे तभी हम उसको एग्जामिन करके देख पाएंगे और ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि उनको मलेरिया है, क्योंकि बच्चों में वो बोल सकते नहीं हैं, जो हमें लक्षण दिखाई देगा वो सिर्फ बुखार का दिखाई देगा
1: जी, जी।
0: और माँ बाप ये जान सकते हैं कि भाई हाँ, अगर मच्छर हमारे घर में हैं, बहुत ज़्यादा काट रहे हैं लोगों को,
1: मतलब परीक्षण के दरमियान ही जाना जा सकता है,
0: क्योंकि बच्चों में ये स्पष्ट रूप से ये अब चीज़ निकल कर नहीं आती है कि जो मलेरिया के लक्षण हैं वो एकदम स्पष्ट रूप से बच्चों में नहीं आते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, बहुत बच्चे चिड़चिड़ापन होते हैं और उनके उधर धीरे धीरे उभार की ओर है, लेकिन शरीर के अन्य अंग जो है बिल्कुल दुबले पतले हैं, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी दिखती हैं, जैसे संभवतः क्वासरकोर रोग की बात आती है, तो ये कैसे पनपता है और इसका निदान कैसे कर सकते हैं?
0: आजकल हम देख भी रहे हैं कि जो कुपोषण की समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
1: जी,
0: और इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे के पोषण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं
1: जी।
0: जो अक्सर गाँव में देखा जाता है, प्रायः हम देखते हैं कि कोई भी माँ जब भी आती है, जब भी उसको मतलब वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चा होने के बाद, कहीं ना कहीं उसके घर वाले इस बात पे जोर देने लगते हैं कि जैसे बच्चा दूध पी रहा है लेकिन तब भी रो रहा है
1: जी।
0: तो ऐसे में क्या करते हैं कि वो बाहर का दूध लेना स्टार्ट कर देते हैं, बाहर से दूध लेना पिलाना स्टार्ट कर देंगे, गाय का दूध पिलाना स्टार्ट कर देंगे। अक्सर देखा जाता है कि ये सारे कार्य जो माँ बाप हैं या उनके सगे संबंधी जो भी होते हैं बच्चों के
1: जी,
0: वो ये स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। ये पूरी WHO ने पूरे तरह से ये बताया हुआ है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है
1: जी, जी।
0: उसके ऊपर से किसी भी बच्चे को कुछ नहीं दिया जाना है, यहाँ तक कि पानी कुछ भी नहीं दिया जाना है, लेकिन कई लोग यह कार्य करते रहते हैं
1: जी।
0: तो ये समस्या जो कुपोषण वाली है ये पैदा होने के साथ ही होती है
1: जी,
0: कि ऐसा होता है कि बच्चे को ऊपर का दूध दिया गया, फिर डायरिया स्टार्ट हो गया, फिर खिलाने पर ध्यान नहीं दिया गया, 6 महीने के बाद जब हम कहते हैं कि वीनिंग स्टार्ट होती है, जब माँ के दूध के साथ साथ आपको दाल का पानी, चावल का पानी, खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, तो माँ बाप ये कार्य भी नहीं करते सुचारू रूप से, तो बच्चा धीरे धीरे कुपोषण की ओर जाने लगता है
1: जी, जी।
0: और फिर किसी के पास समय नहीं है कि बच्चे को देखे और अच्छे से खाना खिलाए, उसको ध्यान दे उसके ऊपर कि हमको दो सुबह शाम की इतनी मात्रा में बच्चे को खाना खिलाना है
1: जी।
0: तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें पनपने लगती हैं, फिर धीरे धीरे करके यही होता है कि बच्चा उम्र बढ़ती जाती है लेकिन उसका वजन धीरे धीरे करके कम हो रहा है और वो कुपोषण की ओर जा रहा होता है
1: जी। तो आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धि से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी थे, आपसे बातचीत हो रही थी बच्चों के देखभाल के बारे में। इतना अच्छा कार्य करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर, 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
3: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: गुलाबो बहन,
2: हाँ
1: संभवतः आपके डॉक्टर साहब के बात बात पसंद आई हुई, क्योंकि बहुत सामूहिक जो बातचीत रहा
2: एकदम। और देखा वहीं के रही अपने पंच भैया लोगों को भी बहुत पसंद आई हुई। और देखा कहे ना पसंद आई भैया, कहे कि इतना जो जागरूकता भरी बात हो ना, जहाँ हम लोगों के बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ल बात हो, जहाँ हम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ल बात हो, तो देखा ये जरूर पसंद आवला। कहे कि बहुत लोगन जैसे जानकारी के अभाव में आदमी ध्यान नहीं दे पावला अपने बच्चों पे चाहे खुद पर, तो जहाँ जानकारी अगर डॉक्टर साहब दे देते हमें तो हम लोगों के तो बहुत ही बढ़िया लगी और लगल भी। और देवल जय डॉक्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भी धन्यवाद कि इतने बढ़िया जानकारी देवलन है आप।
1: और साथ साथ जौन बाकी एक डॉक्टर साहब के और उपस्थिति बा मौसम के साथ,
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर सुमंगल सिंह जौन मौसम वैज्ञानिक तकनीकी अधिकारी BHU वाराणसी से हो, आप मौसम के बारे में कुछ जानकारी देते हो, का हम लोग कुछ सतर्कता बरते चाहिए, तो सुन ले जाए।
2: चले
3: नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप लोगों ने कल शाम को ये महसूस किया होगा कि तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश भी हुई है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि मानसून जो है खत्म होने के कगार पे है, और मौसम बदलने के दौरान वातावरण में जो बदलाव हुआ है उसी के कारण ये हुआ है, और अगले 2-3 दिनों तक इसका असर रहेगा और जो है हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। और इसलिए किसान भाइयों, अगले 1-2 दिन तक खड़ी फसल में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धान की फसल में इस समय दाना भरने और दुधिया अवस्था में है, कहीं कहीं दाना बन चुका है और कहीं कहीं दूध अवस्था में है, तो ऐसे में क्या होता है कि तेज हवा से पौधे गिर सकते हैं क्योंकि बाली का लोड है उस पे। तो ऐसे में क्या करें किसान भाई कि अधिक नमी रखने पर दानों में रोग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अनावश्यक सिंचाई न करें। और इसी क्रम में अगर हम सब्जी वाली फसलों की बात करें तो मुख्य रूप से जैसे भिंडी हो गया, जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, और पत्ता गोभी फूल गोभी है, तो किसी सब्जी में फल बन रहा है, और अगर गोभी की बात करें तो गांठ बन रहा है, या फिर बंदा गोभी की बात करें तो उसमें फूल का विकास हो रहा है, और कोई कोई तुड़ाई की अवस्था में भी है। समय रहते किसान भाइयों, चूंकि मौसम आने वाले अगले 2-3 दिनों में खराब रहेगा, तो अगर तैयार फसल है तो उसको तोड़ लें, क्योंकि अधिक नमी से क्या होता है कि उसमें सड़न हो जाएगा और फफूंदी रोग का खतरा बढ़ सकता है, तो समय से तुड़ाई करना बहुत जरूरी है। और खेत में जल भराव न होने दें, और ये भी ध्यान दें कि अगर पत्तियों या फलों पर कोई कीट रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका जो है समय रहते आवश्यक नियंत्रण उपाय बनाएं। और मिर्च में क्या है कि अभी जो अगर हवा तेज होती है, गरज चमक के साथ बरसात होती है, तो जो उसमें फल और फूल लग रहे हैं वो झड़ने की स्थिति बन जाएगी, तो इसलिए जो है अधिक नमी में रोग भी बढ़ सकते हैं, ऐसी अवस्था में है मिर्च की फसल, तो मिर्च के खेत में जो है पानी जमा न होने दे किसान भाइयों। बारिश के तुरंत बाद अगर लगता है कि सिंचाई करना है तो जरूरत बहुत ज्यादा हो तब करें, क्योंकि अभी मौसम खराब है, उसका फिर आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। दुधारू पशुओं को क्या है कि अभी अगर धूप होती है तो थोड़ा उमस भी रहेगा, और इसमें क्या होता है कि पशुओं को जो है आप जो है सुरक्षित स्थान पर रखें, खुले में पेड़ के नीचे रखते हैं तो बिजली गिरने से उनके मतलब कुछ दिक्कत हो सकता है, इसी जगह पर रखें, साफ सुथरे स्थान पर रखें जहां पे कि इनका असर कम से कम हो और आपके पशुधन को नुकसान न हो। धन्यवाद किसान भाइयों, सुरक्षित खेती करें और स्वस्थ रहें। जय जवान जय किसान।
1: डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद है,
2: बिल्कुल,
1: इतना अच्छा समय के साथ मौसम की जानकारी देव। इस समय किसान भाई लोग जुनवा की हर तरह के फसल के कटाई के साथ साथ खेत के तैयारी भी करत हवन आगे के बुआई करे खातिर, तो लेकिन सब किसान भाई लोग से यह भी अपेक्षा है कि जौन भी बीज लेवे तो बड़ा सोच समझ के लेवे, ताकि जौन बाकी अच्छा उत्पादकता बढ़ सके।
2: इसमें
1: कुछ ध्यान देवे लायक बात है कि प्रमाणित बीज ही खरीदे, और साथ साथ जौन बाकी मिट्टी और जलवायु के अनुसार जौन बाकी बीज लेने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ मैदानी भाग में जौन बीज से अनाज उत्पादन होता है वो हम लोग के जौन बाकी उबड़ खबड़ वाला स्थान है, ओमे जौन बाकी वो बीज काम नहीं करी, तो ओकरे ध्यान रखते हुए ही बीज लेवे के जरूरत है। और जमाव के प्रतिशत बोरी पर देख लेने कि कितना प्रतिशत हमें जमा हो सकला, ऊपर भी ध्यान दे लेके जरूरत है, बीज के श्रेणी कौन है ओके भी ध्यान दे करके तब फिर जौन बाकी बीज खरीदे की कोशिश करे के चाहिए।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और पक्की रसीद जरूर ले लेवे के, ताकि बाद में अगर शिकवा शिकायत की भी आवश्यकता पड़े तो ओमे जौन बाकी आदमी कहीं ओके दिखा सके और कह सके कि हम ये बीज ले ले।

0: रही और हमार अच्छा जमाव नहीं हुईला के या तो जौन बाकी अच्छा उत्पादकता नहीं भइल, तो ये सब के हम लोग के ध्यान दिले की बहुत जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया।
0: बिल्कुल
1: और देखा अच्छा बीज अच्छी फसल, अब बुरा बीज पूरा फसल
0: बिल्कुल
1: खराब।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: देखा ये बात के ध्यान रख के हम लोगों के हम अपन खेती पे ध्यान देवे के चाहिए, बीज को चुनाव करे के चाहिए। और देखा अगर हम लोगों बीज का चुनाव सही तरीका से करल जाए तो हम लोगों के आवे वाला जो हम लोग इतना मेहनत करत हैं, अगर मतलब खराब बीज का अगर चुनाव करके हम लोगों जुताई कर देली, एक बाद जब फसल का समय आई तो अगर अच्छा फसल ना मिले तो हम लोगों का कुल पैसा पानी में चल जाए। तो एक खातिर अगर थोड़ा सा पैसा अगर शुरुआत में ही लगत बा तो अच्छे बीज का चुनाव हम लोगों करके
0: बिल्कुल
1: अपने
0: बिल्कुल
1: खेती करल
0: बिल्कुल
1: जाए, ताकि हम लोगों के चार पैसा के मुनाफा हो। और
0: अब
1: यही बात के साथ
0: हाँ
1: हम तो कहब ना कि अपने पंचायती में हो जो हम लोग धाती बटोर के लेके आए नहीं, एक
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: जानकारी बा तिलहन उत्पादन का उन्नत तकनीकी शिव प्रकाश सिंह भैया से, प्रगतिशील किसान हवा जोन की वो अपन मुनई भैया कुछ जानकारी उनसे लेते हुए फरिया के वो जानकारी देते हुए। तो हम तो कहते हैं ना कि हम लोग अपने बातें के दें विराम और चले इनका जानकारी सुनल जाए।
0: बिल्कुल सुनावे।
2: किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी करत है और आगे जौन आवे वाला समय बा रवि का सीजन है। और रवि में अक्सर देखल जाला कि 15 अक्टूबर से हम लोगन का तैयारी शुरू हो जाला है, या कुछ ऐसा पंच भैया लोग हवा किसान भैया लोग हवा जौन इंतजार करना कि हथिया नक्षत्र बीत जाए ओकरे बाद हम दलहन और तिलहन का खेती करी। आ देखें हम लोगन के साथ एक प्रगतिशील किसान शिव प्रकाश सिंह भैया आल हम, आप का अनुभव आज हम लोगन एक दूसरे से साझा कैल जाई। शिव प्रकाश सिंह भैया आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ई बतावें कि जौन अपन पंच भाई लोग हवा गांव का अपन किसान भैया लोग हवा एक कहावत कहन कि भैया जवन रवि का खेती बा उ चित्रा नक्षत्र में शुरू करे के चाही, ई पहले का विचारधारा बा। त आगे आवे वाला रवि के सीजन में आप कैसे अपने खेती की तैयारी करत हुआ?
3: देखें भैया, रबी के खेती में मुख्य रूप से गेहूं के खेती तो सामान्यतः हर किसान करते हुआ,
2: जी
3: लेकिन दलहन और तेलहन पर जो तुरंत आर्थिक स्रोत है माँ, एक बिक्री में भी दिक्कत न हा,
2: जी
3: एक खेती करे के प्रति हम लोग के ध्यान देवे के चाहिए,
2: बिल्कुल
3: निश्चित रूप से देवे के चाहिए। काहे कि हम लोग तिलहन में और दलहन में भी आत्मनिर्भर हमारे देश नहीं बा।
2: जी
3: ये स्थिति में हम सरसों के खेती और कुसुम के खेती,
2: जी
3: मुख्य रूप से सरसों के खेती के बारे में आपसे हम बात कर चाहता ही कि सरसों के खेती किसान करें तो आर्थिक लाभ इनके ज्यादा मिल सकला।
2: जी बिल्कुल सही बात कहते आप। अच्छा ये बतावे कि सरसों का जवन खेती बा
3: जी
2: आप करे का तैयारी करत हुआ तो कितना रकबा में?
3: हम 2 हेक्टेयर सरसों के खेती हर साल अपने पूरी खेती में से निकाल के एक ही करीला हम।
2: अच्छा
3: और सरसों की खेती में वैरायटी का चयन जोन बा, आम किसान जोन बा महंगी की वैरायटी पर जाना, पायनियर 45 या 46 एक वैरायटी बा, एकर कीमत 1500 रुपया केजी तक बीज मिलला
2: जी,
3: ओमा लागत हमार बढ़ल। ओकरे जगह पर हमार जोन बा पूसा इंस्टीट्यूट जोन बा कई वैरायटी हमार सरसों के निकल ले बा,
2: जी
3: ओकरे बारे में हम कहब। हम जैसे खुद खेती जोन करीला पूसा मस्टर्ड 37
2: जी जी
3: एनपी 353 वैरायटी है, ये जोन बा 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक कर पैदावार बा।
2: अच्छा
3: यही का हम खेती अगर करीला और निश्चित रूप से अगर हम सितंबर के दूसरे पखवाड़ा से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़ा तक अगर हम सरसों के खेती कर दे तो निश्चित रूप से कोई कीड़ा माहो ये सब का प्रभाव पर नहीं पड़े।
2: अच्छा
3: मुख्य रूप से हमारे सरसों पर माहो कीट का सबसे ज्यादा आक्रमण होला, ओकर प्रभाव जो होला जनवरी और फरवरी के 22 के अंदर होला।
2: अच्छा अच्छा
3: लेकिन अगर पहले अगर हमें सरसों के फूल आ गल जैसे हम 15 अक्टूबर के ओकर बोली तो दिसंबर के प्रथम पखवाड़ा तक हमारे सरसों फूले लगी।
2: अच्छा
3: जब माँ फूली तो कोई रोग की जरूरत न, कीड़ा न लगी है। मुख्य रूप से रोग तो सरसों में कोलो अल्ट्रा झुरसा एक होला वो होला, लेकिन अगैती फसल वो नहीं हो।
2: अच्छा
3: और कोई भी खेती की योजना हमें बनावे बदे जैसे वित्तीय योजना होला सरकारी अप्रैल में, वैसे हम लोग के अपने खरीफ के खेती के समय ही पूरे साल का रबी के योजना बनावे के पड़ाला।
2: अच्छा,
3: जैसे धान कम समय के खेती करब तो धान जोन मा हमार अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में तैयार हो जाई, ऐ समय धान फूटल मा तो हम 15 अक्टूबर

0: तक खेत के अच्छी जुताई करके
1: जी
0: कल्टीवेटर से रोटावेटर से ओकर जुताई करब, ओकरे बाद सरसों के ब्राटी जैसे हम पूछा 37 साहब के बतौली है, ये मात्र 800 ग्राम मतलब प्रति बिगहा मतलब 1200 से 1300 ग्राम प्रति एकड़ कर बीज लगाला, एकर बीज के बुआई करी हम। अब बुआई के साथ साथ में जो हम आप खाद के विषय करते हैं, सरसों में जो बा हम अगर DAP उपलब्ध बा तो बा, नहीं तो आजकल ऑर्गेनिक खाद भी आपके बहुत ज्यादा आई गल बा। वो ऑर्गेनिक खाद जैसे हमारे उत्तराखंड में खाद आजकल गन्ना मिलन द्वारा तैयार कर जाता है, जब फास्फेट खाद का 10% बाप्रो खाद नाम के आवता।
1: अच्छा।
0: हम इस साल पूरी खेती अपन धान का वही प्रो के आधार पर कैली, और रवि भी पूरा प्रो खाद के साथ हम करीला। तो प्रो के जोन मात्रा जोन बहमा 50 किलो प्रति एकड़, और साथ साथ 5 kg प्रति एकड़ जोन बहम सल्फर मिट्टी वाला सल्फर।
1: अच्छा।
0: सल्फर पाउडर एक आवाला किसान के मुख्य रूप से देखा, मिट्टी वाला जब हम दे 5 से 7 kg प्रति एकड़, ये के डाल के सरसों की बुआई हम करी 800 से 1 किलो
1: जी।
0: और सरसों बोले के बाद सरसों जमले के बाद सरसों का बिरलीकरण, ओकर दूरी
1: जी
0: घना हो जाए तो न हो, तो ओकर बिरलीकरण करे आप। बिरलीकरण करले से ओकर ब्रांचिंग बहुत तेजी से हुई।
1: अच्छा।
0: कल्ला बहुत बढ़िया और निश्चित रूप से सरसों का पैदावार हमारे जवान भाई आपका 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ ओकर पैदा हुई।
1: अच्छा, बोवाई के समय शिवप्रकाश सिंह भैया ये देखल जाला कि जौन अपन किसान भाई लोग हुआ वो बीज शोधन नहीं करता, तो का सरसों कभी बीज शोधन आप लोगन करन?
0: जी जी, सरसों के बीज इतनी कम मात्रा में लगा लाया आपके कि हर 1 kg पर 5 ग्राम
1: जी
0: थीरम से या कर्बिंडाजीन से शोधित कर दिया जाला, तो ओकरे में जड़ में उकठा रोग जो लगा ला ऊन लगी और जमाव भी अच्छी तरह से होला
1: जी। अच्छा, उकठा रोग बीज शोधन कैले से नहीं हो?
0: ना हुई ओकरे में जो।
1: अच्छा, जब आप लोगन बुआई करा ना तो कुछ जोन रासायनिक उर्वरक बा ओकर भी प्रयोग करा ना कि केवल नहीं जैविक का ही प्रयोग हो?
0: नहीं, रासायनिक खाद का हमारे देश में बड़ी समस्या बा। फास्फेट जोन में हमारे देश में उत्पादन नहीं हो।
1: जी जी,
0: ये बाहर से आवाला और किसानन के एक निश्चित मात्रा में इस समय उपलब्ध होता
1: जी
0: फार्मर रजिस्ट्री के चलते। तो अब मुख्य रूप से थोड़ा हम लोग के खेती लघु सीमांत से ऊपर बा, तो हम लोग के मात्रा पूरी उपलब्ध नहीं हो पावा, ओकरे वजह से हम ऑर्गेनिक और दोनों खाद का प्रयोग करीला।
1: अच्छा,
0: लेकिन दलहन और तिलहन में रासायनिक खाद का दूरी बनाकर अगर हम जौन बा ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करब तो ओकर रिजल्ट बहुत अच्छा आया वाला आपके।
1: अच्छा,
0: और मुख्य रूप से भैया सरसों के खेती का प्रदान बा जौन बा ड्रोन बा। कोई भी दवा सरसों इतनी ऊंची फसल होला है ओप्पा आम किसान के स्प्रे करे में दिक्कत होला है
1: जी,
0: लेकिन जौन ड्रोन बाया हर जगह उपलब्ध बा, ड्रोन से जौन बा स्प्रे कर जायी दवा। सागरिका एक बहुत अच्छी हम लोग का समुद्री काई से बनला और इफको द्वारा उपलब्ध बाई
1: जी जी,
0: और NPK 1919 देखे बुआई के समय हम प्रो जोन 10% फास्फेट बा ओकर उपयोग करब और सल्फर के उपयोग करब, और ओकरे बाद जो बाकी पूर्तियों के नाइट्रोजन के जोन कर बा, NPK घुलनशील जोन बा 20-20-20 जोन बा 1 kg प्रति एकड़ पानी के घुलनशील पानी 500 लीटर में मिलाकर, और उकरे सासा सागरिका जोन बा 1 लीटर 500 लीटर पानी में।
1: अच्छा।
0: ओकर जब हम स्प्रे कराए थे तो ओकर ग्रोथ रेगुलेटर के तरह उस सागरिका काम कराला और बड़ी तेजी से ब्रांचिंग हुई और बढ़ी।
1: अच्छा, शिवप्रकाश सिंह भैया आप लोगन सिंचाई करन के नहीं, और कब कब सिंचाई करन कई पानी?
0: सिंचाई मुख्य रूप से सरसों में, ये महत्वपूर्ण विषय आप उठाना है
1: जी।
0: सरसों के खेती कैले के बाद अगर हम तुरंत पानी लगा दे 20 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर, तो सरसों के जड़ जोन बा बीच से ब्रांचिंग करी।
1: अच्छा।
0: और फैल जाए ऊपर।
1: ऐसे
0: किसान के विशेष रूप से ध्यान देवे के चाहिए जोन हम प्रयोग करी ला कि सरसों जब 40 दिन को हो ओकरे में एक एक फूल निकलना शुरू करे तो पहली सिंचाई आप करें।
1: अच्छा।
0: और सरसों हुआ चना हुआ जड़ वाली जो है ये पानी के खोज करती है, नीचे जाई जड़।
1: अच्छा।
0: उसका मूसला जहाँ नमी मिली वहाँ तो कोई विकास करी।
1: हुँ।
0: तो पानी का मात्रा जब हम दूसरी सिंचाई कर पहली सिंचाई 40 दिन पर करब तो वो पानी का मात्रा जो पौधा के 40 दिन बाद मिली
1: जी,
0: तो वो पानी हमारे उतनी लागत में अगर हम ऊपर लगा देली पानी पहले लग गया तो पानी लगले से वो जड़ जोन बा अगल बगल ब्रांचिंग करके बढ़िया और नीचे के नमी न लिए यहाँ जो के जल्दी जल्दी हमके 10-10 दिन पर 15-15 दिन पर पानी देवे
1: सिंचाई करे पड़ी
0: सिंचाई कर पड़ी। पहली तैयारी होला कि सरसों के खेत में पर्याप्त नमी हो तब बुवाई करें और ना ही तो पलेबा करके ही सरसों बोवाए। लेकिन हम लोग का मट्टी जोन काली बा यहाँ नमी जोन बा एकदम अपने आप ऊपर जमीन में रहा है और समय से फसल कटले पर आ जाए। एक पुरानी कहावत है आपके बताए दे किसान का कि है समय हम लोग का कन्या राज का सूर्य है, ये समय पत्थर भी पिघल जलाए सूर्य के गर्मी से
1: बिल्कुल।
0: लेकिन 17 सितंबर निश्चित है कि कन्या राज का और 17 अक्टूबर का तुला राशि आई और तुला राशि में ही बुआई करने के बाद नमी ऊपर के जलाए
1: अच्छा
0: नवी खेत के एकदम ऊपर जाई और तुला के रात जो एक महीना रही उतने में बुआई करी है कोई फसल बुआई करी है ओकर उत्तम पैदावार हो ओकरे में पानी कम लगे।
1: बिल्कुल सही बात आप कहत हो चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग बाया उनसे अपने अनुभव के आधार पर आप का कहल छे।
0: हम किसान से यह कहब कि सरसों के तेल बहुत मिलावट होला है और अपने घर का सरसों का तेल खाएं, अपने घर का सब्जी प्रयोग कराएं और अपने घर के दूध प्रयोग करी तो स्वस्थ रही है और कृषि में लागत कम आई चूंकि अस्वस्थ हुई है तो उनके पैसा खेती का ही पैसा अस्पताल में खर्च करे पड़ी तो हर किसान जो अपने के दूध अपने के सरसों ये जरूर तैयार करें।
1: बिल्कुल शिवप्रकाश सिंह भैया आज आप अपने कार्यक्रम में आई ना और आप बतौलन की तेल दाल या दूध अपने घरे स्वयं अपन पंच भैया लोग किसान भैया लोग उत्पादन एकर करें और स्वयं घरे का चीज प्रयोग करें तो निश्चित बात कि वो स्वस्थ रही है। आज आप अपने कार्यक्रम में आई ना और इतना बढ़िया अपने अनुभव का बात साझा कर लें एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपके 4800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
2: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI
4: आपका साइबर रक्षक।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लाओ बहन।
2: हाँ भैया।
1: देखो बहुत जानकारी सुनल गई और संदेश भी सुनल गई। देखा थी कि आपके हाथ में पाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया, पाती एक यही बीचे में पुनवासी भैया भेज दिला ना मधुपुर से प्रति कुंतल ने बाजार भाव। तो हम तो कहते हैं बिना पंच भैया लोगों ने बिना देर के लिए इनका
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बता देवल जाए। परवल देखा आज का भाव रहा 7,000 रूपए प्रति कुंतल, कुनरू 2,000 रहा, करेला 3200, भिंडी देखे 2200 है, गोल बैगन 3500, लंबा बैगन 2000, फूल गोभी 3500 रूपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 2800 रूपया सैकड़ा, टमाटर 3500 रूपया कुंतल, नेनुआ 2500 कुंतल, खीरा 3500 कुंतल, कोहड़ी 2000 रूपया कुंतल, मूली 5000, पालक 5000, हरा धनिया 12000 रूपये कुंतल, बोड़ा 3500, अदरक भी देखे 12000 बा, प्याज 4500 है, लहसुन 11000, नींबू देखे 500 रूपया सैकड़ा है, बंडा 3000 है, सूरन 4000, और मकई जो है देखे 1500 रूपया प्रति कुंतल। इला मधुपुर से भेजल पुरवासी चौहान भैया का बाजार भाव, भैया के देवल जाए बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित रूप से। और यही के साथ की जो बाकी हम लोग के केहू भी अगर रोगी व्यक्ति हो, केहू के रक्त के कमी हो, केहू के केहू भी प्रकार के परेशानी हो, तो ऐसे लोगन के जो बाकी रक्त दान करके हम लोग जो बाकी उनके जीवन बचा सकीला
2: भैया। और एक चीज और आपसे बताइए चाहब कि जैसे हम लोगों ने अपने शरीर के देख के कहिला कि रक्त देवे से शरीर हमारा कमजोर हो जाए, बहुत लोगन के भ्रांति होला, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होला। रक्त दान करे से शरीर और स्वस्थ रहेला, रक्त बढ़त रहेला। यही बात के संदेह अपन पंचायती यही समेटल जाए, फिर अच्छा अच्छा बात हुई, बढ़िया बात हुई। तब तक सब पंचन के
1: राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 होने
1: आयोजित है। खिंच गया किसान कल्याण

0: वाली जमीन है वह कम हो चली जा रही है।
1: भैया जमीन कम होत रही है लेकिन वही का हम उपयोग कर सके थे, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा, वही के खातिर कृषि वानिकी है।
0: हाँ, कृषि वानिकी अपनाए के अब देखो हम पंचे का करित हैं, अपन जो फसल उपजाए थे वह खेत के बीच में करित हैं, लेकिन जो म्याड़ है बंधा है वे परे रहते हैं, तो उन पर जो उन्हें बिरवा लगाए जा सकते हैं।
1: म्यार बंधा पर तो लगाए सके थे, साथ है भैया अगर आसपास की कोई जमीन खाली है या खेत में अस कोई जमीन है जहाँ कुछ और न उपजा सके थे तो हुआ बिरुवा लगा के लाभ ले सके थे। सबसे बड़ी बात है कि बिरुवन ते हमका लकड़ी फल छाह सब कुछ मिला थे।
0: हाँ, और इतना भी नहीं देखो भाई, इतना पानी गिरा अगर बिरवा लाग होते हैं तो जो उन माटी है उपजाऊ वाली वह बह जाते हैं, तो वही जो जड़ें हैं वे माटी के यहाँ रोके रहती हैं, तो एक यहो लाभ मिल जाते हैं।
1: सही बात कहा तो।
0: और देखो जब हम पंचम का आज की खबरें पता चल जाती हैं तो और ज्यादा लाभ हो जाते हैं।
1: तो जाना जाए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश से एक बड़ी और किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्वरक सेतु ऐप का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस ऐप के जरिए अब किसान लाइन में घंटों खड़े हुए बिना और कालाबाजारी से बचते हुए अपनी जरूरत का खाद आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने इस ऐप को प्रदेश के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। इनमें गोरखपुर, महाराजगंज, लखनऊ, शाहजहांपुर, वाराणसी, रायबरेली, पीलीभीत, झांसी और मेरठ शामिल हैं। सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि भूमि के अनुसार निर्धारित उर्वरक की सीमा के अंदर समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ खाद उपलब्ध कराना है। किसान अब समिति की अनुमति के बिना ही अपनी सुविधा अनुसार खाद बुक कर सकेंगे। न लाइन में लगना पड़ेगा, न कोई अनावश्यक परेशानी। शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को SOP जारी कर दी है और किसानों को प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारियों और सहकारी समितियों को भी निर्देश दिए हैं कि ऐप के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा। ऐप की खास बातें हैं, समिति के बिना बुकिंग, लाइन में लगने की जरूरत नहीं, किसानों के अनुसार ही खाद, पूरी तरह पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था, कालाबाजारी पर रोक, और इस ऐप को Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रत्ना बहनी।
4: हाँ भैया।
3: देखो ये बरिया तिलहन का मौसम चल रहा है और तिलहन की अगर फसल की जानकारी मिल जाती है कि कैसे वही का तैयार करे है तो कितना अच्छा हो जाते।
4: बिल्कुल सही बात कहा था। तो आज की बात में रबी में तिलहन उत्पादन जी के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र भैया।
3: तो आओ जान लीजिए।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, रबी में जहां तिलहन उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से सहायक निदेशक ब्यूरो डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि रबी में तिलहन उत्पादन की क्या कुछ संभावना है।
6: सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूं। और जहां तक तिलहन का प्रश्न है, तिलहन के उत्पादन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। उसमें हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले सरसों आता है। सरसों का एक बड़ा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है और बहुत अच्छी अच्छी किस्में उपलब्ध हैं। और दूसरे नंबर पे अलसी आती है। अलसी का उत्पादन किसान भाइयों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें कम दिखाया है, लेकिन आज की इस टॉक के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको प्रमोट करें, मैक्सिमम प्रमोट करें, क्योंकि इसमें औषधीय गुण है।
5: तो दो मुख्य फसल है, एक तो राई सरसों और दूसरी अलसी। डॉक्टर साहब खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
6: खेत की तैयारी में सबसे पहले जो एक परंपरा किसान भाई हमारे जानते भी हैं,

0: उसमें दो तीन जुताइयां हमारी सिंपल कल्टीवेटर से कर दें, जमीन को भुरभुरी कर लें और उसमें पर्याप्त नमी का लेवल बना लें। दो तीन के बाद फिर उसमें हम, क्योंकि इसके बीज छोटे हैं तो ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि बीज के ऊपर ना तो बहुत ज्यादा मिट्टी आए और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर रह जाए। तो भुरभुरी मिट्टी में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बीज को डालें और उसके बाद फिर जो है हल्का सा पाटा लगा लें।
1: जी, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं राई सरसों की और अलसी की?
0: जहां तक उन्नत प्रजातियों की बात है, अब इस समय गुणवत्ता सर्वोपरि है, तो अगर हम गुणवत्ता को ध्यान में रखें तो सरसों में एक एसिड पाया जाता है, उसको इरुसिक एसिड कहते हैं।
1: जी
0: वो कंपेरेटिवली हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो अब कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जैसे पूसा 00 मस्टर्ड 35 है, बहुत अच्छी वेराइटी है, जो किसान इसको उगा लें उसके बाद अगर वो इसको एक तरह से आइडेंटिफाई कर ले जाए मार्केट में कि ये पूसा 00 मस्टर्ड है, तो उनको उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा,
1: यानी अतिरिक्त कीमत मिलेगी।
0: अतिरिक्त कीमत मिलेगी सर।
1: इसके अलावा
0: इसके अलावा एक और वेराइटी है RH 1975, एकदम नई वेराइटी है किसान भाइयों के लिए। ये जो है इसमें मैक्सिमम यील्ड है, 27.5 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड है,
1: यानी 2.5 एकड़ में।
0: बिल्कुल 2.5 एकड़ में। और ये व्हाइट रस्ट एक आता है, इसमें एक बीमारी आती
1: सफेद
0: है
1: गिरवी।
0: सफेद गिरवी, इससे ये रेसिस्टेंट भी है। और दूसरी बात ये कि इसकी गुणवत्ता जो है वो औरों की अपेक्षा ज्यादा, इसके तेल की गुणवत्ता अच्छी है।
1: राई सरसों की बात चल रही है तो पीली सरसों भी महत्वपूर्ण है।
0: पीली सरसों महत्वपूर्ण है सर, उसकी एक वैरायटी मैं अपने किसान भाइयों को बताऊंगा, पीताम्बरी एक वैरायटी है, बहुत अच्छी प्रजाति है, बहुत अच्छा उत्पादन है। हमारे किसान भाई इसको जरूर अपनी जो शस्य व्यवस्था है, अपनी जो खेती है, उसमें शामिल करें।
1: तो जिन प्रजातियों का आप जिक्र कर रहे हैं इनकी उपलब्धता कृषि बीज भंडारों पर है?
0: कुछ की उपलब्धता, जैसे पीतांबरी है, इसकी उपलब्धता कृषि बीज भंडारों पे है, लेकिन जैसे हमने एक वैरायटी आपको बताई RH 1975, ये अभी बहुत रीसेंट वैरायटी है। हमें किसान भाइयों को ये बताना है कि आप इसको याद रखिए और आने वाले अगले साल या उसके अगले साल इसको मांगिए।
1: और कहीं न कहीं से अगर उपलब्ध हो जाए तो उसको ले आकर के उसका बीज उत्पादन शुरू करें।
0: बिल्कुल,
1: डॉक्टर साहब, बुआई का उपयुक्त समय क्या है राई सरसों, पीली सरसों और अलसी का?
0: किसान भाइयों के इस समय जो वर्तमान हमारा समय चल रहा है, हम लोग 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इसकी बुआई प्रत्येक दशा में कर लें।
1: अलसी और राई सरसों दोनों की
0: हाँ,
1: बीज की मात्रा कितना लगेगी प्रति एकड़? और बुआई के पहले बीज शोधन और भूमि शोधन भी करना है क्या?
0: बिल्कुल करना है किसान भाइयों को। जो बीज शोधन है एक तरह का वैक्सीनेशन है, जैसे बच्चों में वैक्सीनेशन करते हैं वैसे ये बीज का वैक्सीनेशन है,
1: सुरक्षा कवच।
0: सुरक्षा कवच है। अगर आप बीज शोधन कर देते हैं तो वो बीज पूरी तरह से जमीन में सुरक्षित हो जाता है, ना कोई कीड़ा ना कोई रोग उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, और वो अपने आप ही खूब बढ़िया सा उसमें जर्मिनेशन होता है और अंततः वो एक बढ़िया पौधा बनता है। एक केमिकल है जिसका नाम है थीरम, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इससे शोधित करें और इसके शोधन से हम सब लोग जो है एक अच्छी उपज पाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, जैविक फफूंदी नाशक में ट्राइकोडर्मा है, क्या उससे भूमि शोधन भी फायदेमंद होगा?
0: बिल्कुल, उससे भूमि शोधन बहुत ही फायदेमंद है, बीज शोधन भी फायदेमंद है, लेकिन भूमि शोधन को अगर हम फोकस करें, उसको देखें, तो उसके लिए हमें 4 किलोग्राम जो ट्राइकोडर्मा है, 4 किलोग्राम लेंगे और उसको गोबर की सड़ी खाद में मिला के 1 हफ्ते रखेंगे और उसके बाद फिर उसको पूरे में बिखेर देंगे 1 हेक्टेयर में
1: अंतिम जुताई के समय।
0: अंतिम जुताई के समय, और उससे आपका जो खेत है वो भी शोधित हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, बीज की मात्रा कितना लगेगी प्रति एकड़ राई सरसों की और अलसी की?
0: राई सरसों को अगर हम देखें तो लगभग 2 से 2.5 केजी
1: प्रति
0: प्रति
1: एकड़।
0: एकड़, और अगर हम इसको देखते हैं अलसी को देखते हैं तो अलसी में लगभग जो है 10 से 12 किलो पर एकड़।
1: जो भी रबी की तिलहनी फसलें हैं, फसल की भूख मिटे इसके लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कब, कैसे और कितना करना है?
0: देखिए, उर्वरक का एक थंब रूल है, किसान भाई हमारे जानते भी हैं, थोड़ा सा उसको वैज्ञानिक ढंग से मैं और बता दूं। उर्वरक की जो मात्रा है उसमें पोटेशियम, फास्फोरस और आधा नाइट्रोजन, इसको हम बुआई के समय ही देते हैं। बहुत अच्छा होगा कि इसको हम कूड़ों में दें और बीज के 2 सेंटीमीटर

0: सेंटीमीटर नीचे प्लेस कर जाएं।
1: यानी नीचे खाद और ऊपर बीज, यही समझने की है चीज।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खर पतवारों का प्रबंधन कैसे हो तिलहनी फसलों में?
0: खरपतवारों के लिए मैं किसान भाइयों को एक बहुत बढ़िया सी दवा बता देता हूँ। एक दवा है पेंडीमथिलीन, जो हमारी तिलहनी फसलें हैं उनके लिए बहुत ही गुणकारी है। वो उसका प्रयोग वो कर सकते हैं। मात्रा की जहां तक बात है, लगभग 3.25 लीटर एक हेक्टेयर में प्रयोग करें,
1: यानी 1.25 लीटर प्रति एकड़।
0: प्रति एकड़। और इसको जो है बुआई के जस्ट 1-2 दिन के अंदर ही स्प्रे कर दें,
1: ताकि भूमि पर एक सतह बन जाए, फिल्म बन जाए और खरपतवारों का जमाव न हो।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे रबी में तिलहन उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके ब्यूरो कार्यालय आना चाहें, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई हमारा नंबर नोट करें, 9412116679, 94121-166-79, 94121-166-79।
1: डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और रबी में तिलहन उत्पादन कैसे करें, किसान भाई बहन कौन सी उन्नत प्रजातियां चुनें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना बहनी।
3: हाँ ओम भैया।
2: देखो, जब अपनी खेती का काम करके आओ, संझा कहिया पूरा घर बैठ होए और बगल मैया बाजा बाजत होए, तो वैपा अगर गौने सुने मिल जाते इतनी बढ़िया जानकारी के बाद, तो मन एकदम आनंदित हो जाते।
3: वैसे कहा जाते भैया, गौने के बाद अगर कोई थकान होते तो वह मिट जाते, तो काहे ना पंचन का खेमटा सुनवा दिन जाए।
2: हाँ, तो यू है शंकर यादव व साथिन के स्वर मैया, तो आप सुना जाए, पंचो भाई सुने, आनंद ले।
4: अरे दिलवा के बतिया, अरे दिलवा के बतिया, मन ना भावे बलम पर।

0: रत्ना भाई
1: हाँ भैया।
0: देखो, हम पंचे मिठास की बात करे थे नो, मिठास जब पैदा करे बात होते तो कितना नीक हो जाते, यानी कि हम बात कर रहे हैं गन्ना और गुड़ उत्पादन की।
1: तो आज के किसान मा जाना जाए कि गन्ना और गुड़ उत्पादन कैसे कीन जाए जिसे अच्छा लाभ मिले, हिमांशु गंगवार भैया से।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं फरुखाबाद जनपद के शमशाबाद ब्लॉक के कुयाधीर गांव, जहां के नॉनमेसी किसान हिमांशु गंगवार भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। हिमांशु भैया नमस्कार।
3: नमस्कार भैया, इंसान भाइयों को भी नमस्कार।
2: भैया ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की थी नागपुर से, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से क्वालिटी मैनेजमेंट किया था, फिर उद्यमता विकास संस्थान में 2 साल 2.5 साल जॉब किया। तो खेती हमारी गांव में थी, संभालने वाला कोई नहीं था, पिताजी अकेले थे, तो लगभग 20 एकड़ खेती है हमारे पास। हम दोनों भाइयों ने तय किया, सुधांशु और हिमांशु, वो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो गांव चलते हैं। तो इस तरह दिए गांव की यात्रा शुरू हुई।
2: कितने साल पुरानी बात है ये?
3: ये 98 की बात है। 98 में हमने जॉब छोड़ दिया, हम दोनों भाइयों ने सब मिलते फिर यहाँ गाँव आ गए।
2: यानी पिछले 28 सालों से लगातार खेती से आपका जुड़ाव हुआ?
3: जी जी जी।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: हमारी पैतृक 20 एकड़ जमीन है।
2: तो कौन कौन सी फसल इस समय आपके खेत में है?
3: इस समय देखिए, हमारा तो गन्ना का एरिया बहुत ज्यादा, आलू का भी है, लेकिन इस बार गन्ना हम लोगों ने ज्यादा किया है। इस बार गन्ना करीब हमारा है 10-12 एकड़ में है। गाय हमारे पास करीब 20 है निराश्रित, उनके लिए चारा की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो करीब 3 एकड़ में गायों के लिए चारा है। बाकी कुछ सब्जियां लगाई हैं, अभी टमाटर लगाया है और आगे और भी लगाने की चीजें हैं, वो लगाएंगे।
2: तो ये जो भी खेती है, आपने कहा कि गन्ना सबसे ज्यादा है, कुछ खास तरीके का गन्ना लगाते हैं क्या?
3: देखिए, गन्ना हम लोगों की जो दूरी रखते हैं लगभग 5 से 6 फुट की दूरी रखते हैं, पैरेलल रो में लगाते हैं हम लोग, 2 फुट पे 2 लाइनें लगाते हैं, फिर 6 से 8 फुट के बीच का गैप रखते हैं।
2: तो उसमें क्या कोई सा फसल लेते हैं?
3: जी जी जी, अभी जैसे गायों के लिए चारा भी ले लेंगे, उसमें मेथी ले लेंगे, मसूर ले लेंगे, सरसों ले लेंगे, थोड़ा बहुत आलू भी ले लेंगे, गेहूँ भी ले लेंगे।
2: कोई खास वेरायटी का गन्ना लगाए हैं अपने खेत पर?
3: नहीं, पहले तो हम लोग बहुत पुराना 767 लगाते थे, बहुत बढ़िया था। अब दूसरा 2-3 गन्ने लगाए हैं, जैसे 14-201 है, 15-023 है, ये नई वरायटी है। 15-023 गुड़ के लिए बहुत अच्छी है, हम लोग गुड़ ही बनाते हैं, जैविक गुड़, तो गुड़ के लिए बहुत।
2: यानी जो भी गन्ना आप लगाते हैं उसका रस निकाल करके गुड़ बनाते हैं?
3: जी, हमारी एक छोटी सी यूनिट है, आप उसको कह सकते हैं कि सेमी हाईटेक, कुछ इनोवेशन किए हैं। तो 10 ग्राम का क्यूब बनाते हैं और अब एक नया क्यूब और बना रहे हैं 1.5 ग्राम का, टॉफी से भी छोटा है, वो बहुत बढ़िया लोगों को रिस्पॉन्स आ रहा है।
2: गन्ने की बात करें तो फसल की भूख मिटाने के लिए आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कब, कैसे और कितना करते हैं?
3: देखिए, शुरुआत में तो हमने जो जैविक करना है हमें, तो हम लोगों ने सरसों की खली गोबर की खाद में घनजीवामृत में मिला के हम लोग डालते हैं। तो हमारे पास 20 गाय हैं, तो खूब ठीक ठाक हमारे पास घनजीवामृत बन जाता है।
2: और बुआई

0: के समय?
1: बुआई के समय भी यही डालते हैं, जैन जीवा में सरसों के खली मिला के और थोड़ा सा चूना, चूने को हम लोग घोल लेते हैं, उसका पानी बुआई के समय गन्ने के ऊपर डाल देते हैं।
0: और जब फसल की प्यास बुझाते हैं तो क्या जीवामृत का प्रयोग करते हैं?
1: हाँ, जीवामृत का प्रयोग हम लोग 3 से 4 बार करते हैं, पानी के साथ भी देते हैं और स्प्रे भी देते हैं। अब तो हमारे पास बायोगैस प्लांट है 30 घन मीटर का, तो उसकी चलने को हम लोग पतला करके उसी में गुड़ और उसी में मच्छा डाल के जीवामृत बना देते हैं।
0: और सिंचाई में प्रयोग करते हैं?
1: हाँ, सिंचाई में भी और स्प्रे में भी, दोनों में करते हैं।
0: रोग दोख और कीड़ों मकोड़ों से कैसे बचाते हैं?
1: हाँ, ये एक समस्या थी शुरू शुरू में, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा सरसों की खली और चूने का पानी मिला के गन्ने पे स्प्रे करके देखिए जीवामृत के साथ, और खट्टा मट्ठा मिला के, जब चारों चीजें मिला के हमने किया तो पिछले 2 सालों से 15/0/23 में ना कोई रेड रॉट आया ना कोई टॉप हो रहा।
0: इस समय आपकी फसल कैसी चल रही है?
1: बहुत बढ़िया चल रही है।
0: तो ये बताएं कि 10-12 एकड़ आपका गन्ना है, गन्ने की नई प्रजातियां हैं, पिछले कई सालों से लगातार आप गन्ना यानी मिठास की फसल पैदा कर रहे हैं, एकड़ में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: देखिए, मुनाफा तो हमारा इसलिए ज्यादा हो जाता है, जैविक गुड़ है तो हम ठीक ठाक हमारा बेच लेते हैं और लोगों को पसंद भी आने लगा है। अब एग्जैक्टली कभी हमने जोड़ा तो नहीं, लेकिन ये मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि 1 एकड़ में हम लोग सरसों की खली लगभग 1 क्विंटल डालते हैं, उसको बहीन करके उस धन जीवा में उसमें मिला के 4-5 दिन रख देते हैं, उसी में लगभग 30 किलो चूना डाल देते हैं। चूना की कीमत है करीब 300 रुपए बोरी और सरसों की 1 क्विंटल खली भी है इस समय 3200 रुपए। बाकी घन जीवामृत अपना मुफ्त का है तो लागत तो कम है।
0: तो गुड़ वाली यूनिट कब से शुरू कर रहे हैं आप?
1: भाई, अगर पानी ना ये बरसा होता तो शुरू कर दिया होता, इसलिए अभी 15 दिन लगेंगे। मान के लिए कि दशहरा के आसपास मिठास आपको मिल जाएगी लखनऊ में।
0: जो आप गुड़ बनाते हैं उसको बेचते कहाँ?
1: पहले तो बड़ी दिक्कत हुई थी, अब तो एक नाबार्ड के थ्रू हमारा एक SPC बन गया है, कुनिया देर प्राकृतिक कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तो उससे अब काफी राहत मिल गई, 4 साल हो गए उनको। तो जो हमारी पिछली मेहनत थी, जो डोर टू डोर दुकान टू दुकान जाके हम देते थे, उनके भी ऑर्डर अब ज्यादा आने लगे हैं, और कुछ गुजरात और कुछ हरियाणा के कंपनियां हैं उनका हमारे साथ टाइप, एक लखनऊ की भी कंपनी है हमारे पास, वो भी काफी सामान ले लेती है। तो ये साग बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब लोगों को विश्वास है।
0: तो पूरे साल में जो 10-12 एकड़ का गुड़ है उसको बेच करके कितनी आमदनी हो जाती है आपकी?
1: आमदनी सर ठीक ठाक हो जाती है, जैसे मान लीजिए हमारा करीब 50,000 रुपए महीना तो गौशाला और बच्चों का खर्चा है वो पूरा निकल जा रहा है, FPO करीब 1.5 लाख हर साल ऑफिस खर्चा और अपने अकाउंटेंट का है 2 लाख वो भी खर्चा निकल आता है, और ठीक ठाक, और अपना लोगों को भी मित्रों को भी गुड़ बांटते रहते हैं, तो ठीक है, जिंदगी आसान चल रही है।
0: जो अब तक आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: बस यही सलाह देना चाहेंगे, व्यापारी ना बनिए, किसान बनिए, जिंदगी आसान है। अब लोग सरसों बोने के चक्कर में हर पूरे खेत में, तो हर फसल जब तक हम नहीं करेंगे, हमारे अपने किसान का आलू भी हो, सरसों भी हो, गेहूं भी हो, हमारी अपनी सब्जियां भी हो, मतलब बाहर से हम कम लाएं तो हम सुखी भी रह सकते हैं और संतुष्ट भी रह सकते हैं।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 700-765-3172 7-2-0-765-3172 7-765-3172
0: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
1: खुशहाल है, हम 5 परिवारों के साथ रह रहे हैं, लगभग 5 परिवारों को भी हम खुशहाल बनाए हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यही मानता हूँ, और 20 गायें भी पाल रहा हूँ।
0: हिमांशु गंगवार भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप 10 से 12 एकड़ मिठास की फसल पैदा कर रहे हैं और जो भी प्राकृतिक खेती का तरीका है उसको आप अपना रहे हैं और जो भी गन्ना आपके पास है उसका गुड़ बना करके वैल्यू एडिशन करके एक अच्छी आमदनी कर रहे हैं, कुल मिला जुला करके खुशहाल है और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर जो

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: रत्ना बहनी।
4: हाँ भैया।
3: अपन जो खेती है वह मौसम पर आधारित रहा थे, और अगर हम पंचन के यहाँ मौसम की जानकारी पहले पता हो जाते तो हम पंचे अपन खेती वही हिसाब तेरे करे थे।
4: तो ओम भैया, हमारे हाथ में मौसम की जानकारी है पंचन का दे दिन जाए। तो आज से अगले 7 दिन तक का मौसम का पूर्वानुमान जो है 6 तारीख से लगाए के 12 तारीख तक, तो 6 से 9 तारीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ गरज चमक के साथ बौछारे पर एक संभावना है, और जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ 6 तारीख से लगा के 11 तारीख तक संभाग में कहूँ कहूँ बरखा हुए की संभावना है।
3: और यह जो जानकारी प्राप्त भय है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे। और रत्ना बहनी, देखो अपन पंच भाई कार्यक्रम सुनते हैं, उनका कई लागत है कार्यक्रम, और कोई बात कहे चाहते हैं तो अपन चिट्ठी पाती भेज सकते हैं, तो कार्यक्रम का पता बता दो।
4: तो भैया पता है, किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग, पिन है 226001। यू तो चिट्ठी पत्री वाला पता रहा है भैया, लेकिन आजकल जो एक नवा पता है जी का कहा जाता है ईमेल एड्रेस, वो आप बता दो।
3: हाँ रत्ना बहनी, ईमेल एड्रेस है farmandhomeairlko@gmail.com। तो ये तो रहे कार्यक्रम का पता, आप चले खोए रहे बेरिया पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व पर बधाई प्रस्ताव किया पारित। एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन और एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को भी दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के

0: 8 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, 16 अक्टूबर को होगा मतदान। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय बर्नार्ड पार मेलिन ने प्रतिनिधिमंडल के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, टर्मिनल सुरक्षा और बोर्डिंग गेट्स पर सुविधाओं को परखा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है T20 सीरीज का पहला मुकाबला। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिक है। बहुत कम दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर किसी एक लीडर को जनता ने बार बार समर्थन दिया है, और ये समर्थन उनकी कार्यपद्धति के कारण, उनकी सही नीतियों के कारण और बहुत अच्छी शुद्ध नीयत के कारण जनता ने ये समर्थन दिया है।
0: मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी।
1: रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। नोएडा के रहने वाले संजीव शर्मा ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर आभार जताते हुए इसे औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
2: ये सरकार का सराहनीय कदम है, इसकी यूनियन बजट में बात हुई थी और आज इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट से पास किया गया है। इससे जो SMEs हैं इनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म पैसा उनको मिलेगा जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा, और इससे ग्रोथ इसी को मिलेगी, और मुझे लगता है कि ये SMEs के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है।
0: प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज भाजपा के 8 उम्मीदवारों ने लखनऊ स्थित विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी जो कहती है वो करती है, सभी प्रत्याशी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।
3: भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और प्रदर्शित भी करती है। अगर मेरे 8 प्रत्याशियों को आप देखेंगे तो सभी हमारे कार्यकर्ता चुन करके आए हैं, और सभी जाति से और सभी क्षेत्र से जुड़ करके आए हैं।
0: प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भाजपा के विधान परिषद उम्मीदवारों ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में लखनऊ को भारत की अग्रणी AI इनोवेशन सिटी के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक निजी टेक कंपनी की स्थापना के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इमर्जिंग टेक स्किलिंग सेंटर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का सही अर्थ तब है जब तकनीक गांव के किसान तक पहुंचे।
4: वास्तव में सही अर्थ

0: तब है जब गांव का किसान बेहतर टेक्नोलॉजी से जुड़े, जब हमारी बहनें और बेटियां लाइवलीहुड के नए अवसर उनको प्राप्त हो सके, जब गांव के बच्चे बेहतर एजुकेशन के साथ जुड़े, जब गांव तक बेहतर हेल्थ केयर की सुविधा पहुंचे और जब ग्रामीण युवा भी नई इकोनॉमी और नए अवसरों का हिस्सा बने। और यही सोच ग्रोथ का एक इंक्लूसिव मॉडल है।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय बर्नार्ड पारमेलिन ने 65 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने टर्मिनल, सुरक्षा क्षेत्र, बोर्डिंग गेट सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर प्रदेश के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा मौजूद रहे। इस एयरपोर्ट को स्विस कंपनी ने विकसित किया है। इस दौरे से एविएशन के साथ साथ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में स्विस निवेश की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने जा रही है। इसके लिए किसानों को 7 से 20 अक्टूबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। संयुक्त कृषि निदेशक अभियंत्रण बलराम वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना में 2166 कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच सीरीज का पहला मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व पर बधाई प्रस्ताव किया पारित। एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन और एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को भी दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 8 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। 16 अक्टूबर को होगा मतदान। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय बर्नार्ड पारमेलिन ने प्रतिनिधिमंडल के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। टर्मिनल, सुरक्षा और बोर्डिंग गेट्स पर सुविधाओं को परखा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है T20 सीरीज का पहला मुकाबला। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। इसी के साथ

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। शाम के 7:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस।

0: आली चिनॉय, शंकर महादेवन, सोनू निगम और जावेद अली की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार किल के इस गीत को फिल्म बंटी और बबली से। संगीत शंकर एहसान लॉय का था। आकाशवाणी उबरस इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: ये कस्टमर केयर कहाँ है?

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अब लीजिए सुनिए शाहिद माल्या की आवाज में फिल्म मौसम के इस गाने को। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है प्रीतम का। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

आकाशवाणी उबरस इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए फिल्म भागम भाग के इस गीत को, आवाज रेमो फर्नांडिस की।

रीमो फर्नांडिस की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म भागम भाग के इस गीत को। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए जसवंत सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज में इस गजल को।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है।

0: इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI
0: आपका साइबर रक्षक।
2: अभी आप सुन रहे थे जसवंत सिंह और अनुराधा पौडवाल के आवाज में इस गजल को। आकाशवाणी उबरा से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज में इस गजल को। सुनते रहिए आकाशवाणी उबरा का प्रसारण।

अभी आपने सुना जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज में इस गजल को, अब लीजिए सुनिए कैलाश खेर की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना।

कैलाश खेर के गाये इस गाने के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण और रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए समीर के लिखे इस गीत को नीरज श्रीधर की आवाज में। संगीत प्रीतम का और फिल्म का नाम भूल भुलैया।

समीर के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर की आवाज में फिल्म भूल भुलैया से। अब लीजिए सुनिए पपॉन की आवाज में फिल्म बर्फी के इस गीत को।

राहत फतेह अली खान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना अनजानी के इस गीत को। संगीत विशाल शेखर का था और इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए आदित्य रिकरी की आवाज में कार्यक्रम का पहला गाना।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

अभी आप सुन रहे थे पपॉन की आवाज में इस गीत को। आकाशवाणी उपलब्ध इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत, और अब लीजिए सुने जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल को।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल को। इसी के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य

0: दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित, विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्य

0: नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में

0: घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of integrated transport and logistics authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulsen wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम

लता मंगेशकर की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे फिल्म जख्मी के इस गीत को। संगीत बप्पी लहरे का था। आकाशवाणी उभरे से समय आप सुन रहे हैं पुराने गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: रोशन के संगीत निर्देशन में अब लीजिए सुनिए कैफी आजमी की संरचना को। आवाज आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है अनोखी रात।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे। जयदेव के संगीत निर्देशन में आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की थी और फिल्म का नाम था हम दोनों। इसी के साथ पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
1: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे AR रहमान की आवाज में इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को। संगीत AR रहमान का था और फिल्म का नाम था तेरे इश्क में। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए।

राहत फतेह अली खान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दबंग के इस गीत को। संगीत साजिद वाजिद का था। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। अब लीजिए सुनिए शफकत अमानत अली की आवाज में फिल्म रावण के इस गीत को। संगीत विशाल शेखर का।

शफकत अमानत अली की आवाज में ये था फिल्म रावण का गीत। संगीत विशाल शेखर का था। कार्यक्रम आपके लिए मैं अब लीजिए सुनिए A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में जोनिता गांधी और हृदय गटाने की आवाज में फिल्म दिल बेचारा का ये गीत। इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: हृदय घटाने और जोनिता गांधी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल बेचारा के गीत को। इसी के लिए और इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए अब यही समाप्त होता है। 102.7 एफएम पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
2: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा के अंशदान की और हम आज के कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे स्थानीय स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच भूपेंद्र सिंह भंडारी से और साथ ही युवा योग की राष्ट्रीय खिलाड़ी भावना बिष्ट से। इसके अलावा एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी लियाकत अली खां बताएंगे कि विश्वविद्यालय कैसे खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहा है। अल्मोड़ा के युवा बॉक्सर अपने कोच से नए नए हुनर सीख रहे हैं, साथ ही अपने को तराशने में लगे हैं और कुछ युवा तो बॉक्सिंग के चलते आर्मी व पुलिस में नौकरी तक पा गए हैं। जानते हैं बॉक्सिंग की बारीकियों को कैसे समझाते हैं अपने प्रशिक्षु मुक्केबाजों को उनके बॉक्सिंग कोच भूपेंद्र सिंह भंडारी। आप स्वयं एक बॉक्सर रहे हैं
3: जी,
2: तो पहले आप अपनी बॉक्सिंग जर्नी के बारे में हमें बताएं।
3: मेरे दो बड़े भाई एक तो इंटरनेशनल बॉक्सर थे, वो भी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स अफसर रिटायर आ गए। उससे बड़े वाले वो भी आर्मी में एज ए सूबेदार रिटायर आ गए। उन्हीं से मैंने सीखा बॉक्सिंग और करते करते फिर मैंने स्टेट में मेडल लिया। 91-90 में मैंने एनआईएस डिप्लोमा कर लिया था पटियाला से। उसके बाद मैं 2008 और 2009 में लगातार नेशनल कोच रहा।
2: तो आज आप स्थानीय स्टेडियम में बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं
3: जी,
2: तो वर्तमान में कितने बच्चे आपसे कोचिंग ले रहे हैं?
3: अभी तक मेरे पास कम से कम 25 बच्चे हैं। कुछ बच्चे शाम को आते हैं और कुछ बच्चे सुबह आते हैं। सुबह वो बच्चे आते हैं जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, शाम को तो छोटे बच्चे मैक्सिमम, बड़ी लड़कियां छोटी लड़कियां शाम को आती है क्योंकि उनके लिए वो दूर हो जाता है, तो मैक्सिमम छोटे बच्चे ही शाम को आ पाते
2: हैं। हम ये मान के चले कि जो लोग अल्मोड़ा में निवास कर रहे हैं, नियर बाय जो हमारे विलेजेस हैं, गांव हैं, तो वहां से बच्चे बॉक्सिंग सीखने आ रहे हैं।
3: तो नियर टू अल्मोड़ा ही आ सकते हैं
2: जी,
3: दूर के बच्चे नहीं आते।
2: ये बच्चे जब आपके पास पहली बार कोचिंग के लिए आते हैं, उनके माँ बाप उनको लेकर के आते हैं, तो किस आशा के साथ आते हैं?
3: वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बॉक्सर बने और कम से कम फिजिकल फिट रहे और बुरे व्यसनों से जो है दूर रहे और एक अच्छा खिलाड़ी बने और आने वाले समय में अल्मोड़ा का, उत्तराखंड का और हमारे देश का नाम रोशन करे।
2: इस वक्त 20-22 बच्चे करीब आपके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आने वाले बच्चे तो बहुत होते हैं,
3: लेकिन
2: हर कोई अच्छा बॉक्सर नहीं बन सकता।
3: जी, जी, जी, जी,
2: और हर कोई उतने डेडिकेशन के साथ काम नहीं करता,
3: नहीं कर सकता।
2: तो पहली बार जब वो आते हैं तो किन किन खूबियों को आप देखना पसंद करते हैं?
3: सबसे पहले मैं उसकी हाइट, ग्रोथ और उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखता हूँ कि ये बच्चा फिजिकली फिट है या नहीं है। पहाड़ में रहने वाले बच्चे मैक्सिमम तो बच्चे फिट होते हैं, तो हम उनको दूर से ही समझ जाते हैं कि ये खिलाड़ी बनेगा। उसको अगर खिलाड़ी बनने लायक हो तो उसको बोल देते हैं बेटा तू अच्छा मेहनत कर ले। अगर थोड़ा सा उसको सपोज नहीं है, अगर उसमें लगता नहीं है, जबरदस्ती का है, तो उसे हम कहते हैं बेटा कुछ दिन आ जाओ, फिर उसके बाद अगर नहीं हो सकेगा तो देन यू लीव दैम।
2: ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है उसका, तो पहले दिन की ट्रेनिंग आप किस तरह की ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करते हैं? शुरू में नहीं खेला,
3: पहले उसको हम स्ट्रेचिंग कराते हैं ताकि वो हल्का वार्म अप हो। उसके बाद उसको कम से कम 15 से 20 मिनट रनिंग करवाते हैं। उसके बाद टोटल हेड टू टो एक्सरसाइज कराते हैं ताकि वो फिजिकली

0: मेंटली रूप से पूरी तरह तैयार हो सके, अगर फिजिकली मेंटली तैयार होगा तो ताकि उसको इंजरी ना हो सके, इसलिए उसको हम पूरा फिजिकली मेंटली तैयार करते हैं। फिर उसको अपने पास ला के रिंग पे लेके आके उसको ऑन गार्ड सिखाते हैं, फिर वो बेसिक शुरू हो जाता है ऑन गार्ड फुटवर्क, फिर उसको आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है।
1: एक बॉक्सर जब डेवलप हो रहा हो तो आप उसमें कौन कौन सी खूबियां देखना पसंद करते हैं?
0: मे बी एक बॉक्सर है तो उसको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और उसको पंक्चुअलिटी होना जरूरी है कि वो अगर आए तो डेली आए, और उसकी क्वालिटी है कि वो कहना माने और सीखे, उसकी लर्निंग पावर देखना सकते हैं, बच्चा कितनी जल्दी पिकअप कर लेता। एक बच्चा ऐसा हो तो ये एकदम जो बताओ तो पिकअप कर लेता, एक बच्चे को बार बार बताने के बाद वो थोड़ा सीख लग जाता, उसको टाइम लगता है बट वो भी सीख जाता।
1: कोई भी बहुत कभी सीखी जा सकती है, स्पारिंग सेशन जो होते हैं तो कितने घंटे का आप लोग यहाँ पे सेशन रखते हैं बच्चों की, या टीम्स को ग्रुप वाइज बांटते हैं, तैयारियां किस तरह कराते हैं?
0: 3 घंटे का भी पता नहीं चलता है, पहले उनको वार्म अप कराना, फिर उनको जैसे कुछ बच्चे पुराने होते हैं तो उनको हम रिंग में भेज देते हैं, वार्म अप कराने के बाद उसे कहते हैं बेटा आप शैडो बॉक्सिंग करिए, और जो कुछ बच्चे ज्यादा होंगे तो उनको पंचिंग बैग में भेज दिया, कुछ उनको शैडो बॉक्सिंग में भेज दिया, कुछ उनको मिरर बॉक्सिंग में भेज दिया, और जो नए बच्चे हैं उनको हम खुद लेते हैं कि उसको ऑन गार्ड सिखाना कि बेटा ये ऑन गार्ड है, ये लेफ्ट पंच है, ये राइट पंच है, वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो सीखता चला जाता है बच्चे।
1: जी आज तो धीरे धीरे सुविधाएं काफी स्टेडियम में हो गई।
0: जी बिल्कुल।
1: कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनका हमारे बॉक्सर्स लाभ उठा रहे हैं यहाँ पर?
0: टारगेट पॉइंट आया और पंचिंग बैग आ गए, काफी अच्छे इक्विपमेंट रोप्स आ गई है, बॉक्सिंग रिंग लगने से बच्चों को काफी फायदा हो गया। पहले हमारे पास बॉक्सिंग रिंग नहीं था, उससे ऐसा होता है कि बच्चा जब दूसरी जगह खेलने जाता है तो उसको रिंग का आइडिया नहीं आ पाता, वो सोचता कि मैं कहां मूवमेंट करूं क्योंकि उसने वो चीज कभी देखी नहीं। अगर एक बॉक्सिंग के रिंग होने से या नए नए इक्विपमेंट होने से बच्चा थोड़ा क्रेजी भी होता है और सीखने की भी कोशिश करता है और टूर्नामेंट में भी वो अच्छा खेल सकता है सुविधाओं से।
1: यहाँ की जो सुविधाओं का पूरा हमारे बच्चे, मैं समझता हूँ, फायदा उठा रहे होंगे आपके निर्देशन में। तो सुबह जो आपके सेशन होता है वो अलग होता है, एक शाम का सेशन अलग होता है। आपके साथ लड़कियां भी आजकल बॉक्सिंग की तरफ बहुत उत्साहित हैं और काफी अच्छे बॉक्सर्स भी हैं यहाँ से, किस तरह की लड़कियों को आप देखते हैं यहाँ पर?
0: अच्छी लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, बड़ी दूर दूर से बच्चे आती हैं। उनका टाइमिंग क्या है कि 4 बजे से उनको हम 5:30-6 बजे छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे दूर के रहने वाले हैं, तो आती हैं। उनको भी हम वही सेम जो लड़कों को बॉक्सिंग सिखाते हैं वही सेम उनपे क्राइटेरिया यूज करते हैं, बट उनको क्या करते हैं कि थोड़ा उनको इनसाइड दुबे, उनको ऑन गार्ड बताना, फुटवर्क बताना, लेफ्ट पंच बताना, राइट पंच बताना, टारगेट एरिया बताना, तो वो धीरे धीरे उनको भी रिंग में ले जाकर समझाया जाता है कि बेटा ये रिंग है, यह आपने पंचिंग बैग मारना, ये रोप करना है, और आपको ये वॉल पैड मारना है, ये आपको लेफ्ट पंच मारना, उनकी गलतियों को, मिस्टेक को बार बार सिखाते हैं सर।
1: जी हम जानते हैं बॉक्सर तभी आप अच्छे बन पाते जब आप कॉम्पिटेटिव बाउट्स का मौका मिलता है, तो क्या इस तरह का भी यहाँ पर आप लोग आयोजन करते हैं बॉक्सिंग का?
0: पहले तो हम जिला स्तरीय करवाते रहते हैं, जैसे कभी 2 अक्टूबर में हो जाती है, कभी ये एक सरदोषण हुई थी पिछली बार, अभी हमारे संसदीय खेल हुए थे तो ये हम ही ने ऑर्गेनाइज किए थे, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें काफी बच्चे संसदीय मतलब मीन्स हमारे ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत और धौलहाट के बच्चे आए थे, तो हमारे काफी बच्चों ने यहाँ पे मेडल भी लिए और अच्छा खेला, वो प्रतियोगिता 2 दिन रही। तो इस टाइप के कंपटीशन उन्हें मिलते जाते और वो जो आप बोल रहे हैं वो तो हमको वो कंपटीशन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि हमको राज्य स्तरीय के लिए प्रतियोगिता के लिए और जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करते
1: हैं। आप राज्य और जिला स्तरीय की बात कर रहे हैं तो राज्य में आपके यहाँ से बच्चे कौन कौन से हैं जो राज्य स्तरीय में खेल पाए हैं?
0: मेरे पास काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कई बच्चे इंटरनेशनल है, कई बच्चों को रोजगार मिल गया, कई बच्चे मेरे पुलिस में जैसे गोविंद आर्या, और काफी बच्चे मेरे आर्मी में चले गए, विनोद तिवारी चले गए, सोटा चले गया और अंकुर गोस्वामी चले गया, कई बच्चे मेरे भी आर्मी सेंट्रल टीम में। अभी लेटेस्ट जो आईबाई कप होता है, ये बॉक्सिंग का कप होता है, ये आईबाई जो है एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन है, तो उसमें क्या है कि वो जो पुणे में सर्विसेज ने वो ऑर्गेनाइज किया था, वो बच्चा ये कहता उसने गोल्ड लिया और उसको 1 लाख रुपए मिला, उसके बाद वो इंडिया कैंप में गया। उसके बाद सर प्रज्वल भंडारी है, उसने भी नेशनल में पहले सब जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल लिया, जूनियर में भी उसने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया।
1: जी इस वक्त जो इंटरनेशनल बॉक्सर आपने तैयार करे वो कौन था?
0: उसमें बहादुर सिंह राणा था, हिमांशु नेगी था, और ये दो बच्चे जो अभी इस टाइम लेटेस्ट पीक में है, जो कैंप में है अभी बॉक्सिंग के, बहादुर राणा है, इसने अभी पटियाला से एनआईएस करके डिप्लोमा भी कर लिया है और वहां पे अभी अपनी एएसआई बॉक्सिंग टीम में अपनी सेवा दे रहा है।
1: वर्तमान में आप कौन कौन से ऐसे बॉक्सर देखते हैं अपने जो कि आगे आकर के उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं?
0: काफी बच्चे हैं, जैसे कार्तिक भंडारी है, राहुल गुणवंत है, युवराज सिंह है और दिनेश सिंह है, और काफी बच्चे भी मेरे यहाँ 14 का विद्यालय स्तर पे जो जिला स्तरीय विद्यालय चल रहा है हल्द्वानी में गए, और अभी 29 तारीख से महाकुंभ होने वाला है देहरादून में, 12 या 13 बच्चे प्रतिनिधित्व करेंगे अल्मोड़ा का।
1: उनके लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं?
0: अच्छी तैयारी है, फिजिकली फिट है और मैक्सिमम उनको ट्रेनिंग दी गई जितना हमारे से हो सका, उनको सुबह भी शाम को भी, और मैक्सिमम मुझे लगता है कि काफी मेडल इस बार अल्मोड़ा जिले में आएंगे।
1: उत्तराखंड की तरफ से पार्टिसिपेशन तो और जगह हो रहा है?
0: बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। अल्मोड़ा जिले का काफी प्रतिनिधित्व हो रहा है, काफी मेडल आ गए, काफी बच्चे आगे चले गए और अभी कई बच्चे अग्निवीर में चले गए। अल्मोड़ा के 3-4 बॉक्सर थे, उन्होंने दे आर फिजिकली फिट, वो अच्छे फिट भी थे। इसमें 3 बच्चे भी मेरे लेटेस्ट अग्निवीर में गए
1: जी। ये तो हम मानते हैं कि पिथौरागढ़ जो है हमारा बॉक्सिंग का गढ़ उत्तराखंड में मनाया जाता है, अल्मोड़ा भी अपनी तरफ से प्रयासरत है कि कहीं ना कहीं उसके उनके यहाँ से आए हुए बॉक्सर भी अच्छा कर सकें। अब क्या लगता है कि पिथौरागढ़ से बॉक्सर ज्यादा आ जा रहे हैं और अल्मोड़ा से कम है?
0: वहाँ पे 3 जगह ट्रेनिंग कराई जाती है। अच्छा। एक तो स्पोर्ट्स स्टेडियम में, एक देव सिंह में, एक जगह जगह कैंप खोले गए उनके। तो वहाँ पे क्या है कि एक बॉक्सिंग का वातावरण बना हुआ है, ये खेलो इंडिया कैंप खुला हुआ है और साइकिल स्पोर्ट्स कॉलेज भी वहाँ पे खुला है। बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए जो देखते हुए बाहर के बच्चे भी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि ताकि हम भी कल को इस हॉस्टल में आ जाएं या खेलो इंडिया में चले जाएं और स्कॉलरशिप ले लें तो एक अच्छा माहौल है वहाँ। क्योंकि अगर हमारे पास सपोज अगर बॉक्सिंग का हॉस्टल होता या खेलो इंडिया का सेंटर होता तो नेचुरल बच्चे उससे प्रभावित होते, उनको देखते कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये खेलो इंडिया के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चे हैं, तो इस तरह की सुविधा हमारे वहाँ अल्मोड़ा में नहीं है।
1: अच्छा, स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए बच्चे ट्रायल्स तो होते हैं
0: जी,
1: तो यहाँ से भी बच्चे?
0: बिल्कुल
1: सिलेक्शन
0: स्पोर्ट्स कॉलेज, अभी तो अभी 2 बच्चे निकले थे पिछली बार और एक बच्चा अभी इस बार थोड़ा घर में ट्रायल देके उसका है। तो
1: क्या कुछ सुविधाएं आपको लगता है और हमें प्रदान की जानी चाहिए?
0: बच्चों को अच्छे इक्विपमेंट्स, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड की जाए और खेलो इंडिया का कैंप चालू किया जाए और स्पोर्ट्स हॉस्टल या स्पोर्ट्स कॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, देखिए आप पिथौरागढ़ में भी स्पोर्ट्स कॉलेज का सेंटर है, खेलो इंडिया का सेंटर है, कई जगह खुला हुआ है। ये सेंटर हमारे वहां भी खुले ताकि बच्चे उनको देख के सीखे और उनको देख के बच्चे आगे बढ़े।
1: तो कोच होने के नाते आप क्या कुछ देखते हैं बच्चों में उस दौरान की, या आप क्या समझाते हो जब एक्चुअल फाइट करने जा रहे होते हैं?
0: अपना गार्ड, अपना फुटवर्क जो हमने बताया तुझे, वो पहला राउंड तो अपने मन से खेल, क्योंकि हम ऑब्जर्व करेंगे कि पहला राउंड जो तुझे सिखाया है वो खेलना है, सेकंड राउंड से फिर वो हमारा गेम खेलेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर है, ये साउथ पो बॉक्सर है, ये टॉरर बॉक्सर है, ये हीटर बॉक्सर है। क्योंकि ये हमारा ऐसे कोच ऑब्जर्वेशन रहता है कि बच्चे को हम ऑब्जर्व कर लें कि उसका अपोनेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं खेल कैसा रहा है। तो सेकंड राउंड से पहला राउंड तो उसको बोल के खिलाते हैं, क्योंकि हमने भी उसका गेम नहीं देखा होता अपोनेंट का उसका, और सेकंड राउंड से फिर वो हमारे ही हिसाब से खेलता है।
1: देखिए आज तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग में सब तरह की सुविधाएं हो गई हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो अपोनेंट्स को रीड किया जाता है
0: जी।
1: और अभी हम कहीं छोटे लेवल पर हैं तो इतनी सुविधाएं शायद नहीं होगी। आप तो कह रहे हैं कि हम टूर्नामेंट के दौरान ही देख पाते हैं बॉक्सर को कैसा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आपकी, किस तरह आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा भविष्य है, अब ऐसा नहीं है
0: जी। हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, अदर स्टेटों में भी वो बॉक्सिंग का इतना स्कोप बढ़ गया, और आई थिंक हरियाणा में तो भिवाड़ी जो है बॉक्सिंग का हब हो गया। हब ये हो गया कि जब वहां पर अगर स्टेट लेवल पर टूर्नामेंट होता है तो कम से कम 1000 बॉक्सर आते हैं, और वो पहले एकेडमी, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल और खेलो इंडिया के बॉक्सर आते हैं वहां पर। जो अगर स्टेट चैंपियन बच गया बच्चा तो वो नेशनल चैंपियन बनेगा और इंटरनेशनल बनना उसके श्योर है, क्योंकि वहां पर इतने कंपटीटर है, इतने अपोनेंट है। और हम चाहते हैं कि यहां पर आए बच्चे, देखिए माता पिताओं से ये कहना है कि उनको खेल में डालेंगे, सबसे पहले तो वो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहेगा
1: जी,
0: और एक अच्छा देश का नागरिक बनेगा और अल्मोड़ा जिले का नाम रोशन करेगा। क्योंकि अगर वो फिजिकली फिट है तो मेंटली भी फिट है। आप उसको लेके आए, सिखाएं, उस पर नजर रखें और उसको लेके जाएं। देखिए आज हम देख रहे हैं कि बैडमिंटन लक्ष्य सेन जो है आज टॉप में है, क्योंकि उसके फादर का ऑब्जर्वेशन था, चाहे वो चिराग शांत था, चाहे वो बोधित था, या चाहे अक्षिता भंडारी थी, या कर्नाटक बंधु थे। कई बैडमिंटन खिलाड़ी मैंने यहां से देखे जिनके पेरेंट्स जो थे 24 घंटे उन बच्चों पर नजर थे, उनको लेके आना, लेके जाना और उनको छोड़ना, उनकी डाइट पे ध्यान देना, तो उनका बहुत ज्यादा जो सहयोग है वो पेरेंट्स का। माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें और अपने बच्चों को खेल की ओर आगे लेके जाए ताकि वो एक अच्छा खिलाड़ी बनकर अपना देश का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम नागरिक
1: बॉक्सिंग हम बना सके।
0: सबसे पहले बोलते यहाँ पे खेलो इंडिया का सेंटर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बैडमिंटन का हॉस्टल है वैसे एक बॉक्सिंग का हॉस्टल भी होना चाहिए। थोड़ागढ़ में क्या कई कैंप और जैसे खेलो इंडिया है, स्पोर्ट्स हॉस्टल है, खेल विभाग के कैंप खोले गए, तो वहां पर बच्चा देख देख के सीखता है और हरियाणा में तो कई अकेडमी है, जो अर्जुन अवार्डी रहे या द्रोणाचार्य अवार्डी रहे, उन्होंने अपनी अकेडमी खोल ली और वो अकेडमी के माध्यम से उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और खेल विभाग के

0: टूर्नामेंट है, खेल विभाग का कैंप है, खेलो इंडिया का कैंप है, साई का कैंप है, कॉमनवेल्थ में 5 गोल्ड मेडल आए
1: जी,
0: और उसमें मैक्सिमम लड़कियां विनर है, तो वो क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स। यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाए।
1: ये थे मुक्केबाजी के कोच भूपेंद्र सिंह भंडारी। और अब बात करते हैं योग की। गिर के संभलना और संभल के उठना, अनुशासन में रहना और अपने पर विश्वास करना, ये सिखाता है योग। हमारी प्रतिनिधि मीनाक्षी ने बातचीत की योग की युवा राष्ट्रीय खिलाड़ी भावना बिष्ट से। जानते हैं वो क्या कहती है।
2: दोस्तों कहते हैं खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाता बल्कि गिरकर संभलना, अनुशासन में रहना और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहना भी सिखाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी युवा खिलाड़ी है जिन्होंने खो खो और कबड्डी जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई है और साथ ही योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी है युवा खिलाड़ी भावना बिष्ट। जो आपका ये खेल का सफर है, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, खेल से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
3: मुझे पता नहीं था कि योग क्या होता है और अलग अलग गेम होते हैं वो, उनके बारे में मुझे कभी कुछ पता नहीं था। मैं 6 में पढ़ती थी तो मेरा फर्स्ट गेम था योग, तो मैंने शुरुआत अपने योग से की थी।
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और स्कूल टाइम से आप कर रहे हैं और अभी आप क्या करते हैं?
3: अभी मैं सोवन सिंह जी यूनिवर्सिटी से बीए योग की पढ़ाई कर रही हूँ।
2: जी, तो भावना जी, शुरुआत में जब आपको खेल के प्रति इतना जो लगाव है वो कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहूंगी। और क्या परिवार या किसी व्यक्ति ने आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया?
3: शुरुआत में खेल के प्रति मेरा लगाव धीरे धीरे बढ़ता गया
2: जी,
3: जो कि अभी भी है। जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी तो स्पोर्ट्स टीचर आई थी, उनका नाम है मिसेज मंजू कांडपाल, तो उनने मेरा बहुत साथ दिया, अभी तक वो मेरे साथ हैं, मैं उनकी बहुत आभारी रहूंगी। उनने मार्गदर्शन अच्छा दिया, मेरे पे विश्वास रखा कि मैं और आगे कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे होते चले गया।
2: जब आपने खेल को गंभीरता से अपनाया तब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और आपने उसका सामना कैसे किया?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि खुद पर विश्वास, मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं अगर लगातार मेहनत करूंगी, करती रहूंगी, तो मैं अच्छा कर सकती हूँ। खेल में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी सफलता मिलती है कभी असफलता मिलती है, तो वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने वो बनाए रखा, अनुशासन रखा, मेहनत रखी और धैर्य रखा। मुझे लगा कि हाँ आज नहीं तो कभी ना कभी हो जाएगा, जो कि अभी भी हो रहा है, तो चुनौती ज्यादा बड़ी नहीं थी।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये जरूरी है कि अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो खुद पर विश्वास सबसे पहले रखना बहुत जरूरी है। तो खेल के सफर में ऐसा कौन सा पल रहा जब आपको लगा कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है?
3: मेरे लिए ऐसे कई छोटे बड़े पल रहे हैं, जब मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास हुआ, मुझे लगा कि प्रतियोगिताओं में खेलने और आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहते हैं और आगे भी मिलेंगे
2: जी,
3: और कभी असफलता कभी सफलता, खासकर जब मेरे प्रदर्शन मेरे गुरुजनों को पसंद आया, मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ते रहा। उन पलों ने मुझे विश्वास दिलाया कि अगर मैं लगातार मेहनत करूंगी, आगे और बेहतर करूंगी, तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ इसी क्षेत्र में।
2: योग में आप राष्ट्रीय स्तर तक गई हुई है,
3: तो
2: पहली बार जब राष्ट्रीय स्तर पर आपका चयन हुआ उस समय की जो खुशी है और वो अनुभव कैसा था और उस पल की कोई ऐसी खास याद जो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहेंगे?
3: जब नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ तो हम बहुत 24-25 बच्चे थे, उसमें से एक मेरा नाम आना बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ इन बच्चों में से मैं सबसे आगे हूँ। उस टाइम पे तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होते थे, एक ही टीम में 50-50, 40-40 बच्चे खेलते, तो उसमें से फर्स्ट नाम आना खुद में एक बड़ा वो होता है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, मैम लोग भी बहुत खुश हुए थे।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि आप राष्ट्रीय स्तर तक गए, ये बहुत अच्छी बात है जी। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद फिर भी होता है आप नए लोगों से मिले होंगे, और कैसा आपका अनुभव रहा या खुद में आपको लगा कि कुछ बदलाव आया है?
3: हाँ, जब मैंने राष्ट्रीय स्तर पर गई, मैंने वहाँ लोगों को देखा, वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे अपना, तो वहाँ से धीरे धीरे सीखा हमने चीजों को कि कैसे की जाती है, तो बहुत बदलाव आया।
2: तो आपने खो खो, कबड्डी और योग जैसी जो अलग अलग विधाओं से जुड़कर अपना अनुभव जो आपने हासिल किया है, इन तीनों ने आपको अलग अलग क्या सिखाया है?
3: इन तीनों ने मुझे अलग अलग तरीके से मजबूत बनाना सिखाया। खो खो ने मुझे, मतलब जैसे हम खो खो खेलते थे उसमें ज्यादा फुर्ती चाहिए होती थी
2: जी,
3: उसमें टीम वर्क सिखाया, मतलब टीम को कैसे मैनेज करते हैं। कबड्डी ने मुझे साहस और दबाव, जैसे जब हम कभी दबाव में रहते हैं तो वहाँ पर हम सही निर्णय कैसे ले। और योग ने मुझे शरीर के साथ साथ मन को भी संतुलन रखना, मतलब हम अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से कौन से

0: जो गेम है उसने आपको क्या सिखाया, ये आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। एक खिलाड़ी के लिए शारीरिक तैयारी के साथ मानसिक मजबूती भी जरूरी होती है। मैच या प्रतियोगिता से पहले आप खुद को मानसिक रूप से कैसे तैयार करते हैं?
1: मैं प्रतियोगिता से पहले खुद को शांत रखने की कोशिश करती हूँ और अपनी तैयारी पर भरोसा रखती हूँ, सकारात्मक सोचती हूँ और ये सोचती हूँ कि जब भी मैं अगर मंच में प्रदर्शन करूँ तो अपना 100% दूँ। हार जीत तो बात की बात होती है,
0: क्योंकि सोच है उसको पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है।
1: हाँ, मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो, खुद पर विश्वास अगर हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो क्या आज जैसे मतलब आज के जो युवा हैं वो मोबाइल सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनमें जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आपके अनुभव में खेल जो है वो युवाओं के जीवन और व्यक्तित्व में क्या सकारात्मक बदलाव ला सकता है?
1: मोबाइल हम सभी के जीवन में हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो बेहतर है। खेल युवाओं को अनुशासन सिखाता है, समय का महत्व सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, आत्मविश्वास और हार के बाद दोबारा खड़े होना सिखाता है।
0: जी,
1: खेल से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। मेरे अनुभव के हिसाब से खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल, और खेल में ही ताकत है कि हम एक टीम वर्क जैसे आपने बताया, और खुद में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, इससे हम सीखते हैं। उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसी खेल में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं लेकिन शुरुआत करने में थोड़ा डरते हैं या रास्ते की मुश्किलों से वो डरते हैं?
1: मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि शुरुआत करने से कभी मत डरिए, क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सफर मुझे यहाँ तक ले जाएगा और रास्ते में मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने अनुभव किया है उन्हें हर गेम को खेलना चाहिए, तो वहीं से पता चलता है कि हम कौन से गेम में थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे गेम खेले, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो मुझे लगा कि मैं योग में अच्छा कर सकती हूँ, तो अभी भी मैं शायद उसी की वजह से अभी कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई योग से ही कर रही हूँ।
0: आप पहाड़ से आते हैं, पहाड़ से आते हुए आप राष्ट्रीय स्तर तक हमारे जिले का नाम, शहर का नाम रोशन कर रही है, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात।
2: अब हम आपको मिला रहे हैं उत्तराखंड के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच लियाकत अली खां से, जो कि SSJ विश्वविद्यालय में प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी भी हैं। सुनते हैं उनसे बातचीत के ये अंश, क्योंकि आप यहाँ के खेल प्रभारी भी हैं और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चंपावत, मुंशारी, पिथौरागढ़, बागेश्वर के डिग्री कॉलेज भी आते हैं और वहाँ की खेल गतिविधियों को भी आप यहाँ से संचालित करवाने का प्रयास करते हैं। और इधर SSJ द्वारा जो एक मेमोरेंडम साइन किया जाने वाला है, हमारी खेल यूनिवर्सिटी जो कि हल्द्वानी में बनी है, तो उस संबंध में क्या कुछ बातें आपकी हुई ताकि खेलों का एक अच्छा स्वरूप और यहाँ से खिलाड़ी उभर के आ सके हमारे कुमाऊं से भी, उसके बारे में क्या बातचीत हुई?
3: कुलपति जी प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट और खेल विश्वविद्यालय कुलपति अमित कुमार सिन्हा जी की एक वार्ता हुई थी, तो उन्होंने ऐसा कहा कि हम क्यों ना हम दोनों विश्वविद्यालय के MOU साइन करें। उससे बेनिफिट ये होगा कि अभी रिसेंटली जो हमारे नेशनल गेम हुए हैं उसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है खेल विश्वविद्यालय में, और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इधर पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है। तो सबसे पहला फायदा तो हमारे बच्चों को होगा क्योंकि उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने को मिलेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। नंबर दो, जो फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, जैसे हमारी फैकल्टी उधर जाके अपने पढ़ाई करवाएंगे, उधर वाले यहाँ आएंगे। तो नंबर तीन, आपस में कंपटीशन होंगे क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कंपटीशन बहुत कम होते हैं बच्चों में, क्योंकि जो खेल विश्वविद्यालय के बच्चे होंगे वो डिफरेंट खेल के होंगे और जो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे हमारे बच्चे खेलेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो खेल विश्वविद्यालय है उसमें कोचों को तैयार किया जा रहा है, जो कोच अगर यहाँ आएंगे बच्चों को कोचिंग देंगे तो उससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा।
2: वर्तमान स्थिति में आपके कौन कौन से खिलाड़ी आपको ऐसा लग रहे हैं कि जो आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं?
3: एक निकिता चंद है बॉक्सर, उसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया। एक कोमल मेहता हमारी स्टूडेंट, उसने ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लिया, खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल लिया। एक हमारी स्टूडेंट है माया, उसने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल लिया ऑल इंडिया में। और एक अलीसा मनराल है लड़की, उसने ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल लिया। संभावनाएं तो बहुत हैं, यहाँ खिलाड़ी बहुत हैं, बस जरा गवर्नमेंट की तरफ से उनको बेसिक फैसिलिटी मिल जाए, जैसे ग्राउंड की व्यवस्था, क्योंकि आजकल जो खेल है बहुत मॉडर्नाइज हो गया है। अगर उस तरह की फैसिलिटी हमारे बच्चों को मिले तो हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत अच्छा करेंगे।
2: हम देख रहे हैं कि हमारे तमाम जो मैदान है उस पर फ्लड लाइट भी लगी हुई है और यहाँ पर खेल

0: होते भी हैं, तो क्या कुछ बच्चों को और कुछ करना चाहिए कि हमारा टैलेंट ज्यादा से ज्यादा निखर के आ सके?
1: हमारे जो पहाड़ में स्थानीय है कॉम्पिटिशन बहुत कम होते हैं, और जहाँ तक हिल एरिया है बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, कंपटीशन की बहुत कमी है। जो हम कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल में खेलते हैं उसके बाद नहीं खेलते हैं, अगर आप कंपटीशन ज्यादा लोकल लेवल में कंपटीशन खेलेंगे और अलग अलग टूर्नामेंट खेलेंगे तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारी इस बार तैयारी की हम कुछ गेमों का ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, जो टीम गेम है उस पर ट्रेनिंग कैंप की बहुत जरूरत पड़ती है, तो हमारे इस बार प्रयास है कि कुछ जो अच्छे में हमारा रिजल्ट है, फुटबॉल है, हॉकी है, टाइकंडो है, इनके हम कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार।
0: यहाँ पर बास्केटबॉल का एक अच्छा कोच है हम कह सकते हैं, हॉकी खेलते हुए बच्चे सुबह दिख जाते हैं, क्रिकेट की भी यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस होती है, बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक उसकी सुविधाएं कहाँ पर ज्यादा है? क्या पिथौरागढ़ में इसका स्कोप ज्यादा है?
1: वो सुविधा तो यहाँ भी, लेकिन पिथौरागढ़ में एक नर्सरी है बॉक्सिंग की, शुरू से आप देखते हैं जो भी बॉक्सर निकले वहाँ एक शुरू से इंटरनेशनल प्लेयर काफी निकले, उनको देख के बच्चे सीख रहे हैं। पिथौरागढ़ में काफी लोग इंटरनेशनल खेल चुके हैं तो इसलिए बच्चे वहाँ बॉक्सिंग ज्यादा खेलते हैं।
0: अल्मोड़ा में बच्चे ताइक्वांडो बहुत अच्छा करते, तो आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इस तरह ताइक्वांडो के प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते आए हैं?
1: गर्ल्स है अनिलसा मनराल, वो मेडल लाई ऑल इंडिया में, और काफी बच्चे यहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो उतने जो यहाँ फैसिलिटी है वो पुराने उसकी है। अब जैसे ताइक्वांडो में सेंसर सिस्टम है, हमारे अल्मोड़ा में सेंसर सिस्टम नहीं है, जो मार्किंग सिस्टम है।
0: अच्छा,
1: तो वो फैसिलिटी आने के लिए उतना वहां पर, इतना जो हमारी यूनिवर्सिटी है इतना हमारे पास बजट की व्यवस्था नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें ये चीज प्रोवाइड कराए, बजट दे, तो हम ये चीज फैसिलिटी बच्चों को दे सकते हैं।
0: जी, स्टेडियम की तरफ से सुनने में आता है कि किसी न किसी खेलों के लिए हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए चयन भी होता है, तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चे ही उसमें ज्यादा से ज्यादा आए, आपका प्रयास भी रहता होगा, तो किस तरह आप उनको मोटिवेट कर पाते हैं कि आप स्पोर्ट्स कॉलेज में के सिलेक्शन के लिए ट्रायल पे जाएं?
1: अगर खिलाड़ी बनना तो खिलाड़ी बनेंगे, पढ़ाई में दो चीज एक साथ नहीं होती, स्पोर्ट्स कॉलेज का मतलब है स्पोर्ट्स ही है आपका। अल्मोड़ा में एक कल्चर बन चुका है, कुछ बच्चे पढ़ाई भी करना चाहते हैं साथ में स्पोर्ट्स भी करना चाहते हैं, तो वो बहुत कम होता है, लेकिन हम फिर भी मोटिवेट करते हैं बच्चों के आप स्पोर्ट्स में, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे रही है, हॉस्टल दे रही है, खाना कर रही है, आपका पढ़ाई फ्री कर रही है। कुछ बच्चों की तरफ से भी कमी है कि बच्चे उतना ग्राउंड में समय दे नहीं रहे हैं जितना उनको देना चाहिए। अगर बच्चे अगर सही ट्रेनिंग करें, और हम भी मोटिवेट करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको ट्रेनिंग के बारे में बताएं, तो काफी बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज में जाते हैं।
0: जी, हम जानते हैं कि हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उन तक हम शायद नहीं पहुंच पाते, या हम कहीं यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाती, या स्पोर्ट्स फैकल्टीज है वो उस तरफ अप्रोच नहीं कर पाती, तो क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि इंटीरियर से हम बच्चों को ला सके? देखिए, जो खेल हम देखते हैं कि इंटर कॉलेज लेवल पे भी प्रतियोगिता होती है, ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला लेवल पे होती है, लेकिन क्या वो बच्चे जो वहां से अच्छा कर रहे होते हैं उनको टैप करके आप अपनी यूनिवर्सिटीज में जब वो आते हैं तो उनको किस एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि वो यहाँ पर आकर के कम से कम अगर एडमिशन लें तो फिर अच्छा कर सके?
1: मोदी जी ने संवाद में कहा कि हम टैलेंट सर्च प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें जो भी बच्चे सुन रहे हैं मेरे बात को, तो वो ध्यान दें कि आप टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपको वहां से आपको उठा के लाया जाएगा और आपको अच्छी ट्रेनिंग लाकर अच्छा प्लेयर बनाया जाएगा, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करने का जरूर कर रहे हैं टैलेंट सर्च प्रोग्राम में। और हमने कोशिश रहेगी हम भी यूनिवर्सिटी में एक जागरूक अभियान लगाएं कि जो बच्चे यहाँ दूर दराज के हैं वो शहरों में आके अच्छी परफॉर्म करके उनको अच्छी सुविधा प्रदान करें।
0: अच्छी सुविधा प्रदान करिए तो अच्छी बात है, कि बच्चा कितना डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के लिए ये भी एक चीज बहुत जरूरी है। कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण कभी कभी वो स्पोर्ट्स छोड़ भी देता है, तो इस तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम भी बच्चों के लिए जरूरी है कि वो उनको, ताकि वो कंसिस्टेंसी में रहें और खेल को अपनाते रहें, उसे छोड़े ना।
1: दो चार सालों से खेल के प्रति बच्चों का रुझान कम गया है, जब से गैजेट के बच्चे लग गए हैं और कुछ बच्चे दूसरी तरफ नशे की तरफ चले गए हैं, स्टेडियम में बच्चे पहले के अपेक्षा बहुत कम आ रहे हैं, और बच्चा सीधे फिजिकल वर्क करने से डर रहा है, मतलब आजकल जो जनरेशन है फिजिकल वर्क कम करती है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ कोचिंग कैंप और कुछ कोचों का मोटिवेशन और कुछ हम ऑनलाइन प्रोग्राम उनके लिए प्रोवाइड करें जो दूर दराज के बच्चे, क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल है, तो मैं ऐसा कह सकता है कि उसमें हर कोच से ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके उसको अपने ग्रुप में स्पोर्ट्स ग्रुप में डाल के बच्चा अगर यहाँ नहीं आ पा रहा उसको देख के ही अपना प्रैक्टिस कर सकता है।
2: इसके साथ ही आज के खेल दर्पण के इस कार्यक्रम के साथ अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: मीडियम वेव 401।
1: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कथा के इस गीत को।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कथा के इस गीत को। संगीत बप्पी लहरी का था। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म टैक्सी चोर के इस गीत को।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पतीता के इस गीत को। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात।

किशोर कुमार की आवाज में ये था फिल्म और कौन का गीत। इसे लिखा था अमित खन्ना ने, संगीत था बप्पी लहरी का। इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रेजोल्यूशनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें MSME बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का MSME ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एक सौ 2.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।